प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के
1: संक्षिप्त समाचार। आपसे तीना नमस्कार।
2: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। महंगाई का असर अभी भी मॉरिशस के लोगों के बजट पर बना हुआ है। इस साल मार्च से जून के बीच कई जरूरी सामान और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों में सामने आई है। रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन उन चीज़ों में शामिल है जिनकी कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने मार्च से जून के बीच 14 चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी और केवल 2 चीज़ों की कीमतों में कमी दर्ज की है। कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट DTAA में बदलाव के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है कि 2 बार टैक्स लगने की समस्या को खत्म किया जाए और टैक्स अग्रीमेंट का गलत फायदा न उठाया जा सके। भारत के अधिकारियों के नए स्पष्टीकरण के बाद मॉरिशस ने इस प्रोटोकॉल को मंजूरी देने का फैसला लिया है। बगातेल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण काम 62% पूरा हो चुका है। ये प्रोजेक्ट जिसकी लागत $300 मिलियन यानी लगभग 14 बिलियन रुपये है, December 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका के अफ्रीकन अफेयर्स के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा ट्रुटमैन ने इस शुक्रवार को निर्माण स्थल का दौरा किया। और विदेश में ईरान ने जोर्डन में तैनात कई अमरीकी सैन्य विमानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला करने का दावा किया है। ये कार्रवाई ईरान में कई स्थानों पर रात भर हुए अमरीकी हमलों के जवाब में की गई है, जिनमें कम से कम 8 लोगों की जान चली गई है। और अंत में मौसम का हाल।

0: हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दोपहर बाद के समय देश के उत्तरी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी और रात्रि के समय भी उत्तरी इलाकों और पूर्वी इलाकों में हल्की वर्षा होगी और बाद में दक्षिणी इलाकों, पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर भी बारिश होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी और जो दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। सूर्योदय आज 7:45 और सूर्यास्त शाम के 5:47 पर। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त है, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: 819 kilohertz. This is Radio Marches. Radio Marches. Medium of what's up, and it's good. That's why you hear AM2 MBC Radio Marches channel. प्रिय श्रोताओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी रेडियो लिसनर्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह के 6:03 हो रहे हैं और आज है शनिवार 18 जुलाई साल 2026। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आज की सुबह और आज का पूरा दिन आप सभी के लिए एकदम अच्छी तरह से बीते। आज जहाँ भी रहे, आज आप जहाँ भी रहे, खुश रहे, सलामत रहे और मुस्कुराते हुए इस दिन को बिताएं। नई सुबह है आज, नए दिन का आगाज़ कीजिए हमारे साथ और आप देखेंगे कि दिन भर आप मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, है कि नहीं। और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इस नई सुबह की शुरुआत कीजिए। प्रभु का नाम लीजिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए और जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तो अगर वादा करते हैं साथ देने के लिए तो बता दें आपको कि हमारा आपका साथ रहेगा अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक ऑन MBC रेडियो मॉरिशस। चलिए शुरू करते हैं इस प्रातकालीन सभा को गहलोत राजपूत महासभा के प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम है वैदिक नाथ।

0: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से आइए सुनिए
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता
2: आनंद मंगल करूं
0: वैदिक नाथ
2: जय

च संभूः दश्यानु धर्म प्रयजा चिकित वोठा नोधा अद्वरं देववीतो। ओम शांते शांते शांते। श्रद्धेय श्रोताओं को पंडिता ज्योति भोला रघुबीर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत वैदिक नाद कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। विषय धर्म की पहचान। श्रोताओं, ऋग्वेद के इस छोटी से मंत्र में एक कल्याणकारी उपदेश है। धर्म का आचरण करो। धर्म पथ पर चलना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि धर्म एव हतु हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो लोग धर्म को मार देते हैं, अर्थात धर्म आचरण छोड़ देते हैं, धर्म उन्हें नष्ट कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्म

क्या हैं? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जिन नियमों के पालन करने से लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो उन्हीं नियमों का नाम धर्म है। धर्म का अर्थ धारण करने वाला भी होता है। दार्शनिकों के मत अनुसार जिस गुण से पदार्थ की सत्ता स्थिर रहती है वही उसका धर्म होता है। किसी भी वस्तु से उसका धर्म निकाल दिया जाए तो वह नष्ट हो जाती है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु अपने धर्म को धारण किए हुए हैं। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता, गर्मी पैदा करना। यदि अग्नि अपने जलाने के धर्म को छोड़ दें तो पैरों तले कुचली जाती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य भी अपने धर्म को छोड़ दे तो उसका क्या मूल्य रह जाएगा। मनुष्य का धर्म है मनुष्यता का आचरण करना, अपनी मनुष्यता स्थिर रखने के लिए निरंतर धर्म का आचरण करें। वैदिक धर्म में आत्मा की एकता पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। जो मनुष्य इस तत्व को समझ लेगा कि वह किस से प्रेम नहीं करेगा, वह किस पर नाराज होगा, किसके साथ बुरा व्यवहार करेगा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 7वां मंत्र कहता है, यस्मिन सर्वाने भूतानयात्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोक एकत्व मनुपश्यतः। अर्थात जो मनुष्य सब प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है उसके लिए किसका मोह, किसका शोक। वैदिक धर्म का मूल तत्व यही है। इस सारे जगत में ईश्वर ही सर्वत्र व्यापक है। उसी को पाने के लिए, उसी को समझने के लिए हमें मनुष्य का यह जीवन मिला है। उसे पाने का जो रास्ता है उसका नाम धर्म है। वैदिक धर्म संसार के सभी मतों और संप्रदायों का उसी प्रकार आधार है जिस प्रकार संसार की सभी भाषाओं का आधार संस्कृत भाषा है, जो सृष्टि के प्रारंभ से अभी तक अस्तित्व में है। संसार भर के अन्य मत मसीहा, गुरु, महात्मा आदि द्वारा चलाए गए हैं, किंतु चारों वेदों के अपौरुषेय होने से वैदिक धर्म ईश्वरीय है, किसी मनुष्य का चलाया हुआ नहीं है। वैदिक धर्म में एक निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, न्यायकारी ईश्वर को ही पूज्य उपास्य माना जाता है। श्रोताओं, प्राचीन काल में भारत देश में जो लोग ज्ञानी थे, आचार विचार वाले थे, उन्हें लोग ऋषि कहा करते थे। सादा जीवन, ऊंच विचार उनका आदर्श था। वे धर्म के गूढ़ विषयों पर चिंतन करते थे, सादा और पवित्र जीवन बिताते थे और समाज को सही रास्ता दिखाया करते थे। वैदिक साहित्य इन ऋषियों के ही पवित्र धरोहर हैं। 5000 साल पहले भी उससे लोगों को प्रेरणा मिली थी और आज भी मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। श्रोताओं, धर्म के परिभाषा या व्याख्या सरल नहीं है। धर्म के नाम पर बड़े बड़े आश्रम, मंदिर, गिरजाघर आदि खड़े हैं। संसार में अनेक मत मतांतर हैं। सबकी अलग अलग धर्म की परिभाषाएं हैं। प्राचीन ऋषियों का मत है धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुह्याम्। अर्थात धर्म का तत्व हृदय की गहराई में छिपा है। दुनिया में अनेक मत होने से ही अनेकताएं हैं और इससे मेरा तेरा का सिलसिला बना रहता है। प्रत्येक मन में कुछ अच्छाइयों तो हैं परंतु कुछ बुराइयों

इस अर्थ में बनी हैं जिनसे अनेकता वह मनुष्य आदि बनाए रखती हैं। विभिन्न मत मतांतरों का परिणाम यही है कि सभी प्राणी एक सूत्र में नहीं बन सकते। श्रोताओं, बहुत कम वैदिक परिवार अपने धर्म को पहचानते हैं। हर एक के जीवन में तीन विद्या हैं, धर्म, संस्कृति और समाज। इन तीनों को अच्छी तरह समझना अनिवार्य है। सत ज्ञान द्वारा हम तीनों को परख कर समझ सकते हैं। सत्य और असत्य, विद्या और अविद्या, अच्छे बुरे आदि की पहचान विवेक द्वारा होती है। सत ज्ञान द्वारा ज्ञान के चक्षु खुलती हैं। हमारे लोग अन्य भाषाएं, लिपियों को समझ लेते हैं, परंतु अपनी भाषा, देवनगरी लिपि, अपनी संस्कृति, सभ्यता आदि से बिल्कुल अज्ञान है। हमारे युवा पीढ़ी सामाजिक कर्मों से दूर होते जा रहे हैं। उनको न सामाजिक कार्यों को संभालने की रुचि है, न सीखने की। उनको समाजों में लाकर विद्वानों, सन्यासियों, योगियों आदि से धर्म और वेद के प्रवचन सुनकर उनमें धर्म, संस्कृति, सभ्यता आदि की पहचान करने की रुचि पैदा करनी चाहिए। नहीं तो वे अपने धर्म के पैरों पर अश्रद्धा, घृणा आदि की कुल्हाड़ियों चला चला कर अपना सर्वनाश कर देंगे। श्रोताओं, परमात्मा ने चार ऋषियों को वेद का प्रकाश दिया था। सृष्टि के आदि काल में आर्यों को वेद मिला था, पर मनुष्य इतना कृतज्ञ है कि परमात्मा के दिए वेदों को छोड़कर मत मतांतरीय ग्रंथों के पीछे भाग रहा है। वेद और आर्ष ग्रंथों को छोड़कर अन्य मत के ग्रंथों को अपना रहे हैं। धर्म का हनन करने वालों को धर्म मार देता है, धर्म की रक्षा करने वालों की धर्म रक्षा करता है। इस बात का हमारा इतिहास साक्षी है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वालों की कितनी दुर्गति हुई, धर्म और नीति को निभाने वालों को कितना सम्मान मिला और पूज्य भी माने गए। अधर्म और अनैतिक मार्गों के पथिकों को इतिहास का श्राप सदा रहेगा। रामचंद्र जी को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और रावण को तिरस्कृत करते हैं। रावण अधर्म और अनैतिक मार्ग को अपनाकर राक्षस पद पाया और राम जी धर्म और नीति अपनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। श्रोताओं, प्रभु हम सबको शक्ति और सामर्थ्य दें कि हम निरंतर धर्म पथ पर चलते रहें। कितने ही प्रलोभन और संकट आए, परंतु हम धर्म मार्ग से विमुख न हुएं। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांते शांते।

0: अभी आप सुन रहे थे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से कार्यक्रम वैदिक नाद।
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता।
2: सुबह के 6:16 हो रहे हैं और अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां। Mosselman Douma, Mosselman Fariden, Bellerive Road, Anwar Ekouba Road, Terre Rouge Road, Hermitage Road और Saint-Campan Road के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 19 जुलाई को सुबह के 8:30 से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और बासें रोड, उदारी रोड के रहने वाले लोगों को हाईलैंड्स बासें रोड, उदारी रोड के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 18 जुलाई को सुबह के 8:30 से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और हाईलैंड्स रॉयल रोड

0: रॉयल रोड हाईलैंड्स के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 18 जुलाई को दिन के 11 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना की बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सिबिन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। कोई मनुष्य सोचता है कि कोई मुझसे ज्यादा सुखी है, ये बात सही नहीं है। हर किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख है, और सुख दुख का सामना करते हुए जो मनुष्य आगे बढ़ता है, उसे हम अकलमंद कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। सो चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आप मुस्कुराते रहिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, अगर आप हमें दुख देते हैं तो आप हमें शक्ति दीजिए उस दुख का सामना करने के लिए। प्रभु के सिवा इस दुनिया में आपका कोई अपना नहीं है, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन। अगर इस दुनिया में कोई आपका अपना सच्चा है तो वो है प्रभु परमेश्वर भगवान।
2: तार सप्तक, मंदिर सप्तक।

इस गीत के बाद हम आपको छोड़े जाएंगे और एक भाव गीत के साथ, मरने के डर से मेरे दिल जीना न तू छोड़ देना, और वो गाना हमें लग जाएगा सुबह के ठीक 6:30 बजे। ठीक 6:30 बजे का पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल और स्पोर्ट्स रिव्यू के बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह के 7 बजे इन योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्रेम से MBC रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 6:30 बजे है। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख खबरें। मॉरिशस में महंगाई का असर जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार मार्च से जून के बीच रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य टैक्स एग्रीमेंट के गलत इस्तेमाल को रोकना और दो बार टैक्स लगने की समस्या को दूर करना है। बागाचेल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण कार्य 62% पूरा हो चुका है। लगभग 14 बिलियन रुपये की लागत वाला ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। विदेश में ईरान ने जोर्डन में तैनात अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। इसके बाद मध्यपूर्व में तनाव और बढ़ गया है। और अब समाचार विस्तार से। महंगाई का असर अभी भी मॉरिशस के लोगों के बजट पर बना हुआ है। इस साल मार्च से जून के बीच कई ज़रूरी सामान और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों में सामने आई है। रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन उन चीज़ों में शामिल है जिनकी कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने मार्च से जून के बीच 14 चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी और केवल 2 चीज़ों की कीमतों में कमी दर्ज की है। इससे साफ है कि रोज़मर्रा की ज़रूरी खर्च अब

0: की मॉरिशस के परिवारों के बजट पर भारी पड़ रही है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: मार्च और जून 2026 के बीच ये नोट किया गया कि जिंदगी की महंगाई बढ़ती गई। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 109.6 अंकों से बढ़कर 112.2 अंकों तक पहुंचा, जो तीन महीनों में 2.6

0: सिद की वृद्धि, डीजल 18.2% से बढ़ा है, बिजली टैरिफ में 14.4% की बढ़ोतरी आई है, घरेलू तेल की कीमत में 13.6% का इजाफा हुआ है और पेट्रोल का दाम 10% से बढ़ा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए एयर टिकट भी बढ़ गई है। सिगरेट हाउसिंग लोन्स की सूद दर में भी इजाफा हुआ। जहां तक खर्चों की बात है, आवास, पानी, बिजली, गैस और दूसरी जरूरियात परिवहन के मुकाबले काफी महंगी हो गई हैं। लेकिन कुछ ऐसी पैदावारें हैं जो इस वृद्धि से प्रभावित नहीं हैं। जैसी सब्जियों के दामों में 4.5% की गिरावट आई है और निजी टीवी चैनल फीस भी 10.1% से घटे हैं। कुल मिलाकर स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने 14 दाम वृद्धियों का उल्लेख किया और 2 गिरावटों का नोट लिया, जबकि खर्चे मॉरिशस पैदावारों के बजट में बढ़ते जा रहे हैं।
1: कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA में बदलाव के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है कि 2 बार टैक्स लगने की समस्या को खत्म किया जाए और टैक्स एग्रीमेंट का गलत फायदा न उठाया जा सके। भारत के अधिकारियों के नए स्पष्टीकरण के बाद मॉरिशस ने इस प्रोटोकॉल को मंजूरी देने का फैसला लिया है। और कैबिनेट ने क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स के नए नियम 2026 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स को 2025 में ग्लोबल एंटी बेस इरोजन नियम के तहत शुरू किया गया था ताकि मॉरिशस की टैक्स बेस को सुरक्षित रखा जा सके। नए नियमों के जरिए क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स फ्रेमवर्क को सही तरीके से लागू करने के लिए ज़रूरी जानकारी दी गई है। इसमें इफेक्टिव टैक्स रेट को गणना का तरीका, टॉपअप टैक्स लगाने की प्रक्रिया और उन व्यक्तियों या संस्थाओं की जानकारी शामिल है जो इस डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स के दायरे से बाहर होंगे। बागातेल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण काम 62% पूरा हो चुका है। ये परियोजना, जिसकी लागत लगभग 14 बिलियन रुपये है, दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमरीका की अफ्रीकन अफेयर्स के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा ट्रोटमैन ने इस शुक्रवार को निर्माण स्थल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कंक्रीट डालने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।
2: दौरे की शुरुआत परियोजना की जानकारी से हुई। निर्माण स्थल के जिम्मेदार और युवा मॉरिशन इंजीनियरों ने नए दूतावास की योजना के बारे में बताया। इस दौरान अब तक पूरे हुए काम, आगे के निर्माण चरण और इमारत की विशेषताओं की जानकारी दी गई। ये इमारत सुरक्षा, टिकाऊ निर्माण और पर्यावरण संबंधी कड़े मानकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है।
3: La nouvelle ambassade américaine nous peut construire lui pour qu'il y dure pendant les prochaines 100 ans qui peut venir.
2: नई इमारत का निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है ताकि उसका ढांचा 100 सालों तक मजबूत रहे। निर्माण सामग्री, फिनिशिंग सभी कुछ उच्च किस्म की है और टिकाऊ भी।
4: Une exposition internationale avec plusieurs employés qui sont issus de plusieurs pays. Donc c'est vraiment un échange de connaissances.
2: अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के साथ हमने अनुभव साझा किया और नई विशेषज्ञता हासिल की।
4: Il y en a beaucoup sur leurs panneaux qui sont installés devant les rooftops qui pour offset le bois sur la consommation de 20% et aussi sur mon générateur qui est là, il est équipé avec mon sound atténuateur qui pour réduire le sound level.
2: इमारत की छत पर सोलर पैनल्स बिठाए गए हैं, इससे बिजली की बचत होगी। आधुनिक जनरेटर भी है, लीकेज को रोकने के लिए मजबूत ढांचे भी हैं। ये इमारत अन्य इमारतों से अलग है। अब तक परियोजना का 62% काम पूरा हो चुका है। निर्माण स्थल पर 20 देशों के करीब 550 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मुख्य ढांचे का निर्माण पूरा हो गया है। अब काम अंदरूनी निर्माण और तकनीकी सुविधाएं लगाने के चरण में पहुंच गया है। ये नया दूतावास सिर्फ एक इमारत नहीं, ये मॉरिशस और अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों का भी प्रतीक है। दोनों देश पहले से कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: I am
2: सारा ट्रॉटमन ने बताया, मेरे दौरे का मकसद है मॉरिशस और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ाना। ये यात्रा इस दिशा में सफल हुई है। मॉरिशस की कंपनियां अमेरिकी

0: साझेदारी के लिए तैयार हैं।
1: सा बातिमोला ले प्रोजे की पे रियलाइजे पर लामेरिक सेट एंबासाड की पो एन एन विजन दे प्लू दे 100 अन। सा ली डेमोंट्रे की नू रिलेशन अवेक लामेरिक ली स्टेबल ए ली सस्टेनेबल। डोंक ली एन सिंबल दे कॉन्फियंस।
0: गणराज्य के राष्ट्रपति धरम गोकुल ने बताया, अमेरिकी दूतावास के इस नए भवन को 100 वर्ष के विजन के साथ खड़ा किया जा रहा है। इस पहल से मॉरिशस और अमेरिका के बीच मौजूद मजबूत और स्थिर संबंध झलकते हैं। ये इमारत विश्वास का प्रतीक है। परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर एक अमेरिकी है, उन्होंने इस बात की प्रशंसा की है कि हमारे युवा इंजीनियर बहुत काबिल है। इस दूतावास के जनवरी 2028 में खुलने की उम्मीद है। इसके होने से मॉरिशस और वॉशिंगटन के बीच कूटनीतिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी, साथ ही दोनों देशों की साझेदारी भी और प्रगाढ़ होगी।
2: विवरण आस्था को वंचित अमन कर रहा। मॉरिशस के लिए इस हफ्ते प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट से देश के सामने खड़ी कई चुनौतियों पर बहस शुरू हो गई है। इनमें सार्वजनिक कर्ज, पेंशन सुधार और वृद्धि की संभावनाएं शामिल है। आईएमएफ की सिफारिशों को बेहतर तरीके से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पुराने उच्चाधिकारी डॉक्टर विमल ठाकुर ने स्पष्टीकरण दिए। सार्वजनिक वित्त, पेंशन सुधार और मौसम परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर महारत हासिल इस विशेषज्ञ ने हमारे सहयोगी शेजा जुमन से बात की, उनको सुनते हैं।
3: आईएमएफ ने मॉरिशस की इकोनॉमी पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है जब से ये रिपोर्ट आम की गई है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त इन टिप्पणियों पर गौर किया जाता है?
4: एगो मिशन आल रहल मॉरिस अप्रैल में मिशन वा मिलन गवर्नमेंट से सेक्टर प्राइवेट से बन और एनजीओस लोग संगे और यूनिवर्सिटी के लेक्चरर संगे सब कोई से मिलन जा ताकि उ लोग के जब रिपोर्ट वा लिखियन सत सब इंफॉर्मेशन रही सब कोई के पॉइंट ऑफ व्यू
3: IMF ने मॉरिशस में जब फिस्कल कंसोलिडेशन का अच्छा स्वागत किया है, दूसरी तरफ कई सुधारों की सिफारिश भी की है जिनमें पेंशन सुधार भी शामिल है और इस पर अभी ज्यादा टिप्पणी हो रही है।
4: दूगो चीज यहाँ रहल कि फिस्कल कंसोलिडेशन डेट और हमनी के देश के डेट ढेर उगमते होगा रहल और अभी जो जेफो होल बातवा के पैसे होता मोटे हो के हमने के ये भी देखे के चाहेला कि हमने के देश में बुढ़ापा उगमते हुआ था। हमने के हाई के प्रिपारे करे के चाहेला और प्रिपारे कैसे करब सा हमने के चाहेला कि ला संते के सिस्टम हमने के बुढ़ान लोग के सा लोग के स्वयं ले कैसे के चाहेला। हमने के ये भी चाहेला कि हमने के बड़ा लोग जो हवन सा उ लोग के सकब सा सोसाइटी में इकोनॉमी में इंक्लूड करे जब उ लोग भी पार्टिसिपे हो जन सा जब बूढ़ा हुआ था सा। पेंशन हाई में एगो एक पार्टी हा हाई सोल्यूशन वाके हाई जो रिफॉर्म करता अभी हाई रिफॉर्म वा असुरे करी कि सब सकब सा पेंशन वा दे के आने वाले सालों में। मॉरिस लाफ्रिक से डिफरेंट हा, हमने के पॉपुलेशन वेई हुआ था, लाफ्रिक के पॉपुलेशन अभी जनबा मैं जब देख बा जब एगो पेई जब जैसे बोला जापान जैसे बुल्गारी बा हाउ देशवन में भी व्यस्मा बहुत जल्दी से एक्सेलरे हुआ था, पॉपुलेशन भी रिड्यूस हुआ था और उन देशों में भी रिफॉर्म करत वन सा पेंशन के जमें हाउ सिस्टम वा सकी पेये करे आने वाले सालों में।
2: 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और अपार्टाइड के खिलाफ संघर्ष के विश्व प्रतीक नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इतिहासकार डॉक्टर सत्येंद्र प्रियतम के अनुसार नेल्सन मंडेला केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे बल्कि वे उपनिवेशवाद, अत्याचार और नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक थे। उनके संघर्ष ने दुनिया के कई लोगों को प्रेरित किया है, जिसमें मॉरिशस भी शामिल है। मॉरिशस में उनके विचारों ने सर शिवसागर राम गुलाम को भी 1950 और 1960 के दशक में आज़ादी की लड़ाई के दौरान प्रेरित किया। इतिहासकार के अनुसार नेल्सन मंडेला की विरासत आज भी युवा

0: महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। इतिहासकार डॉक्टर सत्येंद्र प्रियतम के बयान पर सुमेरा अकबर अली को सुनते हैं।
1: Dans ses écrits, des trois fois, il même mentionne Maurice. Dans Long Walk to Freedom, dans ce livre, il mentionne Maurice des trois fois.
2: Nelson Mandela ne apni tehreeron mein kai jagahon par Mauritius ka zikr kiya. Unhone upniveshan ke khilaf Mauritius ke sangharsh par baat ki. Sir Shreyas Sagar Ram Gulam 1970 aur 1980 ke saalon mein Free Mandela movement ka samarthan karte the. Angrezon ke khilaf aur Mauritius ki azadi ke liye Mauritius ko Nelson Mandela ki ANC se prerna mili thi. African National कांग्रेस की देखा देखी दक्षिण अफ्रीका में 1940 के जमानों से नेल्सन मंडेला ने भेदभाव का विरोध किया था। नेल्सन मंडेला की गिरफ्तारी भी स्वतंत्रता संघर्ष में एक प्रतीक है। उन्होंने अनेक नौजवानों को प्रेरणा दी है और अभी तक दे रहे
1: हैं।
0: विदेश में ईरान ने जोर्डन में तैनात कई अमरीकी सैन्य विमानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला करने का दावा किया है। ये कार्रवाई ईरान में कई स्थानों पर रात भर हुए अमरीकी हमलों के जवाब में की गई है, जिनमें कम से कम 8 लोगों की जान गई है। और ये घटना जोर्डन की सेना के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि उसने 3 ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। हालांकि जोर्डन ने किसी हताहत या नुकसान की सूचना नहीं दी है। और अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित ग्रेट लेक्स से लेकर राजधानी वाशिंगटन डीसी तक 15 राज्यों के लोग लगातार तीसरे दिन मौसम की भयानक मार झेलने को विवश है। लगातार तीसरे दिन जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। शुक्रवार को 68 जगहों पर आग के मामले दर्ज किए गए। लाखों अमरीकी नागरिकों के सामने गंभीर स्वास्थ्य संकट छा गया है और उन्हें घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। अमरीका के पूर्वी इलाके में जहां हर तरफ धुआं धुआं है, वहीं दक्षिणी हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। देश विदेश की खबरों के बारे में अब मौसम का हाल सुनते हैं। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दोपहर बाद के समय देश के उत्तरी इलाकों, पूर्वी इलाकों और संचर बाजू पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा भी होगी। और रात्रि के समय उत्तरी इलाकों और पश्चिमी इलाकों पर हल्की वर्षा होगी और बाद में दक्षिणी इलाकों, पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल बातों पर भी रह रहकर वर्षा हो सकती है। तापमान सेंट्रल बातों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी, जो दक्षिण पश्चिम की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। सूर्योदय आज 6:45 बजे हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 5:47 पर होगा।

मौसम संबंधी जानकारियों के बारे आज की प्रमुख खबरों को दोहराती है। मॉरिशस में महंगाई का असर जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार मार्च से जून के बीच रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य टैक्स एग्रीमेंट के गलत इस्तेमाल को रोकना और दो बार टैक्स लगने की समस्या को दूर करना है। बगाचल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण कार्य 62% पूरा हो चुका है। लगभग 14 बिलियन रुपये की लागत वाला ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। विदेश में ईरान ने जोर्डन में तैनात अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। इसके बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। तो इसी के साथ

0: समाचार समाप्त हुई इसे आप तक पहुंचाने में हमें फिजान का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: नंबर 45 रुलिस क्यूपिप में, नंबर 45 रुलिस क्यूपिप में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के श्री मारोती रागू जो मारोत नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो एक प्राथमिक स्कूल के पूर्व इंस्पेक्टर थे की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री बिपिन रागू के घर नंबर 45 रुलिस क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। मोंसेलमान सुहावन बेलेर रिवियर सेश में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री बेदियानंद की सुन चेती जो देवानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रावती की सुन चेती के घर मोंसेलमान सुहावन बेलेर रिवियर सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। अवनु पालमा कैथोबोन में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लोगामनी चांग हावे हरिद्वार पैदाइशी नाम निक फोक चाओ और जो लीना थाडोवा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके पति श्री केशरी सिंह आनंद थाडोवा के घर जीवनारायण एवेन्यू पालमा कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। जिलबेर जोसन स्ट्रीट कॉन्लेवियो ओकुलेमे 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड के श्री मुनुसामी मारीमुतु जो मामी गाँव सो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर जिलबेर जोसन स्ट्रीट कॉन्लेवियो ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगारा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। क्लेफोन नंबर एक वाकुआ में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गौरी भगवान जो पैदाइशी नाम जीता और जो श्रीमती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री राजन भगवान के घर क्लेफो नंबर एक वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। सीवन चिन्यन रोड गुडलैंड्स में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की कुमारी फुलमत मुकुन जो बिदवंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उनके घर सिवन चिन्यन रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहोश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। रॉयल रोड रोशटिया में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के श्री चुनुलाल होदन जो रामदत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती ज्ञानती होदन के घर रॉयल रोड होस्टिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोंगुप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 289 एवेन्यू ओल्डी 4 bonnes mines.

0: vers 209 avenue Olivier Quatre Bonnemi. A tavern sal ki 58 years old ki Shri Amrit Babu. Shri Amrit Babu jo Ajit naam se zyada jaane jaate the ki mrityu ho gayi unki arthi aaj din ke 11 baje aaj din ke 11 baje unke bhai Shri Sajan Babu ke ghar नंबर 289 एवेन्यू अली का थ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: मॉरिशस में आर्य समाज के 123वां वर्षगांठ के संदर्भ में आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में पॉम्प्लेमूस आर्य जिला परिषद पॉम्प्लेमूस आर्य समाज तथा महिला आर्य समाज के सहयोग से शनिवार 18 जुलाई को शाम 2 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है मॉसो रोड पॉम्प्लेमूस के आर्य समाज मंदिर में। लाफ्लोरा के श्री सूर्य मंदिर पुरुषोत्थमा क्षेत्र द्वारा रात यात्रा निकाली जाएगी। स्थान है शनिवार 18 जुलाई सुबह 9 बजे शाम के 7:30 बजे श्री महेश्वरनाथ मंदिर थियोले श्री वेद माता गायत्री मंदिर देपिने श्री काशी क्षेत्र मंदिर मौद ऑस्ट्रेलिया श्री गायनाथ मंदिर बोनाकई

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 7 बजे हैं। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। फीफा विश्व कप 2026 की अंतिम घड़ी आखिर में आ ही गई। कल रविवार को होगा इसका महाफाइनल। विश्व फुटबॉल के दो दिग्गज फुटबॉल राष्ट्रों के बीच यानी अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन या मौजूदा विश्व कप चैंपियन वर्सेस यूरोपियन चैंपियन। अर्जेंटीना में द गोट लियोनेल मेसी है तो स्पेन में कमाल का यमाल, और इन दोनों की कहानी भी अद्भुत है जिसे हम कल ही सुनाएंगे। सो कल रात 11 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी मेटलाइफ स्टेडियम में। इसलिए 19 जुलाई की रात सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि फुटबॉल के इतिहास का वो सुनहरा अध्याय होगी जब मेटलाइफ स्टेडियम में लाखों दिल करोड़ों दिल एक ही सवाल पूछेंगे, क्या स्पेन दूसरी बार के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनेगा या अर्जेंटीना लगातार दूसरा विश्व कप जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचेगा। इस बारे में सुनते रहिए। फिलहाल विश्व कप फाइनल से पहले फ्रांस और इंग्लैंड आज रात 11 बजे तीसरे स्थान के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे। टोमा टुरेल ने कहा कि ये एक काला दाग है जिसे धोना ही पड़ेगा, और उल्लेखनीय है कि ये सिर्फ तीसरे स्थान का मुकाबला नहीं बल्कि दो फुटबॉल महाशक्तियों की प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और गौरव की जंग है। सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए दोनों टीमें आखिरी बार मैदान पर अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड आज रात 11 बजे। किलियान एम्बापे अभी भी गोल्डन बूट का प्रबल दावेदार है। जूड बेलिंगम और हैरी केन अभी भी भूखे प्यासे हैं, इसलिए आज रात 11 बजे से फ्लोरिडा के मायामी गार्डन्स में हर टैकल में आग होगी, हर पास में उम्मीद और हर गोल पर स्टेडियम गूंज उठेगा। ये मुकाबला है मॉरिशस को कब्जा करने वाले दो शासकों का, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, आज रात 11 बजे लाइव एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर। बता दें कि इसको लेकर यूएसए के राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप ने फिर टिप्पणी की है। आज सुबह ही बताया कि हैरी केन को डिफेंस में खिलवाया गया, एक बड़ा ही इम्प्रेसिव अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसे डिफेंडर बना दिया गया, और जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ भी खेल चुका है। यानी अब ट्रंप फुटबॉल और गोल्फ को लेकर वो समानता कर रहा है। और इस बीच टोमा टुखेल ने बताया कि ये काला दाग रह गया है सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ हारना, इस कारण ये दाग धोना ही पड़ेगा। सो आज रात 11 बजे फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, कल रात 11 बजे महाफाइनल अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, देखते रहिए और सुनते रहिए। फुटबॉल जगत से ही कुछ अन्य खबरें। मैनचेस्टर यूनाइटेड एकदम से ट्रांसफर बाजार में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गया है। अपने मिडफील्ड को मजबूत करने के लिए यूरी चेलमांस और एंड्रे सैंटोस को साइन करने के बाद अब खबर ये है कि द रेड डेविल्स एएस रोमा के फ्रेंच इंटरनेशनल मानु कोने को भी ओल्ड ट्राफोर्ड ला रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानु कोने ने भी हाँ कह दिया है, हालांकि चेल्सी ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा है। दाम 51 मिलियन पाउंड। और जहां तक लिवरपूल का सवाल है, तो अभी कल रात ही डोमिनिक ज़ोबोस्लाई ने क्लब के साथ 5 साल के एक नए कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, और जेरेमी जैकेट तथा विक्टर मुनोज के बाद द रेड्स बहुत ही निष्क्रिय हो गए हैं। फ्रांस का ब्रैडली बाकुला लगता है ऑफ लिमिट है, फिर भी कोशिशें जारी हैं। इस बीच इंग्लैंड और टोटेनाम हॉटस्पर का युवा डिफेंडर जेड स्पेंस एंडोनी इराओला की निगाह में आ गया है, किंतु ये 25 वर्षीय स्टार डिफेंडर आंख मूंद कर नहीं आएगा। उसके कोच रोबर्टो डी ज़ेरबी ने कह दिया कि 50 मिलियन पाउंड के ऊपर बात की जा सकती है। हालांकि टोटेनहम के अधिकारियों ने क्लब को मजबूती प्रदान करने के लिए कई की साइनिंग भी की है। इंटर मिलान भी जेड स्पेंस का प्रशंसक बन गया है। फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की बेल्जियम ग्रां प्री रेस कल रविवार को लगने वाली है, और इस कारण कल शुक्रवार से दूसरे प्रैक्टिस में लीडर किमी एंटोनेली की जीत हुई, तो तीसरे प्रैक्टिस की तैयारी हो रही है और आज रात तक स्प्रिंट रेस भी होगी, तब जाकर पता चलेगा कि पोल पोजीशन से कौन रेस शुरू करेगा कल। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन का जॉर्ज रसेल अब दूसरे स्थान पर आ गया है, वो मर्सिडीज़ के ही किमी एंटोनेली से केवल 25 अंक दूर है, तो तीसरे स्थान पर है फेरारी का लेविस हैमिल्टन जो रसेल से केवल 7 अंक पीछे है। और क्रिकेट में पहला वनडे 6 विकेट से हारने के बाद टीम इंडिया कल रविवार को लॉर्ड्स स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ इस अपना दूसरा एक दिवसीय मैच खेलने उतर रही है। भारतीय क्रिकेट का बुरा समय चल रहा है, टी20 में भी इंग्लैंड के हाथों उसकी खूब धुलाई हुई, इसलिए अब धोने का टाइम आ गया है। टाइम है 7:05:45। आज दाव पर ट्रॉफी नहीं बल्कि सम्मान, गौरव और करोड़ों प्रशंसकों का गर्व है। फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड आज रात 11 बजे एमबीसी टीवी पर लाइव सीधा प्रसारित किया जाएगा। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।

सुबह के 7:15 हो रहे हैं और अब सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां। ओकुले रूट क्वार्टर मिलिटेर जनरल दे गोल एम जी ओलिन नोत्र दाम दे लोरेट रामपल सैमुअल फुक्रो लाबोडने एलियास कुआ लवेंडर हिल के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कल रविवार 19 जुलाई को सुबह के 8:30 से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कैटरबोन रॉयल रोड बेलरोज दुकाएँ और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 19 जुलाई को दिन के 9 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अविन्यू विल्सन अविन्यू बोसेजू कलविल दुलाफाई पुआव लापेरूज और आसपास में जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 19 जुलाई को सुबह के 8:30 से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर सेंट पियर पेटी वर्जे बोआशेरी रोड रिविया बाटिस्ट ले पूस रोड स्कूल लेन सेंट पियर विलेज लिग्लीज सेंट पियर और उसके आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 19 जुलाई को सुबह के 8:30 से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। कैटरबोन एवेन्यू बेटो Avenue Saint-Anthelme, Avenue Ollier, Avenue Rotin और आसपास में जो गलियाँ हैं वहाँ के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 18 जुलाई को सुबह के 8:30 से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर मोका शॉल टेलफेयर जॉन्टिल स्टेट CWA मिनीसी CWA कॉन ऑगस्ट और अभी प्रो मिनीसी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 18 जुलाई को सुबह के 8:30 से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। साथ में कैटरबोन एवेन्यू राजकुमार गजादर फिर से सुन दिया विज्ञप्ति कैटरबोन

0: अविनी राजकुमार जादव, अविनी डॉसन, वेला मुरुगन और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 18 जुलाई को सुबह के 8:30 से 9:30 के बीच और दोपहर बाद के 2 से 3 बजे के बीच बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर बोबासा, अविनी डॉक्टर लेजूर, अविनी कोडाबाकस, अविनी राहुल फिलिप, अविनी मोदाव, रेजिडेंस विलमें, एनएससी विलमें, डॉक्टर रेड, अविनी महादेव बिल्टू, अविनी चुपेरे, अविनी शतनौ और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 19 जुलाई को सुबह के 8:15 से 9:15 के बीच और दोपहर बाद के 2 बजे से 2:45 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और ड्रीम प्राइस बोबासा, ड्रीम प्राइस बोबासा के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है और ड्रीम प्राइस बोबासा में लोगों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई को जी हाँ सुबह के 8:15 से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कोरोमंडल मोसेलमोन लीजिंग अवेन्यू रिवरसाइड अपार्टमेंट द बेर्ज के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 18 जुलाई को सुबह के 8:30 से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में कैटरबोन, अविनी राजकुमार गजादो, अविनी डॉसन, वेला मुरुगन और आसपास में जो गलियां हैं वहां के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 18 जुलाई को सुबह के 8:30 से 9:30 के बीच और दोपहर बाद के 2 से 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: चिड़िया चहचहा रही है, धूप मुस्कुरा रही है और ठंड हवाएं बह रही है। क्या बात है, क्या बात है। इस नई मॉर्निंग का हम स्वागत करते हैं और आप प्यारे प्यारे लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं AM2MBC रेडियो मॉरिशस की लहरों पे। रेडियो मॉरिशस आप ही लोगों का लोकप्रिय नंबर वन राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन। आप हमें 819 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर। सभी लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दिस इज योर मस्त मॉर्निंग शो। सुबह का नजाना 20 से 9 बजे तक कुछ प्यारे प्यारे गाने, प्यारी प्यारी बातें, दिलचस्प पर मेस्मराइजिंग म्यूजिक। जी हाँ, और आज शनिवार है, शनिवार 18 जुलाई 2026। अगर आज आपका जन्मदिन है सो हैप्पी बर्थडे कहते हैं। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको हमारी ओर से। और बेशक जब मॉर्निंग की शुरुआत होती है तो थोड़ा लेजी लेजी फील करते हैं और बहुत से लोग अगर रात को देर तक काम करते हैं तो सुबह थोड़ा देर से जागते हैं। कोई बात नहीं, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। हम हैं यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे गीत और लवली म्यूज़िक के साथ। मॉर्निंग को स्पेशल बनाएं। सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसके आशीर्वाद से हमें मौका मिला है एक नई सुबह, एक नए दिन को देखने के लिए, है कि नहीं। और हम सब एक परिवार है, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, और आप भी हमारे परिवार है। और एक परिवार होने के नाते हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हम तो रोज़ आपको अपनी दुआओं में याद करते हैं। दोस्तों, यही दुआ करते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में प्यार हो, खुशियाँ हो, बहार हो। जो लोग बीमार हैं, स्पेशल थॉट फॉर देम कि आप लोग जल्द ठीक हो जाएँ। हम दुआ करते हैं जो लोग बीमार है, ग्रस्त है बीमारी से, सो आपकी बीमारी दूर हो और प्रभु आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। हर घर में सुख शांति हो, हर परिवार में प्यार हो, रिश्तों में मिठास हो, दिल में कोई शिकवे गिले ना हो। और अपने आप से कहें कि आज जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर ये बात है तो चलिए शुरू करते हैं सुबह का नजाना प्रोग्राम को आज के चिंतन के साथ डॉक्टर झमन की जुबानी।
2: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज

उपेक्षा भाव मानव के लिए निकृष्टतम व्यवहार है। वह अपशब्द सहन कर सकता है, पीट सकता है, किंतु उपेक्षा सहन नहीं कर सकता।

0: भाई याद से स्टूडेंट्स लोगों के ये खुशी की बात है क्योंकि आज से सेकंड टर्म की छुट्टियां शुरू है। सो हैप्पी स्कूल हॉलीडेज ऑल द स्टूडेंट्स इन मॉरिशस। जी हाँ, वो चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, सभी को छुट्टियां बहुत बहुत मुबारक। एक महीने तक आप घर पे रहेंगे, शोर शराबा धमाल, क्या बात है क्या बात है। अच्छी बात है, सेकेंड टर्म की पढ़ाई के बाद अब 4 सप्ताह तक हमारे स्टूडेंट्स और अध्यापक आराम फरमाएंगे। और हैप्पी स्कूल हॉलीडेज टू ऑल ऑफ यू। छुट्टियों का भरपूर मज़ा लीजिए और सुनिए एक बहुत ही मजाकिया गाना। कैसा गाना, जब सुनेंगे तो हंसते रह जाएंगे और हंसना हृदय के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, डॉक्टरों का भी कहना है कि हम जितना हंसते हैं, जितना मुस्कुराते हैं, उतना अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए सुनते कैसा गाना। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा बाबा, एक ऐसा गाना है जिसमें सभी फिल्मों के नाम शामिल हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, हंसिएगा जरूर जोर जोर से। आहा क्या बात है।
1: ये क्या, लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

0: चोर
1: भूल गए
2: जाने मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम

0: वाह क्या हंसी है, हम भी इस हंसी को सुनकर हम भी हंसने लगे यहाँ पर, आप भी, आप लोगों ने भी बहुत हंसा होगा हमारे साथ। अच्छी बात है, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। कीप स्माइलिंग कीप लाफिंग ऑल डे लॉन्ग। आजकल लोग कम हंसते हैं इसीलिए लोग इतना चिड़चिड़ा हो गए, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग बहुत गुस्सा करने लगे। अरे भाई, सभी बातों को सीरियसली लेंगे तो कैसे जिएंगे यहाँ पर। कुछ बातें होती है उन्हें भूल जाइए और सभी शिकवे गिलों को भूल कर लोगों से मिलिए, प्यार से एक दूसरे से बात कीजिए, मुलाकात कीजिए। और मॉर्निंग का वक्त है, सो गर्मा गर्म चाय गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ साथ हो जाए कुछ गर्मा गर्म पकौड़े तो क्या बात है। कुछ लोग कह रहे प्रताप जी गातो पीमा बना है। क्या बात है, क्या बात है, गातो पीमा गर्मा गर्म चाय। और चाय के साथ साथ इस अगले गीत का मजा लीजिए, किशोर कुमार एस जानकी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है अकलमंद, और जब प्यार का इजहार होता है तो कैसे प्यार का इजहार किया जाता है, चलिए एक साथ सुनते हैं।
1: आई लव यू,
2: आई लव यू,
1: आई लव यू,
2: आई लव यू,
1: आई लव यू,
2: आई लव यू।

सुबह का नजराना इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कुछ ही क्षणों में होगा ज्ञान सर्वर प्रोग्राम हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से। उसके बाद 8 बजे समाचार भोजपुरी में, समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी। सुनते रहिए प्यार के साथ MBC रेडियो मॉरिशस।

ज्ञान सरोवर हिंदी संगठन अर्थात हिंदी स्पीकिंग यूनियन के साप्ताहिक कार्यक्रम के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। प्रिय श्रोताओं, आज हमारा विषय है नारी चेतना और भारतीय दृष्टि, जिसमें हम नारी अधिकारवाद का दार्शनिक पुनर्पाठ पर विचार करेंगे। इसी विषय पर चर्चा करने हेतु हमने स्टूडियो में श्रीमती राजश्री बिनिमादू को आमंत्रित किया है। आपका स्टूडियो में स्वागत है और आपको मेरा प्रणाम। श्रीमती राजश्री बिनिमादू महात्मा गांधी संस्थान के इंडोलॉजिकल स्टडीज़ के दर्शन शास्त्र विभाग की व्याख्याता है। आप हिंदू धर्म के अंशकालिक PGC कार्यक्रम की समन्वयक भी हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी भारत से दर्शन शास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही साथ संस्कृत और भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी योग्यता प्राप्त की है। मॉरिशस और मलेशिया में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 26 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ आप भारतीय और पश्चिमी दर्शन, नीतिशास्त्र, धार्मिक दर्शन, पर्यावरण नीतिशास्त्र और तुलनात्मक दर्शन में विशेषज्ञता रखती है। आपकी शैक्षणिक रुचियां भारतीय महाकाव्यों, महिला अध्ययन, शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नीतिशास्त्र तथा समकालीन समाज के लिए भारतीय दार्शनिक चिंतन की प्रासंगिकता तक फैली हुई है। यह हमारा सौभाग्य है कि आप एक सक्रिय शोधकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वक्ता के रूप में भी दार्शनिक विचारों को जन समुदाय के लिए सुलभ बनाने और आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में भारतीय बौद्धिक परंपराओं के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे पहले

0: हमारे श्रोताओं को यह बताइए कि आजकल हम महिला सशक्तिकरण की बहुत बात करते हैं, भारतीय दृष्टि में नारी को शक्ति क्यों कहा गया है, इस पर आप अपना विचार दीजिए।
1: नमस्कार वर्षा जी, और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। देखिए, आज हम महिला सशक्तिकरण की बहुत बात करते हैं,
0: जी हाँ,
1: लेकिन भारतीय दर्शन में नारी को केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली व्यक्ति नहीं माना गया है,
0: जी,
1: बल्कि उसे शक्ति कहा गया है। शक्ति का क्या अर्थ है? सृजन करने की शक्ति, जीवन को आगे बढ़ने की शक्ति, और समाज को सही दिशा देने वाली है वो शक्ति।
0: जी,
1: हमारी परंपरा में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी नारी के शक्ति, ज्ञान और समृद्धि के स्वरूप है, वो तीन देवियाँ। वही अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें स्त्री और पुरुष के संतुलन तथा एक दूसरे के सम्मान का संदेश देता है,
0: जी।
1: जैसे कि हमारे मनुस्मृति में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है ना, वहाँ देवत्व का वास होता है।
0: बिल्कुल,
1: मॉरिशस में देखे, जैसे देश में, हमारे देश में हम देखते हैं कि महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय, संस्कृति और सामाजिक सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसलिए सच्चा महिला सशक्तिकरण केवल अधिकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को सम्मान, शिक्षा, समान अवसर, और वो आत्मविश्वास और अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना भी आवश्यक है।
0: जी, क्या भारतीय संस्कृति में स्त्री और पुरुष को समान माना गया है?
1: जी देखिए, भारतीय संस्कृति में स्त्री और पुरुष दोनों को समान सम्मान और महत्व दिया गया है। यह समानता का अर्थ यह नहीं है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि यह है कि दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं और दोनों समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संस्कृति यह हमें सिखाती है कि परिवार का समाज तभी आगे बढ़ते हैं जब स्त्री और पुरुष दोनों को सम्मान, विश्वास और अपनी क्षमता के अनुसार वो आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमारे यहाँ सहयोग और परस्पर सम्मान की भावना तो बहुत महत्व दिया गया है। आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है ना। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उनका एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद में सुशोभित किया गया है। मॉरिशस में भी महिलाएं राजनीति हो, शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय, संस्कृति और सामाजिक सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सो इसलिए वास्तविक समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसे सम्मान मिले, अपनी प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिले और वह समाज की उन्नति में अपनी भूमिका भी निभा सके।
0: बिल्कुल सही। बहुत लोग मानते हैं कि स्त्री अधिकारवाद यानी कि फेमिनिज्म केवल पश्चिम की देन है। क्या भारतीय दर्शन में भी ऐसे विचार मिलते हैं जो महिलाओं के सम्मान और समानता की बात करते हैं?
1: जी, ये अक्सर यह प्रश्न उठा गया है कि जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फेमिनिज्म या नारीवाद केवल पश्चिम की देन है। यह सही है कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में इसका विकास पश्चिम में हुआ, लेकिन यदि हम भारत

0: भारतीय दर्शन को देखें तो महिलाओं के सम्मान, गरिमा और शिक्षा के विचार यह भी बहुत पहले से मिलते हैं। हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में देखे, जो मैत्रेयी लोपमुद्रा है, गार्गी भी है, जैसी विदुषी महिलाएं का उल्लेख भी मिलता है। उन्होंने केवल शिक्षा ही प्राप्त नहीं की बल्कि दार्शनिक चर्चाओं को भी मैं भी भाग लिए हैं। इससे पता चलता है कि महिलाओं के ज्ञान और विचारों को भी महत्व दिया जाता है। तो भारतीय दर्शन यह भी सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य उसके गुण, ज्ञान और कर्म से होता है। इसलिए महिलाओं को शिक्षा, आत्मसम्मान और आगे बढ़ने के अवसर देना हमारी परंपरा में मूल मूल्यों के अनुरूप है। इसलिए हम कहते हैं कि भले ही फेमिनिज्म शब्द आधुनिक हो, लेकिन महिलाओं की गरिमा, सम्मान और विकास का विचार भारतीय दर्शन में भी गहराई से मौजूद है। इस प्रकार भारतीय दर्शन और आधुनिक जो फेमिनिज्म है, दोनों महिलाओं के सम्मान, गरिमा और विकास की बात करती है।
1: बहुत धन्यवाद। यदि हमारे ग्रंथ इतने ऊंचे आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों दिखाई देता है?
0: यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। हमें यह समझना होगा सबसे पहले कि किसी भी समाज में आदर्श और व्यवहार हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं।
1: जी,
0: भारतीय ग्रंथों में नारी के सम्मान, शिक्षा और गरिमा की बात की है, पहले भी हमने इस पे चर्चा की है। तो लेकिन समय के साथ जो सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों में बदलाव आए हैं, कई परंपराएं और रूढ़ियों जी भी जुड़ती चली गई, जिनके कारण इस मूल आदर्शों का पालन हर जगह नहीं हो पाया।
1: जी,
0: इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि भेदभाव का कारण केवल हमारे शास्त्र है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम उनके मूल संदेश को समझने के बजाय केवल बाहरी परंपराओं का पालन करते हैं। आज आवश्यकता है कि इस बात की है कि हम अपने ग्रंथों के मूल मूल्यों, सम्मान, न्याय, शिक्षा और समान अवसर को समझें और उन्हें अपने परिवार, समाज और कार्यस्थलों में अपनाएं। यही सच्चे अर्थों में नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा है।
1: जी, आज की महिलाओं और युवाओं के लिए भारतीय दर्शन क्या संदेश देता है?
0: आज के समय में हम देखें तो भारतीय दर्शन महिलाओं और युवाओं को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और ज्ञान, अच्छे संस्कार और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वयं को समझने, सही निर्णय लेने और एक अच्छे इंसान बनने का मार्ग है। यह भी सिखाता है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, तभी वास्तविक प्रगति संभव होता है। आज की जो महिला केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन सकती है, जब वह शिक्षित, आत्मविश्वासी और अपने मूल्यों के प्रति जागरूक होती है, तो वह अपने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संवारती है। इसलिए भारतीय दर्शन का संदेश है, अपने आप पर विश्वास रखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने मूल्यों को जीवन में अपनाएं और ऐसे जीवन यात्रा की तय कीजिए जिससे आपका विकास भी हो और समाज का भी कल्याण हो।
1: जी, अंत में यदि आपको नारी चेतना को एक सरल वाक्य में समझाना हो तो आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, मेरे विचार से नारी चेतना का अर्थ है

0: अपने भीतर की शक्ति, अपनी गरिमा और अपनी क्षमता को पहचानना तथा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। भारतीय दर्शन में नारी को शक्ति के स्वरूप के रूप में देखा गया है। देवी महात्म्य में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है उन्हें नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इन बहुमूल्य विचारों के लिए आपको बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत तक हम पहुँच चुके हैं। सभी श्रोताओं को वर्षा की ओर से नमस्ते और शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: नमस्ते। भोजपुरी में समाचार सुना जा। महंगाई के असर अभिले मॉरिशस के लोग के बजट पर बनल बाती। इबर इस मार्च से जून महीना के बीच कई को जरूरी सामान और सेवा के दाम में बढ़ोतरी आल बाती। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की ताज़ा आंकड़ा में सामने आल बाती। रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन उस सब चीज़ में शामिल बाती जिकर में सब ले जस्टी बढ़ोतरी दर्ज करल गल बाती। कुल मिला के स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस मार्च से जून के बीच 14 गो चीज़ के दाम में बढ़ोतरी और खाली दो गो चीज़ के दाम में कमी दर्ज कर ले बाते। एक से साफ हुआ था कि रोज़मर्रा के ज़रूरी खर्च अब भी मॉरिशस के परिवार के बजट पर भारी पड़ता। कैबिनेट मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में बदलाव के प्रोटोकॉल की लागू करे के मंजूरी दी देले बाते। एक उद्देश्य दो बार टैक्स लगे की समस्या की खत्म करे के बाते, जिमें टैक्स एग्रीमेंट के गलत फायदा नहीं उठावल जा सकी। भारत के अधिकारी के नवा स्पष्टीकरण के बाद मॉरिशस ई प्रोटोकॉल की मंजूरी देवे के फैसला कर ले बाते। बागाचल में नवा अमरीकी दूतावास के निर्माण काम 62% पूरा हो गल बाते। ये प्रोजेक्ट जेकर लागत 14 बिलियन रुपया की बाते, दिसंबर 2027 से ले पूरा होवे की उम्मीद बाते। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका के अफ्रीकन अफेयर्स खाते असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा ट्रोटमान ई शुक्रवार के निर्माण की जगह के दौरा कर लंजा। इस मौका पर वो प्रतीकात्मक रूप से कंक्रीट डाले के कार्यक्रम में भी हिस्सा ले लंजा। विदेश में ईरान जोर्डन में तैनात कई गो अमरीकी सैन्य विमान पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर ले करे के दावा कर ले बाते। ये कार्रवाई ईरान में कई गो जगह पर रात भर हो अमरीका की हमला के जवाब में कर गल बाते। जिकर में कमती 8 गो जना की मौत हो गल बाते। ये घटना जोर्डन के सेना के बयान के बाद होल बातें जिक्र में बोल गया है कि वो 3 गो ईरानी

0: मिसाइल की मार गिरा दिली बातीजा और जोदान किंतु जोदान किसी हताहत या नुकसान की सूचना नहीं दिले बाते एकर से मध्यपुर में युद्ध जस्टी तेज हो गल बाते तो ये रहल भोजपुरी में समाचार आप लोग के ध्यान का दें धन्यवाद
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Shuk samachar suna janam wa dusav. Navasi number 200 Navasi Avenue au lieu 4 bon mi number 200 Navasi Avenue au lieu 4 bon mi. अठावन बरीस की सकौचितों के श्री अमृत बाबू जिनका लोग अजीत नाम से जन शरण जा गुजर कर हवन करमाती आज दिन के 11 बजे उनकर भाई श्री सजन बाबू के घर नंबर 289 एवेन्यू लिकाथोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिन गांधी पार्मा के शमशान भूमि ले जाबर जाए क्रमिशन टूडे एट 11 AM रायरोध होस्टियमी 87 बरिस की 87 के श्री चुनुलाल ओदान जिनका लोग रामदत्त नाम से चंद्रचा गुजर कर हवन करमाती आज दिन के 11 बजे उनकर पत्नी श्रीमती ज्ञानती ओदान के घरे रायरोध होस्टिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिन खोंगुप के शमशान भूमि ले जावर जाए क्रमिशन टूडे एट 11 AM सीवन चिनियन रोड गुडलैंड्स में बयासी परिस के 92 के कुमारी फुलमत मुकुंद जिनका लोग विद्वंती नाम से चंद्र ट्रंजा गुजर कर हवन करमाती आज दिन के 10 बज के आधा उनकर घरे सीवन चिनियन रोड गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार का तुम बाहूश के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टूडे एट 10:30 AM क्लेफोन नंबर एक वाकवामी 87 बरिस के 87 के श्रीमती गौरी भगवान पैदाश नाम जीता जिनकरा लोग श्रीमती नाम से चंद्र रंजा गुजर घर हवन करमाती आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा श्री राजन भगवान के घरे क्या फोन नंबर एक वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिन फेनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टूडे एट 1 PM जिल्बेर जोसन स्ट्रीट कौन लवियो ओकुलेमे 79 बरिस के 79 ans के श्री मुनुसामी मारीमुतु जिनकरा लोग मामे गाँव सो नाम से जन्म रंजा गुजर घर हवन करमाती आज इनके ढाई बजे उनकर घर शिल्बिया जोसन स्ट्रीट कौन लो कुले से उठा के अंतिम संस्कार खाते बिगाखा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टूडे एट 2:30 PM जीवनारायण एवेन्यू पालमा 4 बोन में क्यासी बरिस के 81 ans के श्रीमती लोगामनी चौंग हावे हाउडोवा पैदाशी नाम निक फोक चाओ जिनकरा लोग लीना हाउडोवा नाम से रंजा गुजर कर हवन करमाती आज इनके तीन बजे उनकर पति श्री केशव सिंह आनंद हाउडोवा के घर जीव नारायण एवेन्यू पालमा 4 बोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिन गांधी पालमा के शमशान भूमि जावर जाए क्रमिशन टूडे एट 3 PM मोंसलमान सुहावन बेलेरिविया सेशमी 69 बरिस की 69 ans के श्री बेदियानंद की सुनचेती जिनकरा लोग देवानंद नाम से चंद्र रंजा गुजर गल हवन करमाती आज इनके ढाई बजे उनकर पत्नी श्रीमती चंद्रावती किसुन चेती के घरे मुसलमान सुहावन बेलेरिविया सेश से उठा के अंतिम संस्कार का दिन भूषण के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टूडे एट 2:30 PM नंबर 45 रुलिस क्यूपिप में 87 बरिस के 87 ans के श्री मारुति रागु जिनका लोग मारुत नाम से जाने रंजा और जिन प्राथमिक स्कूल के पूर्व इंस्पेक्टर रंजा गुजर कर हवन करमाती आज दिन के तीन बजे उनकर बेटा श्री बिपिन रागु के घरे नंबर 45 रुलिस क्यूपिप से उठा के अंतिम संस्कार खातिन बिकारा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टूडे एट 3 PM शोकग्रस्त परिवार संगे हमने की सहानुभूति बातें
2: ये है रेडियो मॉरिशस

0: म्यूजिक म्यूजिक और म्यूजिक जी हाँ, सुबह के 11:15 वंस अगेन स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं MBC रेडियो मॉरिशस। अभी जी सुनिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्तियाँ, कैट्रबोन अविनी राजकुमार गजादो अविनी डॉसों विला मुरुगन और आसपास में जो गलियाँ हैं वहाँ के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 18 जुलाई को सुबह के 8:30 से दिन के 9:30 के बीच और दोपहर बाद के 2 से 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में जी हाँ, कोरोमंडल मोसेलमेंट लीजिंग एवेन्यू रिवरसाइड अपार्टमेंट द वेर्ज के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 18 जुलाई को सुबह के 8:30 से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना की बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। इसी बीच सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: मौसम गुनगुना रहा है, दिल दीवाना गा रहा है, रास्ता तुमसे कह रहा है, लग जाए ना ठोकर, धीरे चल धीरे धीरे चल धीरे चल धीरे धीरे चल। सांसरवास के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर ऑडियंस, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। दिस इज योर मस्त मॉर्निंग शो, सुबह का नशा ना पाओ टू डेडिकेशन टाइम 4028085। या फिर आप हमें हमारे टिकटॉक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, ऑन टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस, और आप यहां पर SMS कर सकते हैं, अपनों के नाम जोड़ सकते हैं। ऑलराइट, प्लेलिस्ट में बहुत सारे गाने हैं, रहना है तेरे दिल में, फिर जुड़वा, बधाई हो बधाई, जुदाई और मुकद्दर का सिकंदर। जी हाँ, इन फिल्मों के गीत हैं हमारे प्लेलिस्ट में। इन गीतों को अगर अपनों के नाम करना चाहेंगे सो बेशक कर सकते हैं। सुबह 11:16 और अभी प्रोग्राम चलेगा दिन के 9 बजे तक। याद रहे, आप हमें टिकटॉक पेज पर SMS कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर आप, और इसे सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। और ये पहला गाना ज़रा ज़रा बॉम्बे जयश की आवाज़ में, और ये गीत हम चलाएँगे श्रवण कुमार के नाम। जॉन काजिमिया भी हमारा साथ दे, जितुआ सूरज, हेलो अंगिनी इकबाल, ये गीत आपके नाम भी। राधा रागावेन हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू जी। फिर सुख है हमारे साथ, केविन ममुआ, शोभा, प्रिनाल, हेमराज, कंदन, मणि, अविनाश, अमित आज़ाद, विमला देवी, कृष्णी, फिदू, अनुष्क, और यही गाना दिनेश महतो, हेलो वेरी गुड मॉर्निंग, और बिमला जी के नाम, क्रिस्टीना के नाम भी, बिस्तर सुभाष भी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर और हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर, से गीत आपके नाम ज़रा ज़रा।

That was the golden voice of Bombay Jayashree. रहना है तेरे दिल में, एक अलग सा टच था इस गीत में. सुबह 11:23, हाँ दोस्तों, हमारा आपका साथ है दिन के 9 बजे तक. यस, यू कैन आस्क, यू कैन डेडिकेट द सॉन्ग्स.

0: in our playlist to your dear and near ones. I would like it. Pyar zindagi hai, pyar zindagi hai, pyar bandagi hai, pyar har khushi hai, pyar hai to sab kuch hai. Pyar nahi zindagi mein to wo zindagi kis kaam ki hai ki nahi? So, प्यारा सा गाना from the movie मुकद्दर का सिकंदर. ये गीत हम चला गीता बाइज के नाम वेलफॉन्स से उनके सही परिवार के तेज सनातन जी. ये गाना नानी मालिनी के बर्थडे के मौके पर. हैप्पी बर्थडे नानी मालिनी. साइलेश नंदूल, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए. अब अजफर यह गीत आपके नाम. प्रिया पूर्वी ये गीत आपके नाम भी. और ये गीत हम चलाएंगे विजय कुमार पोयो के नाम भी. प्रतिमा बंसुगावा यह गीत आपके नाम भी. और यही गाना हम चाहेंगे ममता के नाम. बद्री प्रसाद. और यही गीत रेणु मंगल के नाम. आबिद रेहान और पांडे जी, जवान जी, जुआवन पूनम, कबीर होमन. हेलो कबीर. और शैलेश नंदूलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग अनाथ आश्रम में हैं और बेशक हमें सुन रहे हैं. स्वर्गीत आपके नाम. जो लोग बीमार हैं, अस्पताल में हैं, क्लिनिक में हैं और इस संसार में जिन लोगों का कोई नहीं, जो लोग अकेले हैं, तन्हा है, यह गीत आपके नाम भी जाएगा. प्यार जिंदगी है, प्यार हर खुशी है. यही गीत माताबा की रीता की और उनकी दो बहनों के नाम रेणुका और अमृता के लिए. और चचा जान प्रताप की ओर से उनके नेफ्यू माधव के नाम. माधव अपने चाचा से बहुत प्यार करते हैं. सो माधव, दिस गाना फॉर यू फ्रॉम योर चाचू साइलेन. साइलेन और माधव की जो दोस्ती है, जो प्यार है, चाचा भतीजा का ये प्यार बरकरार रहे. यही गाना हम चलाएंगे प्रताप की ओर से उनके बेस्ट फ्रेंड हिरिश के नाम. हिरिश रहते हैं मिडलैंड्स एंड प्रताप टेलिंग यू गुड मॉर्निंग. सो सभी बेस्ट फ्रेंड्स जो हमें सुन रहे हैं और रेडियो मॉरिशस के चाहने वाले हैं. सो जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, जहाँ से आप हमें देख रहे हैं, टिकटॉक पेज पर यह गीत आपके नाम जाएगा. प्यार जिंदगी है.
1: Hey man, you dig this sort of music, eh? You like it?

जी हाँ, ये प्यार ही जो है जो हमें खींच लाता है आपकी, और इसीलिए तो इतनी सुबह सवेरे हम चले आते हैं सैटरडे मॉर्निंग को आपके मॉर्निंग को गुडी गुड बनाने के लिए हमारे प्रोग्रामों के साथ। या मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना पार्ट टू दिन के 9 बजे तक की प्रोग्राम चलेगा रेडियो मॉरिशस की लहरों पे। अगला गीत तेरा आना मेरा।

जाना मेरे दिल में समाना। फिल्म का नाम है जुड़वा और ये प्यार सा गीत हम डेडिकेट करेंगे इन लोगों के नाम। भाई धनी है लाफलोहा से, आशा जानू को तेज से, उनकी मामा कुमारी, शुभम, दीदी आरती, जीराजी और सब जानू परिवार के नाम, स्मृति धनीरा। ये गीत कियान के बर्थडे के कियान कोरक के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, कियान कोरक 4 साल उनको हो रहा, उनका हो रहा है 4 साल। सो ढेर सारा प्यार, हैप्पी बर्थडे नाना नानी, मौसा मौसी, रियान, धनीराम, दादा।

0: परिवार प्रीतिश महाज लखन फैमिली वॉशर से और उदय दैनी राम रिवेजपुर से हम सभी कियन कोरक को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेज रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। और एक दोस्त है लाइन पे, हम उनसे मिलेंगे। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार प्रताप जी।
0: नमस्कार, आपका नाम?
1: कैसे हो आप?
0: मैं ठीक हूँ। आपने अपना नाम नहीं बताया।
1: मेरा नाम माया है।
0: माया कहाँ से? पाबुचिक से।
1: मैं एक बर्थडे सॉन्ग मांग रही हूँ सावी के लिए, जो रोबे रहते हैं सावी उजागिया, उनके पति कमलेश और उनके बहन जो कपिप रहते हैं नामी, दो जुमेल है, और सभी परिवार के लिए जो रोबे रहते हैं, उनके माता के लिए, माता जी के लिए जो प्रेमायों रहते हैं, और सावी के लिए, उनके टिटुल प्रिंस के लिए, सयांश के लिए मांग रही हूँ। सब परिवार
0: लिस्ट काफी लंबी है, सो आपके पूरे परिवार के लिए ओके, बहुत धन्यवाद। ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। प्लीज हेलो
2: हेलो, नमस्ते
0: नमस्ते। सुनीता जी क्रीनी से
2: गीत मांगना चाहती हूँ।
0: हाँ,
2: मेरी नाती के लिए।
0: नाती का नाम क्या है?
2: व्यास।
0: उनका बर्थडे है?
2: पीढ़ी में रहती है।
0: उनका बर्थडे है?
2: हाँ, माँ है वरुणा, पापा है अक्षय और दादा दादी बाला, सुनीता, अंजू, विशा, रैना। नानी का नाम है इंदिरा, वो बंधुदास।
0: रविश मंडू ये गीत आपके नाम, आपके पापा मामा सब बंधु परिवार के ये भी हम चलाएंगे, और यही गाना हम जो है चलाएंगे खासम खास वीना कुमार के नाम मेबक से, फिर विश्वानी बाबूलाल लाहौजा से, फिर सुलमान दुखीत मेबक से, और यही गाना सैतोबैस एस एस कॉलेज के सभी स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ के रेक्टर, एक्टिंग रेक्टर मिस्टर रुबेन मुनसामी के नाम, और स्कूल की छुट्टियाँ, सो हैप्पी स्कूल हॉलीडेज टू ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और इंदिरा, माता जी इंदिरा है, चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो
3: हेलो,
0: जय माता जी। कैसे हैं माता जी, आप ठीक हैं?
3: हाँ ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं? सब परिवार
0: ठीक ठाक, और आपके यहाँ?
3: हाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन थोड़ा ठंड के कारण विश्वास कभी थोड़ा थोड़ा खांसी जुकाम हो जाता
0: ये तो
3: है।
0: होता रहता है ना।
3: हाँ, ये तो मौसम बदलने
0: मौसम का तकाजा है।
3: सब अच्छे हैं, तो हमारे परिवार के लिए एक गीत डाल देना।
0: हाँ,
3: और हमारा ओम तुषार परिवार सभी के, और खास कर एक हमारा देवर लगता है, वो कनाडा से आए हैं।
0: Okay.
3: उसका बर्थडे है आज।
0: हाँ,
3: उसका नाम है संजय रामजीन।
0: हाँ,
3: उसके पत्नी है गीता।
0: हाँ,
3: उसके बेटा श्वेतन, उसके बेटी है साक्षी। हमारे चिंताराम परिवार के और रामजीन परिवार से उसके बहुत शुभकामना देते हैं, एमबीसी के पूरे टीम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया। और अभी उदय साहब है वेजपुर से। हेलो उदय जी, शुभ नमस्कार।
4: नमस्कार,
0: कैसे है आप?
4: अच्छे है। मैंने कॉल किया।
0: हाँ,
4: भोजपुरी में बचाएगा सर।
0: अरे बोला जा।
4: पोता के जन्मदिन बा।
0: हाँ, कोरक नाम है ना?
4: कोरक नाम है,
0: कियान कोरक। हाँ, लिस्ट समय मिला, हमने भी अनाउंस किया है।
4: हाँ, तो गाना चला दिया जो फरमाइश कर ले हैं।

0: रे।
1: अभी प्लेलिस्ट बन चुका है, देखेंगे समय रहा तब वो गाना जो, क्योंकि प्लेलिस्ट हम एक दिन पहले ही बना चुके होते हैं। ठीक है भाई जी, बहुत धन्यवाद आपने फ़ोन किया। और एक दोस्त है लाइन पे, अनिता फ्री कॉन्फ्लाक से है। हेलो अनिता जी। ओके अनिता जी, गाना आपके नाम हम चला रहे हैं। किस नावती जी है प्लेन मायों से। चलिए एक साथ सुनते गाना, तेरा आना मेरा जाना। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं समय रेडियो मॉरिशस पर, ये गीत आपके नाम भी

हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं फिर हमेशा के लिए रह जाते हैं, पर कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं फिर से हमें याद नहीं करते। और कभी कभी हम रास्ते पर जाते हैं और हाय हेलो कहते हैं, शायद हम उन लोगों को नहीं जानते हैं, पर वो लोग जब हमें हाय हेलो कहते हैं तो हम भी हाय हेलो कहते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल गुड मैनर्स। कहीं भी जाएँ और लोग हैं वहाँ पर सॉल्वी से हाय हेलो, क्योंकि ये प्रमाण है इस बात का कि हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छे मैनर्स सिखाए हैं, है कि नहीं। यह अगला गाना ओ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ फिल्म का नाम जुदाई। यस, ये प्यारा सा गीत।

0: हम चलाएंगे नलिनी के नाम। हाय नलिनी, बहुत बहुत प्यार के साथ ये गीत आपके नाम, और यही प्यारा सा गीत हम चलाएंगे प्रीतम की और उनकी पत्नी और दो बच्चों के नाम। संजय बिहारी, दिस गाना फॉर यू एंड फॉर योर वाइफ सुरेखा एंड ऑल बिहारी परिवार। निश्चल शिवरतन, ये गीत आपके नाम। सत्यम सोनू, ऑल सोनू परिवार। मुकेश गंगा, सब गंगा परिवार। राज मन्ना, ये गीत आपके नाम। लॉन्ग चिबुक राजा, प्रवीण भैरव, स्टीव माना, श्याम मंगल और जितने भी दोस्त हमें सुन रहे इस समय, ये गीत आपके नाम। और जो लोग हमेशा आपके दुख के समय में काम आते हैं, मुश्किलों के समय में आपके काम आते हैं, ये गीत उनके नाम। और जो लोग विदेश से हमें सुन रही है, यस, सो जितने भी लोग हैं जैसे इटली में है सब परिवार, और रंभा है स्विट्जरलैंड में, चिंताराम परिवार ऑस्ट्रेलिया, दुखित परिवार कनाडा में है, सो ये गीत आपके नाम हम चाहेंगे। दीपा देवी, दीपा दुखित, दीपा तिवारी दुखित के, उनके पति केविन के बेटे और सब दुखित परिवार के नाम। जितने लोग कनाडा में हैं हमें सुन रही है, ये गीत आपके नाम भी। और चलिए एक साथ सुनते हैं गाना। इस गीत से पहले कृष्णावती जी से मिलेंगे। कृष्णावती जी शुभ नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: कैसे हैं कृष्णावती जी?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी प्रणाम। मौसम
0: एकदम फर्स्ट क्लास।
1: खराब थरथरी लग रही
0: है। मन कर रहे हैं चले स्विमिंग करने, है कि नहीं?
1: लेकिन आज जो आप आई, एक मौसम एकदम सुहाना हो,
0: जब हम आते थे मौसम एकदम सुहाना हो जाता है।
1: आपको पता है आपका नाम ऐसा रख देना चाहिए, प्रताप जी मौसम सुहाना, बिना मजा होता।
0: आप भी बहुत मजाक किया है जी। और अगला गीत किसके नाम? ओ मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ अल्लाह। ओके,
1: जितने भी लोग सुन रहे हैं रेडियो मोरिस, बहुत से लोग।
0: नाना के लिए आपने नाना के लिए गीत नहीं मांगा? नाना
1: के लिए भी,
0: नाना तो खुश हो, नाना खुश हुआ।
1: हाँ, बहुत खुश होते हैं।
0: जैसे मिस्टर इंडिया में एक डायलॉग है, मोगैम्बो खुश हुआ। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है? हेलो, हेलो, सब ठीक ठाक? ओके, सो हैप्पी सैटरडे, बॉन वीकेंड कहते हैं आपको, ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद है। तो चलिए एक साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी जुदाई, अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ों में। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, शास्त्री बुनवाल जी, गीत आपके नाम भी।

प्यार ऐसा ही होता है, बड़ा ही मीठा, बड़ा ही प्यारा। कभी प्यार थोड़ा सा खट्टा भी होता है, खट्टा मीठा भी होता है। और टीना बुदना, जी हाँ, वो अपने पति से बहुत प्यार करती, अपनी जान से भी ज़्यादा। एंड लास्ट सैटरडे वाज हिज बर्थडे, ए हे हे। सो टीना अपने पति से कहना चाहते, उनके पति का नाम है रोशन। सो टीना रोशन से कहना चाहते हैं, ये आँखें हैं बनी बस तुम्हारे लिए, ये दिल बना है तेरा दीदार के लिए। रोशन तुम हो तो मैं हूँ, रोशन तुम नहीं तो मैं भी नहीं। सो टीना रोशन से कहना चाहते हैं, आई लव यू। कितना प्यारा मैसेज है ये, हर किसी को नहीं मिलता प्यार ज़िंदगी में। और टीना कहती है कि वो ज़िंदगी भर अपने पति को प्यार करती रहेगी, उनका पति उनके लिए सब कुछ है, उनका बेस्ट फ्रेंड, उनका भगवान, उनका स्वामी। सो टीना एंड रोशन बुदना, आप लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, ये जोड़ी यूँ ही कायम रहे। और जितना प्यार आप उनसे करते हैं टीना, हमें यकीन है रोशन साहब वो भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे। सो टीना बुदना और रोशन बुदना, आप दोनों रहते हैं द वेल। सो ये प्यारा सा गीत आपके नाम, चलिए एक साथ इस गीत का मजा लेते हैं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, आप लोगों के नाम भी गाना।

फिल्म जाबाज के इसी गीत के साथ ही सुबह का नजाना इस प्रोग्राम का दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। सुबह के 6 बजे से अभी तक हमारा साथ दें, शुक्रिया, करम मेहरबानी, आपकी फ़ोन कॉल्स, आपके SMS के शुक्रिया, टिकटॉक पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। 9 बजे होगा फ्लैश न्यूज़, उसके बाद आप सुनेंगे आज की चर्चा पीक टाइम मैगजीन। हमारी आपकी मुलाकात हो रही है आज शाम के 5 से 6 बजे रेडियो मनोरंजन पर पुराने नगमे प्रोग्राम में, उसके बाद 6 बजे से 9 बजे तक हमारा आपका साथ होगा रेडियो मनोरंजन पर ही, प्रोग्राम होगा नई सोच।

दिनों की आवाज। तो आज शाम को आपसे मिलेंगे शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम होगा पुराने नगमे नई सोच और दिनों की आवाज। तब तक हमें दीजिए इजाजत और जय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्कार।

0: मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है टीना, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते टीना।
2: नमस्ते। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। महंगाई का असर अभी भी मॉरिशस के लोगों के बजट पर बना हुआ है। इस साल मार्च से जून के बीच कई जरूरी सामान और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों में सामने आई है। रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन उन चीज़ों में शामिल है जिनकी कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने मार्च से जून के बीच 14 चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी और केवल 2 चीज़ों की कीमतों में कमी दर्ज की है। इससे साफ है कि रोज़मर्रा के ज़रूरी खर्चे अब भी मॉरिशस के परिवारों के बजट पर भारी पड़ रहे हैं। कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में बदलाव के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है कि 2 बार टैक्स लगने की समस्या को ख़त्म किया जाए और टैक्स अग्रीमेंट का गलत फ़ायदा न उठाया जा सके। भारत के अधिकारियों के नए स्पष्टीकरण के बाद मॉरिशस ने इस प्रोटोकॉल को मंजूरी देने का फैसला लिया है। बागाटेल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण काम 62% पूरा हो चुका है। ये परियोजना, जिसकी लागत लगभग 14 बिलियन रुपये है, दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की अफ्रीकन अफेयर्स के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा ट्रुथमान ने इस शुक्रवार को निर्माण स्थल का दौरा किया और इस अवसर पर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कंक्रीट डालने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और अपार्टाइड के खिलाफ संघर्ष के विश्व प्रतीक नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इतिहासकार डॉ. सत्येंद्र पीरचम के अनुसार नेल्सन मंडेला केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे उपनिवेशवाद, अत्याचार और नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक भी थे। और विदेश में अमरीकी सेना ने कल ईरान पर लगातार 7वीं रात हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इसकी पुष्टि की है। अमरीकी सेना की कार्रवाई के बाद ईरान ने भी चेतावनी दी है कि कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
3: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

18 जुलाई शनिवार का दिन। आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और MBC 3 पर इस कार्यक्रम को सीधे प्रसारित देखते हुए हमारे सभी दर्शकों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं एक घंटे के आज के इस सफर में। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। मेरा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। और आज का दिन हम बात करेंगे, फिलहाल आज 18 तारीख है, पर 4 जुलाई को, जी हाँ, पहले शनिवार को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। तो इस पर आज का ये कार्यक्रम हम आधारित रखेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं दो ऐसे अफसर जो इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री डी कालीचरण, जो वरिष्ठ सहकारी विकास अधिकारी है यानी कि सीनियर

0: कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफिसर, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीमान बी राम तोहल जी, जो प्रिंसिपल कोऑपरेटिव ऑफिसर है, यानी कि प्रधान सहकारिता अधिकारी थी। तो चलिए आज उनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हम राम तोहल जी से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और जानेंगे कि कोऑपरेटिव यानी सहकारिता होता क्या है और इसका महत्व किस प्रकार से होता है। आइए जानते हैं। श्रीमान राम तोहल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
0: और आज हम जरूर जानेंगे, पहले तो हमें ये बताइए राम तोहल जी कि सहकारिता यानी कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है।
1: एगो कोऑपरेटिव ऐसा संस्था है जिनमें लोग इकट्ठा होला एगो एक्टिविटी इकोनॉमिक करे के। ये में उल्लेखनीय बात यह है कि कोऑपरेटिव के ओकर मॉम ही चलावे लंसा और जो डिसीजन
0: ले लंसा
1: अपन आपस में ले बनना और जो मुनाफा हो आपस में बांट ले लिया।
0: और ओकर कितना प्रकार रहेला, कितना टाइप्स रहेला?
1: मोहिस में बहुत प्रकार के कोऑपरेटिव बा। गन्ने के कोऑपरेटिव बा जिनमें लोग अपन गन्ना बेचे लंसा। क्रेडिट यूनियन बा जिनमें लोग पैसा इकट्ठा कर लंसा और लोन लेवे लंसा। कोऑपरेटिव एग्रीकोल बा जिनमें लोग सब्जी और फल उगावे लंसा। मच्छीमार के सेक्टर में भी बा, मच्छीमार लोग मच्छी मारे लंसा। महिला के कोऑपरेटिव बा जिनमें लोग महिला लोग इकट्ठा होकर एगो एक्टिविटी
0: एगो एंटरप्रेन्योर नियर काम करे लंसा। अच्छा,
1: लेलवाज के भी बा।
0: अच्छा,
1: गाँव पोषण और बकरी के पोषण और यही।
0: और जैसे मतलब खुद के कोनो कार्य करे के रही, छोटा सन कार्य करे के, एगो शुरुआत करे के रही,
1: एगो कोऑपरेटिव में होती करे,
0: एगो फॉर्म में करे के। अच्छा, और ये है कि जुन पंजीकरण करे के है ओकर ओकर कैसे ओकर जन मतलब कैसे एगो रजिस्ट्रेशन कैसे होला?
1: हाँ, कोऑपरेटिव के शुरू करे के 5 गो सदस्य चाहिए ना, और 5 गो सदस्य चाहिए ना, ओके 5,000 इकट्ठा करे के जोन बोले शेयर कैपिटल।
0: अच्छा,
1: ओके। और चाहेला 1,000 रुपया एप्लीकेशन फीस भरे के, एगो फॉर्म एप्लीकेशन बा जो जोन चाहेला भरे के।
0: अच्छा,
1: वो फॉर्म वा मिली मिनिस्ट्री में, एगो यूनिट बा रजिस्ट्रेशन यूनिट, ता वो सेक्शन वो एनरजिस्ट्रेमेंट करे लंसा। और 5 गो सीबीसी बा वो भी कोऑपरेटिव के एनरजिस्ट्रे के सपोर्ट देवे लंसा, फॉर्म वा वहीं पर मिली। और फॉर्म एप्लीकेशन में सब कुछ बा, सब डिटेल बा, कोऑपरेटिव के नाम, कौन ऑब्जेक्टिव बा कोऑपरेटिव वा के, कौन रीजन में ऑपरेट करेला और कौन कौन उसके डायरेक्टर बा, और सब डिटेल बा।
0: मतलब उतरा निमन से गीत एगो देवी देई कैसे शुरू करे के,
1: चाहे ला भरे के और चाहे ला सुमित करे के मिनिस्ट्री।
0: अच्छा,
1: और कार्ड आइडेंटिटी, सब सदस्य के कार्ड आइडेंटिटी फोटोकॉपी, ओकर प्रूफ एड्रेस, सब चाहिए।
0: एगो एगो मान ल एगो पहला हला जे शुरुआत करत हवन उ हुआ चल जाई त उ ओकरा सब इंफॉर्मेशन दे दी निमन से।
1: सब इंफॉर्मेशन मिली तब सकेला रजिस्ट्रार, जब सब ठीक कर रजिस्ट्रार अप्रूव कर दी त सर्टिफिकेट।
0: और हाई कितना दिन के ड्यूरेशन में होला?
1: 5 गो 7 गो दिन में,
0: एक सप्ताह में, मान ला एक सप्ताह में हो जाए।
1: हाँ, सब डॉक्यूमेंट चाहिए सबमिट करे के।
0: अच्छा,
1: सब प्रोसीजर स्वीव करे के, तब जाके रजिस्टर
0: हो जाए,
1: सर्टिफिकेट।
0: तो चला आज के कार्यक्रम में बिल्कुल सहकारिता यानी कोऑपरेटिव कैसे शुरुआत करे के, कैसे हई में तू जुड़ब, कैसे रजिस्ट्रेशन करब, हई पर एगो और कुमाजा कार्यक्रम के अंत में भी एगो एगो बार फेरों से तोहरा बताओ जा कि कैसे तू रजिस्ट्रेशन करे सकब, जेकर से तू जे तोहरा मन में बा एगो रजिस्ट्रेशन करे के कोऑपरेटिव के, त कैसे तू आगे बढ़ब। और आज हमर संगे है जा पर सीनियर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीमान कालीचरण जी भी उपस्थित होल हवन। त चला जानब स कि कोऑपरेटिव जोन सोसाइटीज हवन वो कोऑपरेटिव डिविजन द्वारा कौन कौन हमनी के सेवा प्रदान करेलन। स कालीचरण जी, बहुत बहुत स्वागत बाते। हम जानीला आज तोहर तबियत उतना अच्छा नहीं बा, पर फिर भी तू जा पर उपस्थित होल हवा हमर खातिन है, ये बहुत बड़ा बात है। तो चला जानब स कि कोऑपरेटिव जो सेवा है वो हमने के कौन कौन सेवा प्रदान करेलन सर।
2: धन्यवाद सब सुनने वालों की, नमस्ते। जाने ला है जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, थोड़ा संक्षेप में बोला था कि शुरू हो रहा 1913 में, 1913 में लगभग 113 वर्ष हो गल बाते, लंबा धरला पापू होल बाते। कोऑपरेटिव जो मानिए फासों से

0: जैसे ओकर इवोल्यूशन होल बाटे वो बहुत आगे पहुँचल बाटे। तो शुरू से आज ले देखब जाता हमने के कौन कोऑपरेटिव बा, धरला 1200 कोऑपरेटिव सोसाइटी बाटे
1: अच्छा,
0: जैसे
1: मोरिस भर में।
0: मोरिस भर में। भाई राम देवल बोला कि कितना प्रकार के वन जा, और लगभग धरला 2,05,000 85,000 अबव मेंबरशिप बाटे।
1: अच्छा
0: और हमने के जो इकोनॉमिक कंट्री कंट्रीब्यूशन है नेशनल अथी पर धरला 5.5 बिलियन रुपीज लोग के एनुअल टर्नओवर है।
1: अच्छा
0: तो मिनिस्टर को पेगा चीफ जन कहा हमने के कोऑपरेटिव डिविजन्स एगो फैसिलिटेटर है, दौरला बहुत सुविधा देवेला कोऑपरेटिव लोग के, वो लोग के इवोल्यूशन करे के कैसे लोग ऑपरेशन कर जन जा, वो लोग के मैनेजमेंट कैसे रही। तो हम यहाँ हमने के डिविजन में बातें जो देला से फाइनेंशियल सपोर्ट और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: अच्छा
0: तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो हमने देला जा कोऑपरेटिव लोग के उधरला एगो ग्रांट स्कीम है। तो ग्रांट स्कीम है शुरू रहा धरा 6 बरिस हो गल,
1: अच्छा 6 बरिस।
0: 6 बरिस से हमने दिला है जो
1: अच्छा
0: 2020 2021 से शुरू होल, वही जब हवे समय जब बहुत महामारी रहा कोविड के, जितना बिजनेस रहा सब गिर रहा। तो सरकार सोचता कि कैसे चला लेके उठाएंगे, तो हवे से शुरू होल एगो बूस्ट टू लोकल प्रोडक्शन स्कीम, धरला 100 से 1 मिल दिली सा 150,000 दिली सा सबको पे अचीव के। तो हाउ पोपुलर हाउ स्कीम हुआ बहुत पॉपुलर हो
1: अच्छा
0: आज ले वही पॉपुलर बातें। तो हर बरिस में फाइनेंशियल डेटा जो रहा हमने के नवा नवा स्कीम आल धरला लाइफ स्टॉक ब्रीदिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के दिशा और अथी बन दिशा सीडलिंग प्रोडक्शन अथी रहा सब। तो हम इतने से करके कितने प्रकार के स्कीम दे दी जा, तो सका हम सका बोले आज 6 बरिस हुआ में 175 275 जस्ती को पेगेटिव बेनिफिट्स करने बात है, और लगभग 60 मिलियन रुपीज़ दे देना है जा उन लोग के, जब मैं उन लोग की बिजनेस एफिशिएंसी है फूड सिक्योरिटी और कोऑपरेटिव मूवमेंट जस्ती आगे बढ़ी। हाँ यार हमने के जो कहा जब फाइनेंशियल सपोर्ट नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट जो हमें दे ला जा, तो हमने ऐसे दे ला जा जला कैसे भाई राम थोड़ बोलक वो लोग के डिविजन हो वो लोग हो अकाउंटिंग के वो लोग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब पारे कर जा, और हम न्यू दे ला जा फ्री ऑडिट्स
1: अच्छा
0: ऑडिट करके, और हमने हाई
1: सब सहयोग मिलेला कोऑपरेटिव बगल से अच्छा,
0: और वो लोग के मार्केटिंग करे के हमने ऑर्गेनाइजे कर ला जा हर महीना और धरा रोजनल बेसिस होला भाई कोऑपरेटिव मार्केट फेयर।
1: अच्छा
0: तो ई एक ऑर्गेनाइजर का जो कुछ बोले मंडी का मार्केट, तो हमें दे ला जा और के अपॉर्चुनिटीज जब मैं ओपन अपन जो फौजी है उससे कि वो लोग जाके बेचे, और आगे भी वो लोग सकें जहाँ नेटवर्किंग करे और क्लाइंट से चेंज द हाउ लिंक वर्क कहीं करे, जब मैं वो लोग के हाउ जो सप्लाई है वो लोग के प्रोडक्ट जस्ती नीमत से बेचाई और कोनो प्रोडक्ट जो बात है उतना नहीं मशीन काम कर लग जा, तो वो लोग का सेकेंड अपन आम योग करें जस्ती नहीं मचे प्रोडक्ट बनाए, जब हम देखिए आई कोऑपरेटिव आज आइडेंटिटी हुआ आई आइडेंटिटी हुआ चल हमने के मन से रखे के
1: अच्छा
0: ना वो कोऑपरेटिव हम जिसे बोली ला जाओ एगो एगो फैमिली है, जब 5 गो सदस्य रहला घर में एगो फैमिली एगो फैमिली खा
1: दे एगो परिवार नहीं
0: परिवार नहीं ले काम कर रहा था, तो एक और माने एक और में कोऑपरेटिव में बात है कॉमन बॉन्ड
1: अच्छा
0: वो एकता। हमने के कोऑपरेटिव आर जो बात है ये तनी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन तनी पारे नहीं है एक नहीं है, एक और में बात है कोऑपरेटिव वैल्यूज है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स बात है, जैसे वैल्यूज जैसे बात है सेल्फ हेल्प सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वालिटी इक्विटी, तो ये सब धरा एगो ह्यूमन वैल्यूज में का इनकल्केट करे जा जा।
1: हाँ, काहे के एगो एगो काम जब तू शुरू करत हो एगो एगो व्यवसाय शुरू करत हो तो हर चीज बहुत मायने रखे
0: कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम सब बोले कि एगो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें काम होला विकास होला सब कहते काम कर इकोनॉमिक जनरेटिंग रेवेन्यू जनरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, एक से आर को चीज सीख लिया सर कि कैसे हमने के कम्युनिटी में साथ जिए के कैसे सब कोई सारा एकता से काम करी और में सब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें जा कमो करें जा और एकता आन जा हाई कमन बनवा जस्ती तदी महत्वपूर्ण है
1: नहीं और कोनो भी काम शुरू करे आगाड़ी हाई सब चीज बहुत मायने रखे लन सर जेकर से आगे जाके तू संगे कुमाजा और भी आदमी तोहर संगे जुड़ी तो ओकरा तू एदे करे सकब और हाई जो कोऑपरेटिव है केवल 5 व्यक्ति से शुरू करल जाला या मिनिमम 5
2: कम से कम
1: 5 चाहिला और जस्ती

0: तू जितना आने सकब उतना जस्ती अच्छा हो। और जैसे आज हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बात करत हैं, तो आज के जो सामाजिक और आर्थिक चुनौती जे कोऑपरेटिव बगल से यानी कोऑपरेटिव वैल्यूज के तू जैसे बात करलन, ओकर कौन भूमिका है, कौन कौन चैलेंजेस के फास करेलन सर?
1: अभी के समय में जैसे देखी ला जाए बहुत तनाव वाती,
0: हाँ,
1: अशांति भरल बात सब, हमने के है तरह सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं बाते। तो हमने कोऑपरेटिव के माध्यम से सीखे दिला है कि सिखाया ला जा कि हमने कैसे सब विश्व में शांति आने, कैसे सब एक दूसरे मिल के काम करे के। और जब देखा जब समाज ये जब काम करता हुआ दो तीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एगो समाज के काम करी, तो समाज के बाद में देश के सब
0: चलावेला, हाँ,
1: देखकर में शांति आने ला, सब कोई नियमित काम करी और एक में जितना लोग इनकम रहेला तो सकल सब अपन में जैसे मैं बोला जा कि सकन सब हाउ जो नाफा रहेला और किस मतलब बांटे
0: बांटे के, हाँ हाँ।
1: तो हाँ ये धरले हमने के मुख्य हम देती है हमने के कोऑपरेटिव
0: ऑब्जेक्टिव
1: ऑब्जेक्टिव की है कि सब के चला डाला कि है कोऑपरेटिव या हाई कोऑपरेटिव शुरू हो बात 1913 से 1913 बड़ी जस्ती हो गल बात हमने के इंडिपेंडेंस मिले के अगते, तो हमने के जो कहला हाई हमने के हिस्टोरिक वैल्यू जो है कोऑपरेटिव वास्तव में बहुत जुड़ल बात है। तो ये हमने के चला हर दम
0: यानी आज ले वो चले
1: आवा था वा चैलेंजेस बात है कंस्ट्रेंट बात है, मैं इस समय से सकरा चला और कते सॉल्यूशन हमने के चला खोजे के हमने में।
0: तो हाई जन जैसे तू बोला था 1913 से शुरू होल बा और 113 बरिस से जस्ती है होगल बा, तो हाई काहे प्रतिवर्ष है दिवस के मतलब जैसे पहला शनिवार जो मनावल जाला काहे मनावल जाला है दिवस वा और ओकर कौन महत्व है?
1: है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो है एगो इंटरनेशनल इवेंट है, ये एगो इवेंट ऐसा सेलिब्रेशन कर विश्व सक्रो सब अपन देश में जन बाते कोऑपरेटिव बाते धर में हमने को शोकेस कर हाउ दिन हुआ हमने सोची ला सा हमने के कोऑपरेटिव कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है देश में आना था देश में और भस विश्व में आने था कैसे काम होता। तो हमने यही सोचा था कि सब परिवार जब जब भेटाला हुई दिन हुआ तो सोचा हमने कि आगे कैसे चला कर आर चीज करके हमने की कोपरे के मुंह में जस्ती मजबूत बनी और हाई जो जवान लोग है ये लोगों एक में आए तो हाई जस्ट हाई आई सी देवा हमने माना जो फर्स्ट सैटरडे इन जुलाई में तो ये बताना कैसे हाई जो कहला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे बोला जाए सोशल इंक्लूजन और जो कहला डिसेंट एम्प्लॉयमेंट हाई ये सबसे तीन गो चीज आज के समय में बहुत
0: महत्वपूर्ण है।
1: तो कोऑपरेटिव से को माध्यम से हमने वजह इंकल्केट कर सकते वैल्यूज वन कैसे हमने सिर्फ काम नहीं करी ला सर हमने जाना के सोचे कि कैसे हम क्या जिए के वो परिवार एक
0: बिल्कुल
1: जो तनाव अशांति जो बातें ये दूर हो जाए।
0: तो कालीचरण जी जैसे हर एगो इंटरनेशनल डे जब मनावे लंस तो एगो थीम ओकर में दलाल जाला था कोऑपरेटिव दिवस के थीम हाई बरिस के थीम कौन सी है?
1: हाई बरिस के थीम तनी स्पेसिफिक है हमने की कॉन्टेक्सुअल जैसे बोला जाओ तो एक थीम हाई बरिस के रहा 2026 थीम है कोऑपरेटिव फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड धरला की कोऑपरेटिव कैसे सकेला कंट्रीब्यूशन करे जब मैं विश्व में शांति आने
0: तो कैसे शांति कोऑपरेटिव कैसे शांति देवेला को मजे एगो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेला विश्व शांति में
1: जाने ना हाई विश्व में जन कहाला कोऑपरेटिव बहुत पहलल बाते दूसरा दो बड़ा बड़ा देश जोन बाते वहाँ पर कोऑपरेटिव के ओकर जोन कहाला ओकर टर्नओवर ओकर एम्प्लॉयमेंट जोन और ओकर इकोनॉमिक्स जोन बेनिफिट क्रिएट होता है वो लोग ढेर है बहुत बहुत ऐसे बाते तो हाई माध्यम से ये लोग जब कोऑपरेटिव बने वैसे नंबर है कोऑपरेटिव तो धर गिरला में हमने के चला पाँच जना रहा के कोऑपरेटिवों में अब एगो एगो सोसाइटी रही वो में पाँच जना रही अब दस गो सोसाइटी से होला 50 हो गल तो ऐसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट होला एक में है एगो माध्यम है कि शांति आने का। तो जब विश्व में हाई हाई बरिश्वा जब देखी रहा जब हमने की जहाँ पे जियो पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट बातें हाई इनर्जी क्राइसिस तो इस सबके एगो सोशल क्राइसिस आने वेला तो कोऑपरेटिव जो फास्ट एगो माध्यम बात है जे सबके खुदा जुटाए के हाई जो कॉमन मोलमा करे कि हमने यहाँ आए इस दुनिया में काम करके इन्हीं में से जिए के सबके चला हित में काम करे के हाई एगो सबसे बड़ा संदेश
0: जो हाँ। तो आज के कार्यक्रम बिल्कुल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जहाँ पर एगो ऐसन उद्देश्य

एगो ऐसा ह्यूमन वैल्यूज के साथ है सोसाइटी डेवलप हुआ था और आज के नहीं है, पिछला 113 बरिस से जस्ती हो गल बा, यानी 1913 से शुरू हुआ ये मूवमेंट और आज तक ये बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से वो लोगों को जोड़ रहा है, किस तरह से चुनौतियों का सामना कर रहा है और इनका उद्देश्य बस यही है कि किस तरह से समाज में हम एक ऐसी शांतिमय सोसाइटी स्थापित कर सके जिसमें से लोग अपनी आर्थिक परिस्थितियों से जूझकर आगे निकलें, साथ ही साथ ना केवल परिवार का विकास हो, समाज का विकास हो, पर साथ ही साथ देश का भी विकास हो, यानी एक ऐसे उद्देश्य के साथ वे आगे चल रहे हैं जहां पर कदम से कदम मिलाते हुए देश के विकास में अपना सहयोग दें। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को एक गीत के ब्रेक के साथ जोड़ते हैं। वैसे आपको ये भी बताते चले, इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। तकनीक पर हमारे साथ बने हुए हैं फैजान, साथ ही साथ यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका और हमारे प्रोड्यूसर जिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बस साथ देते रहिएगा, अभी थोड़ी ही देर में एक गीत के ब्रेक के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर, और आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, जो पहली जुलाई को मनाया जाता है। पहली जुलाई नहीं, पर पहले शनिवार, जुलाई महीने का पहला शनिवार, और इस साल मनाया गया 4 जुलाई को। अभी थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि हमारे मॉरिशस में कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन कौन से ऐसे कार्य आयोजित करता है इस कार्यक्रम को या इस दिन को यादगार बनाने के लिए। पर उससे पहले हम जरूर जानना चाहेंगे कालीचरण जी से कि सहकारिता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावल जाला है, सहकारिता यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में कौन जागरूकता बढ़ावे खातिर कौन कौन प्रकार के कार्य करेला, कौन सहायक प्राप्त होला।
1: तो है जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 2026 में जो मन लीजा, तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का कोऑपरेटिव डिविजंस धरला ए 4 जुलाई के हमने के एगो रेफ लेइंग सेरेमनी एगो डिपो दे जेप कर लीजा एगो मोनुमेंट कोऑपरेटिव पे बाते जॉन कंपनी पर लुई में तो वहाँ धरला हाउ शनि के शनिवार रहल तो वहाँ सब कोई गई जा तो हमने के हर बरिस हम के धरे एगो एगो दो ट्रेडिशन ना वो कुछ इमा की हमने जाले साउ के चामे ऐसी करी रेफ लेइंग मार कर हाँ एगो एगो इवेंट में रहल। दूसरा जहाँ हाई जरा जो कंस्यूमर्स वर्सेस कंस्यूमर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन है तो वो लोग एगो प्रोमोशनल सेल करना जा।
0: अच्छा,
1: धरला हमने के जो कहा लाभची को बेगाचीव कंस्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है तो हाउस मेनुआ में धरला वो लोग हफ्ता में तनी प्रोमोशंस देना जा और मेंबर्स आर सब पब्लिक जनरल लोग के जिनमें सस्ता में से सब चीज किन जा
0: मिले। हाँ,
1: तो और एगो फेडरेशन जो है ओकर नाम हम मॉरिशस कोऑपरेटिव आर्किटेक्चरल फेडरेशन। तो ये जस्ती एगो फेडरेशन है जर 110 से जस्ती अथी है ओकर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो जो गन्ने के खेत में वो लोग काम कर रहे जा। तो ये है अच्छा एक 10-12 गो सेल्स पॉइंट बाटे जहाँ एग्री इनपुट्स बेचे ला जा। तो ये लोग हाई सबेक्षण में धरला और हफ्ता में प्रोमोशनल सेल कर जा जमें जितना कॉम्पिटिव सोसाइटी बातें सस्ता दाम में सेकेंड सब किने हवे अपन लेके अपन अपन अथी में सेकेंड अथी करे।
0: अच्छा, और जैसे लोगन के कैसे कैसे एफओ में करल जाला, काहे के हैजा पर कुछ भी एफओ माशो पासे कर बता, कैसे आदमी लोग के कैसे जानी कि कुछ एगो एगो एक्टिविटी हो बता हो जा पर।
1: तो हमने के सबसे महत्वपूर्ण जो एक्टिविटी रहल इंटरनेशनल कॉम्पिटिव डे हुआ के तो 9 जुलाई 2006 में हमने एगो बड़ा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर लीजा।
0: अच्छा,
1: वर्कशॉप के ओकर थीम रहल स्ट्रैटेजिक वर्कशॉप ऑन कोऑपरेटिव मूवमेंट आई कोडो आर्ट सेंटर में। हमने के धरला सब जो सेक्टर सेक्टर्स में जो इकोनॉमिक जो कोऑपरेटिव बातें धरला एग्रीकल्चर बातें एग्रीकल्चर में बातें धर एथी वेजिटेबल प्रोडक्शन फिशरीज डिजिटलाइजेशन फाइनेंशियल सेक्टर। तो हमने के एगो धरला स्पेसिफिक रिसोर्स पर्सन रहल और हवे दिन वहाँ सोची जा कौन दिशा में हमने सब सजाई धरला गमने एगो अच्छी काम करके एगो स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर कोऑपरेटिव जो भाई जो चुनौतियों जो बातें है जो चैलेंजों जो बातें और जो अपॉर्चुनिटी जो बातें कैसे हमने के चला है कोऑपरेटिव मूवमेंट के आर आगे बढ़ाई। बस की जाने अभी के समय में बहुत चैलेंज ढेर बाते
0: नहीं और चैलेंज भी हुआ था और समय भी बदला था। अभी तो देख कैसे कैसे नवा तकनीक चलावा था, नवीनीकरण आवा था, टेक्नोलॉजी सौजे हुआ था, तो हाई भी शामिल करल जाला।
1: हाँ, तो हमने के हाई माध्यम से हमने सोची ला सा कि कैसे कोऑपरेटिव जाने कोऑपरेटिव मूवमेंट के चाहला हमने के 3 गो चीज बहुत महत्वपूर्ण है जब आगे बढ़ी। पहला है डेवलपमेंट, दूसरा है इनोवेशन और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। हाई तीन गो चीज बा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो जितना सोसाइटी जन बाते हाई में को जाके आके तीन गो चीज ओके चला करके तो हाई से मीडियम से धाबी के समय में थी डिजिटलाइजेशन तो लोग के बिजनेस एफिशिएंसी करके जस्ती आगे बढ़ा के और हाई डाइवर्सिफिकेशन करके वो लोग के चाहेला हाई माध्यम से जाएगी डिजिटलाइजेशन जब वो लोग के जस्ती सुविधा मिली वो लोग के बिजनेस जैसी आगे आए और जैसी नफा मिली। तो ये हमने के जरिए साझे के प्लान में कुछ ऐसा हिस्सा डाले के कैसे हमने है सब डिजिटलाइजेशन जो बातें एक जो ग्रीन इकोनॉमी बातें सिक्योर इकोनॉमी बातें और हाई कहते डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर।

0: जितना भी हमने के कोऑपरेटिव के मेंबर्स हवन सर उनकरा एगो लेजिकाशन देवेला एगो सिखावेलन सर कैसे करेलन सर
1: तो मैं इस पे ज्यादा जानकारी
0: हां जी
1: ई जो न सर्विस बा पांच गो से बेसे बा
0: अच्छा
1: कोऑपरेटिव बिजनेस सेंटर
0: हां
1: ओके पोर लुई मबा रिदे जी रंपोर सेंट पियर हेनरिएटा ऑल रोजबेल
0: अच्छा
1: ई में मान ला एगो ई कोऑपरेटिव बिजनेस सेंटर एगो वन स्टॉप शॉप बा सब सर्विस मिले कोऑपरेटिव के ओके जैसे कोऑपरेटिव के सहायता दे लन सा अपन कोट प्रिपेयर करे के कोऑपरेटिव के लॉजिक कोट के लॉजिक करे
0: अच्छा
1: ओके कोऑपरेटिव के सलाह दे लन सा एडवाइस काउंसलिंग कोऑपरेटिव के ट्रेनिंग दे लन कैसे कोऑपरेटिव के चलाए के कैसे अपन कोट रखे के
0: शुरुआत कैसे करे के हां
1: शुरुआत तो कोऑपरेटिव के निगरानी भी करे सीबीसी के ऑफिस चाहे ला सुपरवाइज करे के कोऑपरेटिव वाके और जैसे भाई कालिशन बोलक कोऑपरेटिव के लाफो देवे आंसर कोऑपरेटिव खाते इन तरह तरह के योजना जो जो स्कीम बा उसे बेसे पर
0: कैसे लाभ उठाए हाँ
1: कम्युनिके करने सा कोऑपरेटिव के
0: तो है जो ना कोऑपरेटिव बिजनेस सेंटर द्वारा है सब सेवा प्रदान करावल जाला अच्छा यानी कोनो भी मतलब है जब शुरुआत करत हो तो है सब इन्फॉर्मेशन भी दिया जाला
1: हाँ सब इन्फॉर्मेशन दिया जाला कैसे कोऑपरेटिव किससे बेसे से जुड़न हो तो वो कॉन्टैक्ट ले ऑफिस संगे तब सक सर्विस ओके प्रदान
0: सर्विस मतलब शुरुआती से ओकरा है सब सर्विस प्रदान कर
1: सब मिलेला
0: हां हां
1: तो ऐसे में वो सकेला अपन कोऑपरेटिव ठीक से निमन से चलावे
0: सके और मान ला एगो भी शुरू हो गल कोऑपरेटिव शुरू हो गल गते गते ओकर काम आगे बढ़ता मान ला उनकरा कोनो तकलीफ बीच में चलाल तो उ सकी तोहरा कांटेक्ट करे
1: एग्जैक्ट सब सर्विस कोंसेई लॉजिक कोंट सब सब
0: कैसे पस की जानत हुआ ढेर कोई तो नहीं उतना जाने लन सकी कैसे वो कोंट करी कैसे रेगले करी कैसे पेमो सब करी तो वो सब ले फॉर्मेशन तो हर बगल से
1: तो देखा एगो मच्छी मार वो नहीं सके अपन कोंट करी तो आप उसे कर लन ऑफिस से बेसे के तो असिस्टेंस
0: तो हम मिले ला तो चलो आज के कार्यक्रम में बिल्कुल है भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो सहकारी आंदोलन यानी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हवन सब वो कैसे एगो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के उकरा कैसे कौन भागीदारी द्वारा उकरा कौन महत्वपूर्ण कैसे मिलल जाला
2: आई हमनी के कोऑपरेटिव डिवीजन न हां
0: हमनी
2: बहुत बड़ी से एथी करल जाला आई सेंसिटाइजेशन कैंपेन थाई माध्यम से हमनी जाला जा सब रीजन में सब इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज में जाला जहाँ पर ही सेंटिसाइज करी कि कोऑपरेटिव के कॉन्सेप्ट का है ए हमने के कोऑपरेटिव कितना बड़ी से मोरिस में बातें और उकर सोशल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन कितना है कितना कुल एक में जुड़ल बातें तो हमें सिखा ला जा कि एगो धरना हमने एगो सेंटिसाइज कर ला जा में हई हमने के मॉडल कोऑपरेटिव मॉडल बा जमें आदमी हम अपने जितना बातें अच्छी जन लोग सकें जा हई यूटिलाइज करी हई माध्यम से अपन बिजनेस करी जान ना एगो बिजनेस करके हबी के दिन में बहुत मुश्किल है ओकर कैपिटल ओकर एक्सपर्टीज और सब चीज जाने के कैसे चला ओकर ऑर्गेनाइजेशन करके मैनेजमेंट करे के तो हाँ ये जब कहते हैं स्पीकर कर जहाँ हमने हमने के रहला हमने के ऑफिसर रहला कबू को बोले जाए साफ के ऑफिसर तो हम ये सब माध्यम से लोग के हई एक्सप्लेनेशन दे ला जा कैसे कोपते मॉडल चला लोग के अनुपति करेंगे जिसमें लोग निमन से अपन कमाल करते हैं
0: जी यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथ कालीचंद जी साथ जुड़े हुए हैं और आज उनकी तबीयत कुछ यानी उनको भी सर्दी खांसी है तो बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में एक गीत का ब्रेक लेते हैं आते हैं थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए

0: आज की चर्चा।
1: की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर आप हमें सुन पा रहे हैं और साथ ही साथ एमबीसी के तीसरे चैनल पर आप इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। वैसे आज हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव पर। जी हाँ, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो मनाया गया पहले शनिवार को, जुलाई महीने का पहला शनिवार डेडिकेटेड है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव दिवस के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में हम ये भी ज़रूर जानेंगे कि इस वर्ष के बजट की जब हम बात करते हैं तो कोऑपरेटिव क्षेत्र के लिए बजट 2026-2027 में घोषित प्रमुख उपाय कौन कौन से रहे, आइए जानते हैं कालीचरण जी से।
2: बजट 2026-2027 खातिर की सरकार हमने के जो नई स्कीम है बूस्ट लोकल प्रोसीजन स्कीम, जैसे हम बोली शुरू में कि यही सबसे पॉपुलर स्कीम है, तो हाइयो बरिस हमने के सरकार दिलक धरल 7 मिलियन रुपीज कि हई अच्छा स्कीम में कोऑपरेटिव के जमे बेनिफिट्स करें जा। तो हम के स्कीम में लॉन्च होगा 300,000 देते हैं, 80% मैक्सिमम वो मैक्सिमम धर दे 300,000 देते हैं सब को वो ग्रांट है, लोन नहीं ग्रांट। मिनिस्टर हई कोऑपरेटिव डिविजन्स जो जो नई सुविधा दे होता है जो स्कीम है जमे अपन नया एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट उन किने, तो वो लोग हई हई पैसा जो सरकार दे होता है लोग सेंजा हई लिखे पा किन के अपन जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है एक जस्ती निमन से ऑर्गेनाइज करे। तो हाई एगो स्कीम दरा 6 बरिस से ई चल जाओ
1: चल जाओ।
2: दूसरा स्कीम है डिजिटलाइजेशन स्कीम और एगो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर स्कीम है।

0: लगभग 12 मिलियन रुपीज़ मिलल बाते जब हम निके जितना हाँ कोपरिय सोसाइटी हाँ वो लोग समझ अपन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करे और अपन इंस्टॉलेशन करे जब वो लोग के बिजनेस एफिशिएंसी जस्ती आगे बढ़े
1: आगे बढ़े
0: हाँ ही हमने के मेन ऑब्जेक्टिव है डिजिटलाइजेशन का तीर पास जाने अभी के समय में देखो जितना बातें है सोशल मीडिया है जितना कंपनीज बातें स्मॉल और बिग कंपनीज डिजिटलाइजेशन जेने रही तो लोग के धरो मार्केटिंग और के काम नहीं मन से
1: नहीं चला सही
0: तो हाई हमने फोकस करने जा हाई बिग जो में कि हाई डिजिटलाइजेशन से माध्यम से और अपन एफिशिएंसी जस्ट इंप्रूव करने जा और ये बातें हमने के एगो ये स्कीम नहीं है ये प्रोजेक्ट है अग्री फूड वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो हाई हमने के छोटे छोटे प्रोजेक्ट कैसे आने के जिनमें जितना है अग्री वेस्ट रहेगा धरला हमने इन कोलाबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस देखा अब सब कैसे कोऑपरेटिव में अपॉर्चुनिटीज मिली एगो बेनिफिट्स मिली जिनमें सेकेंड जहाँ जो वेस्ट वहाँ एक रेवेन्यू में ट्रांसफॉर्म करेगी तो हाई एगो प्रोजेक्ट देखा जब देखा अब सब कैसे हाई बरिस हमने के माध्यम कोऑपरेटिव से आर्मी यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से कैसे लोग अच्छा आगे बढ़ेगी तो धरला अभी एक महीना में से कम जरा हिस्सा शुरू करें हम और एगो बात है इरीगेशन सपोर्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम तो हाँ एगो स्कीम है धरला जो अथी है जो इरीगेशन सिस्टम जो सेवी करे जा कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो प्लांटे जा है ऑनियंस पोटेटोज तो लोग बहुत कंस्ट्रेट बातें लोग के धरला चैलेंज है ढेर बातें आई वाटर सप्लाई खातिर तो हमने हाँ स्कीम खातिर जब दे ला जा तो लोग सकें जा अपन जो वाटर पंप है आई सोलो माध्यम से सकें जा हाई अच्छे करे जब मैं लोग के हाउ जो पंजा जन मिली लोग सकें जा अपन इच्छा इरीगेशन करे जब मैं लोग हाई वो सपोर्ट देते हैं जब मैं लोग के कॉन्स्टेंट वहाँ पानी के कॉन्सेप्ट नहीं रही
1: यानी हर क्षेत्र के ध्यान में रख के हाई काम करल जाता
2: जो कॉस्पा इरीगेशन वाटर पंप के चलाए गए से भी बहुत पैसा चाइना पे के तो सोलर पैनल के रिड्यूस
1: करे लंसा तो एगो एगो देखबा तक मजा उ रेवेन्यू में उक मजा जैसे जितना निवेश करा था उतना निवेश नहीं करे के पड़ी उतना मतलब कम थी उतना पैसा भी बची हाँ और जैसे अभी आगे बढ़ाता है तो हाई जो हाई ले तेरोआ मॉरिशियन कोऑपरेटिव सेक्टर एक महत्व तनी हमने के समझाइए कालीचंद जी
0: हाँ हाई बरिस 2006-2007 में हमने के एगो बजटरी मेजर्स जो अनाउंस करन जा लेते हुआ मॉरिशियन कोऑपरेटिव लेबल प्रोजेक्ट तो ई एगो लेबल है कोऑपरेटिव के जमे हमने के कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ना एक मतलब सेपरेट आइडेंटिटी है
1: हां हां
0: ई धरा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन तनी हट के बातें कर में
1: अच्छा
0: तो हमने को जाना कि जब कोऑपरेटिव अपन जितना प्रोडक्ट्स बनावेला वो लोगों के चला एगो कोऑपरेटिव आइडेंटिटी मिलेगी सेपरेट आइडेंटिटी जब मैं जब मार्केटिंग करें सर धरला पब्लिक इन जनरल जान जा हाई एगो प्रोडक्ट आवा था कोऑपरेटिव सोसाइटी से तो हमने को जैसा हाई प्रोडक्ट एगो एगो लेबल के खातिर जब मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितना इन्फॉर्मेशन रही प्रोडक्ट में और सोर्स से लेकर लोकल वजह मार्केटिंग तक सब वही में रही तो एगो क्लाइंट जब आए वो जान जाए कि एगो कोऑपरेटिव प्रोडक्ट सब कब बनल बातें जैसे एगो ट्रांसपेरेंसी रही एगो ट्रस्टेबिलिटी वो रही करते हैं एकर से एकर में आर बातें एगो थी हमने के इन कोलाबोरेशन विद एफसीसीआई मॉरिशस चैंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो हमने के बहुत योगदान दिया था ऐतिहासिक करे कि कोऑपरेटिव आइडेंटिटी वाक खरी खाती थी तो हाई जब हमने धरा जहाँ बरिश से धरा हो जाए हमने की आइडेंटिटी तो ढेर कोऑपरेटिव सकल जा अपन प्रोडक्ट रही इजीली आपको सुपर मार्केट जितना मार्केट बातें
2: मार्केटिंग
0: करी हाई वो आदित्य जब नहीं रही तनी मुश्किल हो जाता
1: मुश्किल होता
2: और ढेर विजिबिलिटी हो
0: जाए
2: कोऑपरेटिव के प्रोडक्ट
1: बिल्कुल बिल्कुल जैसे हाई मार्केट में जितना जस्ती लोगों के वो आचरण करी हाँ और जैसे अभी टेक्नोलॉजी के तू बात करत हुआ और सस्टेनेबिलिटी के तू बात करत हुआ तो किस प्रकार से कोऑपरेटिव जो समिति है जो सोसाइटी है वो कैसे वो भविष्य के यानी फ्यूचर के कैसे वो फॉर्म करेला कैसे शेप देवेला कैसे आकार देवेला
0: हाई अभी के समय में जो यहाँ टेक्नोलॉजी वो बहुत हमने के बिजनेस ऑर्गेनाइजेस के बहुत फैसिलिटीज देवेला धरना एगो उधार के सत्य पहले वहाँ एग्रीकल्चर कर तो अभी के समय देखे ढेर कोई ड्रोन से भी करना जा ड्रोन सिस्टम से भी करना जा आइडेंटिफाई करके कहाँ की हो एग्रीकल्चर जो बातें उतना नहीं मत नहीं जमाता और कैसे चल हमने के पेस्टिसाइड्स एथी करके तो हाई टेक्नोलॉजी को जाने के की कोऑपरेटिव जब से भी करे अपन एथी में अपन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में तो के धरना जस्ती फैसिलिटीज मिलेगा एगो और हाई जो खड़ा डिजिटलाइजेशन हुआ एक जब लोग निमन से के यूटिलाइज करियन जा तक और

0: this organization juga ha, loke justice ni masih jadi. Pasti ham loke jangan hai habis ke pasal mai me. Hai jangan kalah decision making sama jangan halis lagi.
1: Ha, spontaneous rahe.
0: Exactly, spontaneous. Our information should be reliable.
1: Bilkul.
0: Dan bajre utawa lagi tak milik hari se. Dan jab hai mari digitalization juga rela. Dan loke hai dugo etase, loke saki apa decision making ar jaldi se ban justice ego tiga day, ego decision day, ki kon cara tiga ke, jadi eloke system justi ameliorate kon, ar eloke justi output bari.
1: Mili ha. Or chalo hai jara Ram Dohal ji se janab ja, ki kon act regulate karal jala hai khas kar cooperative society pag.
2: Kaise ki sab sikte hame, ego kad legal chahina, okay regulate karike. Ta Maurice me Cooperative Act 2006, ouhi cadre légal ba coopérative ke chalai ke sab provision mein ba in act mein
1: yani dekhba kuch bhi tu kaam karba cooperative bagal se ta us sab legal ha
2: sab provision ba in act mein ta coopérative wa ke kaise enregistrer karege coopérative wa ke kaise chalai ke coopérative wa kab consumer chahina karege kab chahila AGM, कबर कैसे AGM करेंगे, कब चाहे ला board meeting करेंगे, तो देख बा एक cooperative act में सब provision बा cooperative से निमन से चलाएगी।
1: और जैसे मान ला पांच शुरुआत में तो पांच लोगन संगे एक cooperative के तो शुरुआत कर दर, और जब और आदमी हेली हो हूँ मैं को मजे और mom बनी तो ओकर कैसे regulate कर बा हाई भी एक system रहेला।
2: तो वो cooperative के ओकर rules बा।
1: अच्छा।
2: ओकर rules बा ta coopérative wa ou apan rouge ke parit ou mom ke
1: enregistre kari
2: ta aise
1: société
2: barte jaye aur progrès karte jaye ta okar rouge mein ou sab provision ba kaise mom ke enregistre kari ke kaise sab ba
1: high training mein dial jala hai ya tomasho sab training mein sab se basic
2: training सब दे कोऑपरेटिव वा के तो कैसे निमन से चलाए के
1: और एक बार फेरो से तू बोले सक बा कहां कहां पर है कोऑपरेटिव बिजनेस सेंटर पावल जाला
2: पोली में बा रिवियर डू रंपोर्ट सेंट पियर हेनरिएटा और रोजबेल में बा
1: अच्छा मतलब है पांच मेन जगह हा पूरे देश भर में हां जो जगह से तू भीरी हवा हव जा जाके तू कर सक
2: कोऑपरेटिव जुड़े रंदा उसे बेसे से हो जाए
1: और चला जानब सर कालीचंद जी से कि जो सहकारी समिति यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक बारे में जनता और विशेषकर जो युवा वर्ग हवन जो यंगस्टर्स हवन ओकरा तू कैसे कौन संदेश देब जेकर से उतनी जस्ती ओंको आज होई हई में जुड़े के
0: हाई हमने के कोऑपरेटिव मुबा जो हाउ जैसे हम शुरू में बोली एक सौ बरी से जस्ती हो तो हमने के दुगो मेन कॉन्स्टेंट हम दुगो मेन चैलेंजेस बातें कि हमने की मेंबरशिप जो हाउ लगभग 80,000 अथी मेंबरशिप तो लोग का प्रॉब्लम कुछ है लोग का सबसे बड़का अथी है एजिंग अथी और जो लोग वृद्ध हो ले जाता और ही लोग मेंबरशिप घट ले जाता जे ऐसे ट्रेंड ऐसे जाता तो हमने के कोऑपरेटिव सेक्टर सकेला तो 10 20 या 25 बरिस में ढेर घट जाए या तो एक इम्पोर्टेंस जो रही नहीं उतना नहीं रही तो हम नहीं खोज रहे थे कि मिनिस्टर की आगे कोऑपरेटिवेशन कि जस्ती हम भी चला काम करे के हाई थी पर सेंसिटाइजेशन पर एनकरेजमेंट तो हमने मिनिस्टर में ढेर प्लस जाना जा कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी में ताकि हमने सेंसिटाइज करें जाए यंग पर्सन खाती जवान लोग खाती कि हाई इच्छा में आवा हाई मॉडल ऑफ बिजनेस जो कोऑपरेटिव एक इच्छा ना अडॉप्ट करे के और कौन सुविधा कोऑपरेटिव डिविजन देवा था जब मैं ये लोग जस्ती आगे बढ़ी जब हमने हाई इच्छा ने कर हाई सेंसिटाइजेशन में तो हमने के धर एगो खतरा बात है कि हमने के कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसे बातें हम भी घटले चल जाए।

0: अनर खाने के लिए अभी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चला करेंगे
1: यानी कुछ हो भी मतलब एक एसोसिएटिव खड़ा हुआ था ता चाहिला ओकर अनिमन से सिपो करे के जेकर से वो आगे जाके घने नहीं होई जेकर से वो टूटी नहीं आगे जाके
0: हमने के निस्ते धरना हई एगो बड़का फैसिलिटेटर और हमने के ने काम निकल जा हमने के सहयोग मिले हमने के फैसिलिटी हमने के हेल्प मिले ला धरना मिनिस्टर आगो से फारे से मिनिस्टर ऑफ फिशिंग से ब्लू इकोनॉमी द सब मिनिस्टर से जोड़ के हमने संग करना से तब सोसाइटी के सब सुविधा भी दे रहा है
1: और ओकर जो भविष्य के प्रायोरिटीज है यानी सहकारिता जो डिवीजन के भविष्य प्रायोरिटीज कौन कौन है
0: हमने के प्रायोरिटीज है ये है कि हमने कोपते मूवमेंट खोजा था इनोवेशन आने के उनके इन्वेस्टमेंट जमें जस्ती रही और उनके प्रमोशन एंड डेवलपमेंट करके जब मैं हमने खोजा था कि हाई सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर जस्ती अति एक्टिव रही और प्रो ग्रोथ रही उनके कंट्रीब्यूशन रही तथा फूड सिक्योरिटी में कोनो अथी में कोनो सेक्टर्स में जस्ती आगे रही तथा ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर
1: नहीं बढ़ सके और जहाँ रही वो हौजे रह जाए आगे आगे बढ़ावे खातिर जैसे तकनीक के साथ प्रौद्योगिकी के साथ जैसे नुवो इनोवेशन के साथ बहुत आगे बढ़ता और जोन भी सेक्टर रही यानी कोऑपरेटिव जैसे राम तोहल जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो आज मॉरिशस में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करते हुए और आज देखा गया है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक तरह से देश के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए भी बिल्कुल हमारे ऐसे अफसर हैं जो ऐसे अधिकारिक अफसर हैं जो इस कार्यक्रम में उनके साथ जुड़ते हैं उनको ये सही इन्फॉर्मेशन सही एजुकेशन देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक बार फिर आइए जानते हैं राम तोहल जी से कि अगर कोई कोऑपरेटिव फॉर्म करना चाहे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है कहाँ जाना चाहिए और बेशक अगर कोई हॉटलाइन नंबर वे शेयर करना चाहें तो इसके बारे में भी आइए जानते हैं ये आखिरी जानकारी।
2: कोऑपरेटिव के फॉर्मे करके कम से कम 5 सदस्य चाहिए मिनिमम शेयर कैपिटल 5,000 रुपया
1: चाहिए
2: एगो एप्लीकेशन फीस बा 1,000 रुपया चाहिए पे ये करे के एगो फॉर्म एप्लीकेशन बा चाहिए भरे के उसमें सब डिटेल बा नाम कोऑपरेटिव के नाम बा ओकर ऑपरेशन रीजन ओके कौन कौन एक्टिविटी करी कोऑपरेटिव के ओके चलाए ओके प्रेसिडेंट सेक्रेटेयर ट्रेजोरियर और मॉम के सब डिटेल बा ओकर एड्रेस ओकर आईडी नंबर और चाहिए फोटोकॉपी ओकर आईडी फोटोकॉपी प्रूफ एड्रेस सब चाहिए मिनिस्टर एगो यूनिट बा रजिस्ट्रेशन यूनिट या वहाँ पर फॉर्म चाहिए सबमिट करे के तब जाके रजिस्ट्रार वो सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और सब ठीक तो वो सर्टिफिका इशू करें
1: यानी जैसे तू बोलन कि हाई सब डॉक्यूमेंट जब पारे रही और जितना मॉम हाई में जुड़ल रही ओकर सब एफोमाशन जैसे तू बदल बतलाइलन वो सब पारे रही तो 7 working days के अंदर अंतर्गत हाई तोहर जो कार्य है वो संपन्न हो जाए और तोहरा जब वेरिफिकेशन सब क्लियर हो जाला तब तोहरा एगो सर्टिफिकेट
2: रजिस्ट्रेशन मिली तब सकेलन सा आगे बढ़ेगी सोसाइटी ओपेरे करी।
1: तो आज के कार्यक्रम बिल्कुल इसी पर आधारित था और राम तोहल जी कोनो निमगो बा जेकर से कुमा जाएगो हॉटलाइन नंबर या कुनो रही ता पोताजे करे सकबत
2: 405-0770
1: ओके तो हाई निमगो वा पर तू कॉन्टैक्ट करे सकब और हाई निमगो पर तोहरा सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जे तू खोजत हवा एगो कोऑपरेटिव फॉर्मे करे के तो जरूर हाई पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तू जाए सकब अपन भीरी के जो हाँ जहाँ सीबीसी यानी कोऑपरेटिव बिजनेस सेंटर जाके तू वहाँ जाके अपन रजिस्ट्रेशन करावे सकब। तो आज के जो कार्यक्रम रहल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे पर आधारित रहल जो पहला शनिवार के दिन मनावल जाला जुलाई महीना के पहला शनिवार और इसी के साथ हमारे टेक्निक पर हमारे साथ जुड़े रहे फैजान और प्रोडक्शन असिस्टेंट रही दीपशिका और साथ ही साथ प्रोड्यूसर रहे जिनेश। इसी कार्यक्रम को आप पुनः दोबारा से सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। और हमारे सभी दर्शकों का और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और खासकर हमारे दो अफसर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से यहाँ पर उपस्थित हुए, श्री कालीचरण जी और श्री राम दोहल जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और पुनः उपस्थित रहेंगे एक और ऐसे कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।
2: नमस्कार।

0: West
1: 96.4.
2: Center
1: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
4: देश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है टीना, आपको नमस्कार।
5: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। महंगाई का असर अभी भी मॉरिशस के लोगों के बजट पर बना हुआ है। इस साल मार्च से जून के बीच कई जरूरी सामान और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों में सामने आई है। रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन उन चीज़ों में शामिल है जिनकी कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में बदलाव के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है दो बार टैक्स लगने की समस्या को ख़त्म करना और टैक्स अग्रीमेंट का गलत फ़ायदा न उठाया जा सके। भारत के अधिकारियों की नए स्पष्टीकरण के बाद मॉरिशस ने इस प्रोटोकॉल को मंजूरी देने का फैसला लिया है। बागातेल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण काम 62% पूरा हो चुका है। ये परियोजना, जिसकी लागत लगभग 14 बिलियन रुपये है, दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर कुकुर और अमरीका की अफ्रीकन अफेयर्स के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा ट्रोटमान ने कल निर्माण स्थल का दौरा किया और उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कंक्रीट डालने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और अपार्टाइड के खिलाफ संघर्ष के विश्व प्रतीक नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इतिहासकार डॉक्टर सत्येंद्र पियटमक के अनुसार नेल्सन मंडेला केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे उपनिवेशवाद, अत्याचार और नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक थे। विदेश में अमरीकी सेना ने कल ईरान पर लगातार 7वीं रात हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इसकी पुष्टि की है। अमरीकी सेना की कार्रवाई के बाद ईरान ने भी चेतावनी दी है कि कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। बंधुलेन खोम्बा में 46 साल के 46 years old के श्री धर्मवीर राम सहाय, जो ऋषि नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके घर बंधुलेन खोम्बा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोम्बा की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। इंदिरा गांधी रोड पचीरा फ्रेमी 60 साल की 60 years old की श्रीमती उमा पादारत, पैदाइशी नाम रामचंद और जो फिया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनकी बेटी श्रीमती स्वीती शाम के घर इंदिरा गांधी रोड पचीरा फ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिछले आफ्रे की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
6: ये है रेडियो मॉरिशस।

कबूल न किया। लिहाजा हाबील इकलीमा का मुस्तहिक ठहराया गया। काबील पहले ही हसद रखता था और मजीद उसके हसद में इजाफा हो गया। ये इंसान का तरीका यही है कि जब किसी से वो जलता है और उसके मकाम मर्तबे में इजाफा हो जाए, नेमतों में इजाफा हो जाए, तो उसकी जलन में और इजाफा हो जाता है। काला बोला, लअक्तुलन्नक, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जब हजरत आदम अलैहि सलाम हज के लिए मक्के मुकर्रमा तशरीफ ले गए तो काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुझको कत्ल करूंगा। हाबील ने कहा क्यों? कहने लगा इसलिए कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई मेरी ना हुई, और तू इकलीमा का मुस्तहक ठहरा, इसमें मेरी जिल्लत है। قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ। हबील ने कहा अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है, यानी अल्लाह ताला तो मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हबील के इस कॉल का मतलब यह है कुर्बानी का कबूल करना अल्लाह का काम है, वो मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल फरमाता है, तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती, ये खुद तेरे अफाल का नतीजा है, ये तेरे करतूतों का नतीजा है, इसमें मेरा क्या दखल है। लइन बसत इलैया यदका लितक्तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैका लिअक्तुलक, बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। यानी मेरी तरफ से इब्तदा नहीं होगी, बावजूद इसके कि मैं तुझसे ज्यादा कवी हूं, तवाना हूं, ताकतवर हूं। यानी उसने जब कत्ल की धमकी दी और हजरत हाबील समझ गए कि काबील अब मुझे पीछे से वार करके, या मैं सो रहा हूं मुझ पर वार करके मुझे कत्ल कर देगा, तो आप ये कर सकते थे कि इससे पहले खुद ही हमला करके काबिल को कत्ल कर दें। तो आपने फरमाया मैं इस तरह नहीं करूंगा, मैं अपना हाथ तेरी तरफ कत्ल के लिए नहीं बढ़ाऊंगा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहां का मालिक है। ये वजह है जिसकी वजह से मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। हाँ, अगर तूने मुझ पर हमला किया तो मैं अपना दिफा करूंगा। इन्नी उरीदु अन तबू अबी इस्मी व इस्मी का फतकून मिन अस्हाबिन नार, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुना दोनों तेरे ही पल्ले में पड़े तो तू जहन्नमी हो जाए। वजालिक जजाउ जालिमीन, और यही जालिमों की सजा है। मेरा गुना यानी मुझको कत्ल करने का गुना, और तेरा गुना यानी जो तूने वालिद की नाफरमानी की, हसद किया और अल्लाह के फैसले को ना माना, ये दोनों तेरे ही नामे आमाल में लिखे जाएं, ये तेरे ही जिम्मे हो। मैं तुझे कत्ल करके अपने नामे आमाल को सिया नहीं करना चाहता। अब चूंकि हजरत हाबील बहुत ही ताकतवर थे और बहुत लंबे चौड़े थे, काबील की ये मजाल न थी कि सामने सामने आप पर हमला कर सके, तो फिर ये सोचता रहा कि मैं आपको कैसे कत्ल करूं। शैतान इसके ख्वाब में आया, एक रिवायत ये है, और शैतान ने इसको तरीका सिखाया कि जब ये सो रहा हो तो बड़े पत्थर से इसके सर को कुचल दो। क्योंकि पहला कत्ल था तो कत्ल करने का तरीका भी काबिल को नहीं आता था। ऐसा ही इसने किया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज पे तशरीफ ले गए थे और हजरत हाबील

किसी जगह पर आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तो ये आया और इसने बहुत बड़ा पत्थर आपके सर पर रखकर आपका सर मुबारक कुचल दिया। इस तरह आप शहीद हो गए। अब उसे ये फिक्र हुई कि मैंने कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब मैं इनकी लाश का क्या करूं। कुरान मजीद फुकान हमीद ने इरशाद फरमाया, फतवअत लहू नफसुहु कत्ल अखीही, तो उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। तो नफ्स की बातों में आकर उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। फकतलहु, तो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। फअस्बहा मिनल खासिरीन, तो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। अब वो ये लाश लेकर घूमता रहा मुद्दतों, अपनी पुश्त पर ये लाश लादे लादे घूमता रहा, क्योंकि उस वक्त तक किसी इंसान का इंतकाल नहीं हुआ था। तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसकी लाश को कहां छुपाऊं। फबअअल्लाहु गुराबन, तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा। यबहसु फिल अर्दी लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी, वो कौवा जमीन को रेंदने लगा ताकि ये कौवा उसे दिखाए किस तरह अपने भाई की लाश को वो छुपाए। दो कौवे आपस में लड़े, उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और अपने पंजों से जमीन को रेत कर गड़ा किया और उस गड़े में मरे हुए कौवे को डालकर मट्टी से दबा दिया। ये देखकर काबिल को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को दफन करना चाहिए, चुनाचे इसने जमीन खोद कर हजरत हाबील को दफन कर दिया। कौला, वो बोला, या वैलता, हाय मेरी खराबी, आजज़्तु अन अकून मिस्ल हादल गुराब, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। फ़ुवारिया सौअत अखी, कि मैं अपने भाई की लाश छुपाता। उसे अफसोस हुआ, इतना आसान काम था, गड़ा खोद के जमीन में डालना था और मेरी अकल में बात ना आई और मैं काफी अरसे तक लाश को घुमाता रहा। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि वो एक साल तक हजरत हाबील की लाश को घुमाता रहा, कभी किसी दरख्त के नीचे छुपाता, कभी कहां छुपाता, और ये सोचता कि किसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस लाश को न देख लें। तो उसे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं एक साल तक ये घुमाता रहा, हालांकि काम तो बड़ा आसान था, तो मैं कवे जैसा भी ना हो सका कि गड़ा खोद कर इसमें डाल दूं। फअसबह मिन नादिमीन, तो पछताता रह गया, शर्मिंदा होने वालों में से हो गया। इसे ये शर्मिंदगी गुनाह पर न थी, बल्कि अपनी नादानी और अपनी परेशानी पर शर्मिंदा हुआ। मिन अजलि जालिक, इस सबब से, कतबना अला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल पर लिख दिया, अन्नहु मन कतल नफसम बगैर नफसिन, कि जिसने कोई जान कतल की बगैर जान के बदले, औ फसादिन फिल अर्द, या जमीन में फसाद किए बगैर, यानी मुराद ये है कि जिसने किसी का नाहक कत्ल कर दिया। अगर कोई कातिल है और उसने जानबूझ के कत्ल किया है तो कत्ल के बदले कत्ल है, या अगर शिर्क करने वाला, कुफर करने वाला मुर्तद है, या वो गुस्ताख रसूल है, या वो डाकू है जिसने लोगों को कत्ल किया है, माल लूटा है, यानी कोई भी एक ऐसा सबब हो जिसकी वजह से उसका कत्ल जायज हो, तो कत्ल में हर्ज नहीं। वरना अगर कोई शख्स किसी को ना कत्ल कर दे, फकअन्नमा कतल नास जमिया, तो गोया उसने सब लोगों का कत्ल किया, क्योंकि इसने अल्लाह के हक की रियायत नहीं की और शरीयत के हुदूद का पास न किया। एक नाजायज कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है, इतना बड़ा गुनाह है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया नास जमिया, और जिसने एक जान को जिंदा किया,
जिंदा किया से मुराद है कत्ल होने से बचाया, डूबने से बचाया,

जलने से बचाया या और जो हलाकत के असबाब हों उनसे बचाया, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने गोया सब लोगों को जिंदा कर दिया। एक इंसान की जान बचाना सारे इंसानों की जान बचाने के बराबर है, इतनी फजीलत है। वलकद जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात, बेशक उनके पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ आए, यानी बनी इसराइल के पास रसूल मौजजात लेकर आए। सुम्म इन्न कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फिल अर्दि लमुसरिफून, फिर बेशक इनमें बहुत से लोग इसके बाद जमीन में ज्यादती करने वाले हैं, कुफर करने वाले, कत्ल व गारत गरी करने वाले हैं। यानी बनी इसराइल के पास रसूल निशानियां लेकर आए, लेकिन इसके बावजूद बनी इसराइल ने कुफर व शिर्क किया और कत्ल व गारत गरी की। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु, वो के अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं। अल्लाह ताला से लड़ना यही है कि इसके वलियों से, दोस्तों से दुश्मनी करे। जैसा कि हदीस पाक में, मन आदाली वलियन फकद आज़न्तु बिल हर्ब, अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे उसके लिए मेरी तरफ से ऐलान जंग है। वयसअउना फिल अर्दि फसादन, और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, यानी डाकू राहजन। आई युकत्तलू, उनका बदला यही है कि गिन गिन कर कत्ल किए जाएं, आउ युसल्लबू, या सूली दिए जाएं, सूली पर लटका दिया जाए, आउ तुकत्ता अईदीहिम व अरजुलुहुम मिन खिलाफिन, या उनके एक तरफ के हाथ दूसरी तरफ के पांव काटे जाएं, औ युनफाउ मिन अर्द, या जमीन से दूर कर दिए जाएं। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, ये दुनिया में इनकी रुसवाई है, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में इनके लिए बड़ा अजाब है। सन 6 हिजरी में उरैना के चंद लोग मदीने तैयबा में आए, आकर वो इस्लाम ले आए। मदीने तैयबा में बीमार हो गए, इनके रंग पीले पड़ गए, पेट इनके फूल गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदके के ऊंटों का दूध और पेशाब मिलाकर तुम पिया करो, ऐसा करने से वो तंदुरुस्त हो गए। मगर तंदुरुस्त होकर वो मुर्तद हो गए और 15 ऊंट लेकर वो अपने वतन को भाग गए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तलाश में हजरत यसार रदी अल्लाह तआला को भेजा। इन लोगों ने हजरत यसार के हाथ पांव काटे और तरह तरह की तकलीफें दी, और तकलीफें देते देते उन्हें शहीद कर दिया। जब हुजूर की खिदमत में गिरफ्तार करके ये लोग हाजिर किए गए तो इनके बारे में ये आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि इन्हें चुन चुन के कत्ल किया जाए, सूली पर लटकाया जाए, इनके हाथ पांव काट दिए जाएं और दूर वीराने में फेंक दिया जाए। तो यही इन्हें सजा दी गई। ये हर उस डाकू की सजा है जो डाका जनी करे, लोगों का माल लूटे, लोगों में खौफ पैदा करे। इस्लामी सजा यही है। इल्लल्लज़ीन ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, मगर वो जिन्होंने तौबा कर ली इससे पहले कि तुम इन पर काबू पाओ, यानी गिरफ्तारी से पहले तौबा कर लेने से आखरत का अजाब भी माफ हो जाएगा और जो दुनिया में डाकुओं की सजा है उससे भी वो बच जाएंगे, लेकिन जो माल लूटा है वो वापस करना होगा, और अगर किसी को कत्ल किया है तो कत्ल के बदले इन्हें भी कत्ल किया जाएगा। فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, तो खूब जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ ये रुकू तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ।

इसमें चंद बातें समझना जरूरी है। एक तो ये कि काबिल और हाबील का जिक्र हुआ, याद नहीं रहता कि कातिल कौन था और किसे शहीद किया गया। तो हजरत हाबील को शहीद किया गया और कातिल काबिल था। कातिल भी कौफ से है, काबिल ये लफ्ज भी कौफ से है, तो इस तरह याद रखें। दूसरी बात ये कि काबिल ने ये जो कत्ल किया ये दुनिया का पहला कत्ल था, तो इसके बाद जितने भी कत्ल हुए, चूंकि इसने कत्ल करना ईजाद किया, तो कयामत तक जितने भी नाजायज कत्ल होंगे हर कातिल के लिए सजा है और सारे गुनाह इसके नामा आमाल में यानी काबिल के नामा आमाल में भी लिखे जाएंगे। क्योंकि अगर कोई शख्स गलत काम ईजाद करता है तो जब तक ये काम होता रहता है गलत काम ईजाद करने वाले के नामा आमाल में लिखा जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद गुनाह से बचें, कम से कम ये कोशिश जरूर करें कि हमें देखकर कोई गुनाह ना करे या हम किसी को गुनाह की तरगीब ना दिलाएं या कोई गुनाह का तरीका हम ईजाद ना करें। फिर चूंकि इसने हजरत हाबील को शहीद कर दिया, अपने वालिद की नाफरमानी की, शैतान ने इसके पास आकर ये बात कही कि तुझे पता है हाबील की कुर्बानी को आसमानी आग ने क्यों खाया? काबिल ने कहा नहीं मालूम। तो उसने कहा कि ये आग की पूजा करता था। तो फिर काबिल ये पहला शख्स है जिसने आग की पूजा की और ये मजूसी हो गया, आग का पुजारी हो गया और इसी कुफर पर इसका खात्मा हुआ। जब कोई शख्स गुनाह करता है तो गुनाह करने से उसका ईमान कमजोर होता है और बस अवकात वो ईमान की हदूद से निकलकर काफिर हो जाता है, जैसा कि काबिल के साथ हुआ। दूसरी वजहत यह जरूरी है कि यहाँ वाकई में यह है कि उरैना के लोग जब मदीने तैयबा आए वो बीमार हो गए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हुक्म दिया कि वो सदके के ऊँटों का दूध और पेशाब मिलाकर पिया करें। तो मसला शरी यह है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात हैं, आप जिसके लिए जो चाहें हुक्म इशाद फरमा दें। जानवरों का पेशाब पीना हमारे लिए जायज नहीं है। बाद लोगों ने इससे ये मसला अक्स किया कि बीमार हो तो बीमारी के इलाज के लिए जानवरों का पेशाब पी सकते हैं, तो इसका जवाब भी है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात में से हैं कि आप जिसके लिए जो चाहें हुक्म इशाद फरमाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेशाब से बचने का हुक्म दिया है, लिहाजा ये मसला याद रखें कि जानवरों का पेशाब पीना भी मुसलमान के लिए मना है और ये नापाक है, चाहे बीमारी की वजह से कोई पिए तो ये भी गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक को अक्ल सलीम अता फरमाए और दीन के मामलात समझने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल माईदा का पांचवा रुकू मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला इस रुकू के नूर से हमारे कुलूब को रोशन और मुनव्वर फरमाए।

पुराने वक्तों की बात है, गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल ताजर रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिजक दिया था। उसका उसूल था कि गांव का

कतारें लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वह आए और सबकी मदद करे। लेकिन बीवी को यह सब पसंद न था। एक दिन वह बोली, अब्दुल्ला, तुम यूं ही धन लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर कहा, बीबी, मुझे डर है कि क्यामत के दिन मेरा रब न पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जब उसने मुझे दिया था। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहां तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई, दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद बीवी सही कह रही थी, अगर मैं इतना न खर्च करता तो आज ये हाल न होता। लेकिन फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास एक रुपया भी होता तो मैं वह भी किसी गरीब को दे देता। गुर्बत आ गई, मगर अब्दुल्लाह ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्लाह मुस्कुरा कर कहता, बीबी, हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से ज्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंस पड़ी, मुझे पैसों से गर्ज है, जाके कुछ कमा कर लाओ वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल्लाह ने बुरा न माना, जानता था कि वह शो आराम की आदि है, खुद उसे बचपन में फ्रोफा का देखना पड़ा था, इसलिए वो हमेशा दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसे देखा। दिल में रहम आया, जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे निकाल लाया। हैरत की बात यह कि सांपनी ने इंसानों की तरह बात की, मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं, तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला जरूर दूंगी। यह कहकर वह अब्दुल्लाह को अपने बाप के महल ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं, मगर तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं, आज से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को न बताना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। जब अब्दुल्लाह ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह जिन्नात उसके करीब आया, उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की जुबान समझ सकते हो, तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहमोगुमान में भी नहीं, मगर याद रखना, कभी जाहिर न करना कि तुम उनकी बातें समझते हो, वरना वो तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ये राज अपने दिल में रखना। ये कहकर अचानक सब मंजर गायब हो गया। अब्दुल्लाह ने पलक झपकी तो वह फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था, न महल था, न जिन्नात, न बादशाह। वह सोचने लगा, शायद ये सब ख्वाब था, लेकिन बड़ा मजेदार ख्वाब था। घर वापस आते हुए वह एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा, वहां उसने दो खूबसूरत मछलियां उछलते और खेलते देखी। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक ना होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी ना बच पाती जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। दूसरी ने जवाब दिया, हां, ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहां पड़ा है। ये सुनकर अब्दुल्लाह को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा, आखिर इस संदूक में क्या है। वो फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहां वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर जंग आलूद कुन लगा था। बड़ी मुश्किल से वह उसे खींचकर किनारे तक लाया। फिर सोचा, अब इस कुन को चाबी की जरूरत नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, कुन टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। अब्दुल्लाह ने इतना ही निकाला जितना जरूरत था और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफना दिया। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीबी, आज मुझे एक खजाना मिला है, इसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। बीवी फौरन बोली, यह खजाना कहां से मिला। अब्दुल्लाह को बादशाह जिन्नात की हिदायत याद आ गई, इसलिए खामोश हो गया। बीवी ने कंधे अचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात,
बस उम्मीद है कि इस बार अक्ल से काम लोगे और माल संभाल कर रख

रखोगे? अब्दुल्लाह ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया और अल्लाह ने मुझे इसका कई गुना लौटा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है? बीवी ने कहा, यकीनन है, मगर मुझे लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। इस बार मैं घर के बाहर किसी फकीर को खड़ा नहीं देखना चाहती। किस्मत बार बार नहीं आती और मैं तुम्हारे खर्च का हिसाब रखूंगी। अब्दुल्लाह को बीवी की नाशुकरी पर दुख हुआ। दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने फैसला किया कि अब गरीबों को अपने घर बुलाने के बजाय उनके लिए एक पनाहगाह बनाएगा जहां वो खाना खा सके और जरूरत का सामान ले सके। अगली सुबह बीवी को कुछ बताए बगैर वो फिर झील पर गया, सारा खजाना निकाला, गांव में एक बड़ी सी जमीन खरीदी, उस पर गरीबों के लिए पक्का सराय और बावर्ची खाना बनाया। उसने नेक और दयांतदार लोगों को वहां का जिम्मेदार मुकरर किया। अब न सिर्फ गरीब आकर अपना पेट भरते बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेत आबाद हुए, मजदूर रोजगार पाने लगे और कई खानदान खुशहाल हो गए। एक दिन अब्दुल्लाह अपनी बीवी के साथ बीवी के मायके जा रहा था। वह दोनों एक छकड़ा गाड़ी में बैठे थे जिसे दो खच्चर खींच रहे थे। रास्ते में अब्दुल्लाह ने सुना कि एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, जरा आहिस्ता चल, इतनी तेजी न कर। दूसरे खच्चर ने पूछा, क्यों भाई, जल्दी चलेंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक ने जो ताजा गीला जो खरीदा है वो भी खा लेंगे। पहला खच्चर बोला, भाई भूख ने तुम्हारी अक्ल मार दी है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि गाड़ी में बीबी के पेट में बच्चा है? अगर हम तेज चले तो झटके से गाड़ी हिलेगी और शायद बच्चा जाया हो जाए। हमारा मालिक इस लायक नहीं कि हम उसके साथ ज्यादती करें, उसने कभी हमारा हक नहीं मारा। अब्दुल्लाह ये बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि वो बाप बनने वाला है। वह बीवी के करीब झुका और धीरे से कहा, मुबारक हो बीवी, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। बीवी हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया और मुझे भी कुछ दिन पहले ही इल्म हुआ है। अब्दुल्लाह ने हंसते हुए कहा, बस महसूस हो गया था। बीवी ने दिल ही दिल में सोचा, ये आदमी मुझसे कोई राज छिपा रहा है। एक महीना पहले खजाना मिला था मगर नहीं बताया कहां से, और कई बार ऐसी बातें कहता है जो शुरू में नाकाबिले यकीन लगती है मगर बाद में सच निकलती है। अब से मैं उसे गौर से देखूंगी। कुछ दिन बाद एक आदमी अब्दुल्लाह के पास आया और कहा, मेरे पास लीमू और माल्टों की बड़ी खेप है, लेकिन अभी खबर मिली है कि बेटी बीमार है, जल्दी वापस जाना है, तुम ये सारा माल आधी कीमत पर ले लो। अब्दुल्लाह ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकाल कर दे दिया। ये सब बीवी खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाने के बाद बीवी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने लीमू और माल्टे कौन खरीदेगा? सड़ गए तो फिर हम वहीं के वहीं पुराने हाल में आ जाएंगे। अब्दुल्लाह ने इत्मीनान से कहा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। बाद में वो अकेला बैठा सोचने लगा, शायद बीबी की बात दुरुस्त हो, मगर मैंने उस आदमी की मजबूरी देखकर ही ये सौदा किया। इसी दौरान दो चिड़िया खिड़की पर आकर बैठ गई। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें ये जगह छोड़नी होगी, मौसम बहुत सर्द होने वाला है। दिल में कहा, अभी ये लीमू और माल्टे नहीं बेचूंगा, बस मौसम देखता हूं क्या होता है। बीवी हंसती और ताने देती, चलो पागल, बेच दो ये माल, शायद थोड़ा नुकसान पूरा हो जाए। अब्दुल्लाह मुस्कुरा कर कहता, बीबी बेहतर है तुम ठंड की तैयारी करो। कुछ दिन बाद वाकई सर्दी मामूल से पहले और सख्त आ गई। नजला, खांसी और बुखार फैल गया। हकीमों और डॉक्टरों ने लोगों को लीमू और माल्टे खाने का मशवरा दिया। उनका दाम आसमान को छूने लगा और बाजार से गायब हो गए। ताजरों को खबर मिली कि अब्दुल्लाह के पास एक बड़ी खेप मौजूद है, तो सब सोने और चांदी के संदूक लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। अब्दुल्लाह ने बीवी को कहा, सुभान अल्लाह, कल तक यहां गरीबों की कतार थी, आज अमीरों का हुजूम है। उसने बारी बारी सबको माल बेचा, शाम तक घर सोने और चांदी से भर गया। बीवी खुश तो थी मगर फिर भी उसके दिल में वसवसा था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि अब्दुल्लाह ने यतीमों और गरीबों के लिए सराय बनवाई है। वो डर गई कि कलीमू और माल्टों का मुनाफा भी फुकरा पर न लगा दे। वो फौरन उसके पास गई और तेज लहजे में बोली, क्या तुम्हें इन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का अंजाम याद नहीं?

अब्दुल्लाह ने सुकून से कहा, क्या तुम्हें लगता है हमारे पास इतना सोना और चांदी होते हुए भी हम गरीबों के मुंह का निवाला छीन ले? बीवी ने कहा, अल्लाह उन्हें भी रिज्क दे और अता करे जैसे उसने तुम्हें रिज्क और अता दिया। फिर उसने तेजी से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पीछे कोई राज छिपा हुआ है, और अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं सब लोगों में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो और यही तुम्हारी दौलत का राज है। ये सुनकर अब्दुल्लाह घबरा गया। उसने दिल में कहा, मैं उसे अपना राज बता दूंगा, क्योंकि मर जाना हजार गुना बेहतर है उस इल्जाम से जो मेरी जिंदगी भर मेरे साथ चिपक जाए। लोग तो जो सुने यकीन कर लेते हैं। फिर खुद ही सोचने लगा, अगर मैंने अपनी बीवी को राज बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, जैसा कि जिन्नात के बादशाह ने कहा था, और फिर गरीबों और कमजोरों की देखभाल कौन करेगा। काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि बीवी को अपना राज बताने के बदले वह अपना घर, जायदाद और सोना चांदी सब उसके नाम कर देगा। वो अपनी बीवी के साथ काजी के पास गया और सब कुछ उसके नाम कर दिया। अलबत्ता वो जमीन जिस पर उसने गरीबों का मेलज पनाहगाह बनाया था वो वक्फ रहने दी ताकि खैर का काम जारी रहे। फिर उसने बीवी से कहा, बरह मेहरबानी आज के बाद मेरे करीब ना आना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर तलाक का हक इस्तेमाल कर लूंगा। अब हम दोनों अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं। अब्दुल्लाह गरीबों और यतीमों के मेलज में रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही फायदेमंद होंगी। दूसरी तरफ बीवी ने इरादा किया कि घर को गिराकर बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजिरों के साथ कारोबारी सौदे करेगी ताकि मजीद अमीर हो जाए। उसने सोचा, मैंने कभी शौहर की वो जिंदगी पसंद नहीं की जिसमें वो मुझे महरूम रखकर दूसरों को देता था। कुछ ही अरसे में उसने महल तामीर कर लिया, सोना चांदी जमा कर ली और मूसीकी व गाने के आलात से भर दिया। लेकिन उसके महल में कदम रखने से पहले ही जमीन लरज उठी और महल समेत सब कुछ जमीन में धंस गया। उसके पास कुछ न बचा और अल्लाह ने उसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो शौहर को तरस खाने से रोकती थी। इस दौरान वो अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थी। वो टूटे महल के सामने बैठी रोती और नोहा करती, ये सोचे बगैर कि कहा जाए, क्योंकि सब कुछ लुट चुका था। लोग गुजरते तो कोई परवाह न करता, मगर गरीब आकर उसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वो हैरान होकर सोचती, गरीब कैसे देता है और अमीर कैसे रोकता है, मगर वो किसी से कुछ न लेती रही। तीन दिन तक ये हाल रहा, फिर भूख ने निढाल कर दिया और उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैलाया। एक दिन अब्दुल्लाह वहां से गुजरा और देखा कि उसका घर जमीन में धंस चुका है और बीवी एक बदहाल और बदबूदार भिखारिन बन चुकी है। वो उसे उठाकर एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने मेलज के पास बनाया था। उसने एक महीने तक उसकी देखभाल की, यहां तक कि वो फिर से तंदुरुस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने एक खूबसूरत बच्चा जन्म दिया। अब्दुल्लाह ने देखा कि अब वो न शिकायत करती है न किसी चीज पर बेजारी दिखाती है। हालांकि जिंदगी निहायत सादा थी। वह दूसरे मजदूरों के साथ मेलज के पास वाली जमीन पर काम करता। एक दिन बीवी उसके पास खड़ी होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब्दुल्लाह ने हैरत से कहा, मगर ये तो गरीबों का काम है। वह मुस्कुरा कर बोली, तो क्या हुआ अगर ये गरीबों का काम है? अल्लाह ने चाहा तो उनका रिस्क दुनिया में कम रखा, मगर वो फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। फिर उसने नरमी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल जाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। अब्दुल्लाह मुस्कुरा कर बोला, तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफी है। हम इसी के साथ वाली जमीन पर काम करेंगे और सबसे खुशहाल लोग बनेंगे। सेहत की दौलत है और वही सबसे बड़ी नेमत है। यहाँ आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
2: लीजिए सुनिए सीबी की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। कनाडा यो रू अल्फोंस ओलांडो डॉक्टर ओरी पियरो और बात्री के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 19 जुलाई को सुबह के 8:30 से दोपहर बाद के 2:30 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। ओब्लू तोस्ते और CW पंपिंग स्टेशन रिजर्वर क्लिनिक के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार 20 जुलाई को सुबह के 8:30 से शाम के 3:00 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मेबर्ग, रू सुफ्लेर, रू द कॉलोनी, रू मॉरिस, रू बुशन, रू लाशो, रू एंगोर, रू शालों और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार 20 जुलाई को सुबह के 8:30 से शाम के 4:00 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बेजितोंबू मौसलमों कोपैन मौसलमों कॉन्कॉर्ड मौसलमों ला कोशेल रेसिडेंस फ्लोरिडा लैंड सेटलमेंट सेंट जोसेफ रोड और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 19 जुलाई को सुबह के 8:30 से शाम सुबह के 8:30 से दोपहर बाद के 2:00 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। तो प्रिय श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: बालानंदम శ్రోతలకు విశేషంగా ముద్దు ముద్దు పిల్లలందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారం. మధ్యాహ్నపు వేళ అలవాటు ప్రకారంగా శనివారం నాడు మన బాలానందం అనే తెలుగు కార్యక్రమం మీరు వింటారు. పదండి శ్రోతలరా, ఈ శనివారం నాడు మధ్యాహ్నపు వేళ మీరు ట్యూషన్కి వెళ్తున్నారు లేదా ఇంట్లో ఉంటున్నారు, భోజనం చేస్తున్నారు, ఈ మధ్యాహ్నపు వేళ శుభోచి చెప్తూ మన కార్యక్రమం మొదలు పెడుతున్నాం. బాలానందం అనే తెలుగు కార్యక్రమం ప్రతి శనివారం నాడు మన ముద్దు ముద్దు పిల్లలందరి కోసం. Thank you.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: हेलो,
2: ए हेलो, मौज करवा गुजराती गीतों ना प्रोग्राम गीत बहार नी साथे। गीतों नी बहार, गीत बहार, गीत बहार।

0: तू बटरफ्लाई आ।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
3: आपकी पसंद।

जी हाँ, सवा दो बज चुके हैं और यहाँ पर आप सबों का हम स्वागत करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, गुड आफ्टरनून। आज सैटरडे 18th of July, शनिवार 18 जुलाई 2026 और शनिवार के इस खुशनुमा दोपहर में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं देवीना और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद सिर्फ ओनली एंड ओनली ऑन MBC रेडियो मॉरिशस। जी, उम्मीद करते हैं कि आपका जो वीकेंड है प्यार, मुस्कुराहट और सुकून से भरपूर बीत रहा होगा। चाहे आप घर पर हो, सफर में हो, दोस्तों के साथ हो या फैमिली के साथ दोपहर का आनंद ले रहे हैं, टी टाइम है, सो अपनी जो चाय है इसका आनंद लीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा ज़रूर। और अगले जो डेढ़ घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे आपके पसंदीदा गीतों के साथ, खूबसूरत बातें, प्यारी शुभकामनाओं और ढेर सारी यादों के साथ। आपको तो नंबर पता ही है 402-0085-402-8585, साथ ही 5251-7005-5-7005 पर आपके मैसेजेस के लिए। तो आइए संगीत भरे सफर की शुरुआत करते हैं आपके हमारे ही पसंदीदा गीत के साथ। और फिल्म जो है इसमें नज़र आए थे सलमान खान, प्रीति जिंटा और इसमें आवाज़ें जो है सुनी निगम, साथ में है अलका याग्निक। सो बस इस गाने को एंजॉय कीजिए।

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: हे, रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है। अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: आपकी पसंद।
1: जो आपके प्यार आपके इंतजार में बैठे हैं यहाँ पर स्टूडियो में रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आप सबों का फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूँ देवीना और आपको पता ही है तो हमारे जो श्रोता हैं जो लिसनर्स हैं फ़ोन कर रहे हैं 4028085 पर। साथ ही मैसेजेस के लिए हम बाद में पढ़ने वाले हैं मैसेजेस 5251705। सर्दी का दिन है और आज कुछ गर्मी भी है, सो आज नहीं लग रहा है कि सर्दी का मौसम है ना। सो बहुत से लोग जो है समुद्र किनारे हैं, शॉपिंग सेंटर्स में हैं, बाज़ार में हैं, शॉप में हैं, बस आप सभी को हमारा सलाम है। अब एक प्यारा सा गाना हो जाए दोस्तों। कहते हैं कि दुनिया में सबसे प्यारा शब्द है माँ। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, उनकी दुआएँ हमारी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। चाहे माँ हमारे पास हो या सिर्फ यादों में, उनकी ममता हर पल हमारा साथ निभाती है। आइए अपनी प्यारी माँ की मीठी यादों को दिल में संजोते हुए सुनते हैं एक बेहद ही प्यारा सा गाना और जो हर उस दिल को छू जाएगा जिसने कभी माँ के प्यार को महसूस किया है। और आपकी माँ आपके पास है तो आप बहुत लकी हैं। आपकी माँ आपके पास नहीं है फिर भी आप लकी हैं कि आपने ऐसी माँ को पाया था। और लेट प्यारी माँ शोभा की याद में मीरा विकास देवीना माँ को याद कर रही हैं, मिस कर रहे हैं उनकी याद में अगला गाना। और जितनी माताएं हैं आप सभी को समर्पित है ये गाना।

जहाँ 2:32 हुए हैं रेडियो मॉरिशस पर आपका साथ दे रही हूँ देविना और चला रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। सचमुच ही ये जो गाना था ना माँ तो है माँ, ये जो है जादू जैसा है, ये गीत सीधे दिल को छू जाते हैं और यादों की गलियों में हमें पहुंचा दिया। और दोस्तों यदि आप किसी के लिए गीत मांगना चाहते हैं, जन्मदिन, सालगिरह या किसी खास अवसर की शुभकामनाएँ देना चाहते हैं तो बेशक हमें फ़ोन कीजिएगा और मैसेजेस भेजिएगा। अब पेश है एक बहुत ही रोमांटिक सा गाना, आपको ले चलेंगे डाउन मेमोरी लेन, जहाँ पर रफ़ी साहब की आवाज़ की क्या कहना, उनकी आवाज़ में वो कशिश है, वो जादू है जो बस हम बयान नहीं कर पाते हैं, इसको सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। और ये जो गाना है बहुत दिन हुए हमने नहीं सुना, सो धन्य जी धन्यवाद आपको कि आपने ये गाना चुना। रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म है प्यार किया तो डरना क्या, 1963 की मूवी, और ये गाना धनी जी की मांग पर, और ये जाएगा यश और हेमिश के लिए और सभी जो रफ़ी साहब के फ़ान हैं इस उनके लिए।

जी हाँ, आज है शनिवार 18 जुलाई, और जैसे कहें ना, बेशक कोई ना कोई अपना बर्थडे तो मना ही रहा होगा, या कल मनाया होगा, या कल मनाने वाला है, या आज मना रहा है। तो जितने लोग अपना बर्थडे मनाने वाले हैं, मना रहे हैं या मनाएंगे, आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे है, लॉट्स ऑफ लव आप सभी को। सो आज है वर खास डे, सो लीला जी बहुत शरीर से हैं और वे बेस्ट बर्थडे विशेज भेज रही हैं प्रीति बोयरू को, बहन माइयों की है। तो प्रीति जी आपको हैप्पी बर्थडे, तो बेस्ट विशेज और आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार लीला जी की ओर से, करण, ऋषि, विक्की और सभी लोचन परिवार की ओर से। ये अगला गाना आपके लिए। और वंस अगेन, जितने लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं, ये रहा आपके लिए।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
2: डोंट मिस इट।

हाँ जी, कदम बढ़ाते हैं 1956 की ओर और फिल्म है न्यू दिल्ली। लता जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना जिंदगी बहार है, और इसके बाद क्या हो गाने में हमें पता चल जाएगा। और इसकी फरमाइश की है मेबर्ग से विद्यानंद जी, हमेशा जब आते हैं कुछ ना कुछ कहते, और आज कह रहे हैं आपको पता है आपका जो नाम है ना, किस एक्टर की बेटी का नाम है? तो मैंने कहा झट से, हाँ जी देवानंद साहब के, हाँ जी देवानंद साहब की बेटी का नाम देवीना है और हम भी हैं देवीना। सो थैंक यू सो मच विद्यानंद जी ये बात करने के लिए, स्वीट स्वीट सी बातें करने के लिए। तो विद्यानंद जी की ओर से ये जो अगला गाना है जाएगा हमेशा की तरह सुहंती जी के लिए, और साथ में हैं हाँ जी स्वीति, अमित, शीतल, राजीव, आशु, कृषिका, विशाल, हरवेश और उनके

दिल से प्यार भरा नमस्कार करती हैं, हम भी आपको करते हैं गीता जी पोंफिया से। और ये गाना पति रोहित, तीन बेटे तीन बहू हैं, साथ में जो तीन जो नाती हैं आदित्य आरव तनिष परी जैसी जो है जानवी, साथ में है बहन मीला ऑफ न्यूखोव।

0: आपकी पसंद।
1: अगला गाना जो है जब प्यार किसी से होता है मूवी से लिया गया, रफी साहब की आवाज में लता जी की आवाज के साथ। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी और क्या क्या मांगा था इस गाने में सुनेंगे। और ये गाना अपने ज़माने में कितना मशहूर हुआ करता था कि आज भी ऐसे गाने सुनने को मन करता है। और आज इस गाने की मांगी है वाकवा से सावित्री जी ने और उनके सभी परिवार के लिए।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जो ये गाना जो है अनुराधा पौडवाल की आवाज में, साथ में है रेणुका, और ये गाना हमें ले जाएगा 3 बजे के संक्षिप्त समाचार की ओर, और इसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी आपकी पसंद प्रोग्राम में। अभी तक हमने कुछ कॉल्स लिए हैं, इसके बाद हम कुछ मैसेजेस की ओर बढ़ने वाले हैं, सो बस कहीं मत जाइएगा। बी कनेक्टेड टू रेडियो मॉरिशस, आपकी पसंद प्रोग्राम, दीवीना है आपके संग।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर से याचना के साथ। आपको नमस्कार याचना।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। कुछ कैदियों को फिल्माया गया जब वे सिगरेट जैसी देखने वाला कुछ बना रहे थे। एक मोबाइल फोन के जरिए बोबासा की जेल की दीवारों के पीछे ये दृश्य कैद किए गए। ऐसी वीडियो जो जल्द ही वायरल हो गई, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सिगरेट को छोड़िए, लेकिन मोबाइल फोन ही कैसे अंदर गया जब इनकी अनुमति ही नहीं थी। देश में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत बनाने की दिशा में आज सुबह डॉक्टर ब्रूनो चोंग स्वास्थ्य केंद्र में शिगालजिन टूसे ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र में स्क्रीनिंग से लेकर मानसिक और शारीरिक सहयोग प्रदान करने तक सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये केंद्र उस महिला के नाम से जाना जाएगा जिसने ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष करके अन्य महिलाओं को प्रेरित किया है। संयुक्त राष्ट्र में मॉरिशस ने वैश्विक आवास संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। मंत्री शकील मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया, जहां न्यू अर्बन एजेंडा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का आकलन किया गया। शकील मोहम्मद ने आवास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के लिए सरकार द्वारा पहले से उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। वैश्विक स्तर पर कल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले रविवार की सुबह 1 बजे तीसरे स्थान के लिए मैच होगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मायामी के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, जहां इंग्लैंड और फ्रांस की टीमें आपस में टकराएंगी तीसरा स्थान प्राप्त करने

0: के लिए। इसके बाद कल रात 11 बजे वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनल होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Radio Mauritius.
3: 800 kHz पर ये है Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.
4: 819 kHz ये है Radio Mauritius.

जो वेलकम बैक हो चुका है 3:03। बस चलिए सीबी की ओर से कुछ कम्युनिके सुनते हैं। सो सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि जरूरी मरम्मत कार्य के चलते कल जो है रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो ये होगा प्लेन व्यर्थ के इन इलाकों में रुई कनाल बैटर्स्ट कारिकाल टर्टल और आई डोरे। इसके बाद होगा कनाल डायोट के इलाकों में रुई अल्फोंस रोलांडो डॉक्टर हेनरी पेरो और बैटरी। वहां पर 8:30 बजे सवेरे के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक कल रविवार 19 जुलाई 2026 को बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी।

ये होगा ओ ब्लड टेस्टे और सी डब्ल्यू ए पंपिंग स्टेशन रिजर्वर क्लिनिक के इन इलाकों में ये होगा सोमवार 20 जुलाई 2026 को सवेरे के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक।

और जारी रखते हैं ये कम्युनिके। मेबर्ग के इन इलाकों में रू सुफ्लेयर, रू दे कॉलोनी, रू मोरिस, रू बूबन, रू लाशो, रू अंगोर, रू शालों और आसपास के इलाकों में सोमवार 20 जुलाई 2026 को सवेरे के 8 बजे से लेकर सपहर के 4 बजे तक।

जहाँ फाइनली जो है बिज टोंबो के इलाके में ये है मौसलमा कोप्रियन मौसलमा कॉन्कॉर्ड मौसलमा ला कुशल रेसिडेंस फ्लोरिडा लैंड सेटलमेंट सेंट जोसेफ रोड और रुत कोचिया के कुछ इलाकों में ये होगा सवेरे 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक कल रविवार 19 जुलाई 2026 को। और जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे बिजली की सप्लाई फिर से जारी की जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

जहाँ आप काफी से स्वागत करते हैं, यहाँ पर आपके पसंद प्रोग्राम को जारी रखते हैं 4 बजे तक। हो चुका है 3:07। अगला जो गाना चल रहा है अभी, इसमें जाम जोड़ने वाले हैं आरती का और साथ में राजीव का।

0: की पसंद।
1: जब आप सभी को फिर से सलाम है, नमस्कार है, प्रणाम है फ्रॉम दिवीना, यहाँ पर रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद प्रोग्राम को जारी रखते हैं 4 बजे तक। आज स्वीट स्वीट सा जो मौसम सुहाना है, आशिकाना है आज, और ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? तो टी टाइम है, तो आप लोग अपना जो चाय, अपनी जो चाय है, एंजॉय कीजिएगा बिस्किट के साथ या कुछ भी, मगर गाने तो हैं ही यहाँ पर आप सबों के लिए। और आपके प्यारे प्यारे जो मैसेजेस आ रहे हैं हम अभी पढ़ने वाले हैं, और आपके कॉल्स इतने आ रहे हैं कि क्या कहें। और हमें पता है आप लोगों को हमारा जो प्रोग्राम है, हम भी जब आते हैं आपको अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है आपसे बात करके। सुबह सर्दे गाने की ओर इब्राहिम जी ऑफ पोर्टविस, और वे सुनना चाहते हैं दीवाना मूवी का गाना मुकेश साहब की आवाज़ में, तारों से प्यारे। बस इस गाने को एंजॉय कीजिएगा इब्राहिम जी, ये रहा आपके लिए।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जहाँ भाभी फिल्म का गाना है गायत्री जी, ये रहा आपके लिए, बहन अमृता के लिए, मेधा, गिरिशा, नेहा, क्षिति, दिव्या, साथ में है भाभी मीरा, सुधीर, कमलेश, सुधा, हमारे लिए भी थैंक यू गायत्री जी। एंजॉय कीजिए छुपा के मेरी आंखों में, रफी साहब, लता जी।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जहाँ सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे, दुलारी फिल्म का गाना था शिवरानी जी की मांग पर फ्रॉम गोंबा खास दोस्त के लिए। अब जो अगला गाना है ना, जीवन मृत्यु मूवी का गाना, थ्री ओडे से अनिता जी

ओर से बेटी अंजू के लिए दामाद है वेद, सचिन, पूजा, पोती है पोता है कियांश, पोती सिया और साथ में सभी परिवार के लिए रफी साहब की आवाज़, साथ में लता जी।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। जहां आज कुछ अलग ही गाना लेकर, कमाल का गाना, सदाबहार गाना फ्रॉम द मूवी चलिया, मुकेश साहब लता जी की आवाज में। ये है गांव गुप की हमारी जो श्यामा रघुनंदन जी है, ये आपके लिए भाईचर प्रकाश, भाभी नम्रता, केशव युधिश, सखियां हैं विश्वानीतु की, वीना रामफुल, नंदिनी उकड़ू।

जी हाँ, सदाबहार गीत एक और जोड़ते हैं रेहाना जी की पसंद पर, रेहाना जी आदाब, और फिल्म है कठपुतली। मलाफ ऑर्डर के लिए साथ में है सुरेखा और हमारे लिए थैंक यू।

0: आपकी पसंद।
1: जहाँ ये था हरीश जी के लिए, बुभाषण से है किसी खास के लिए, अनु के लिए, और उनको देवानंद साहब बहुत पसंद है, एवरग्रीन हीरो। सो बस ये था आपके लिए। तीन बजकर 3 मिनट हुए हैं और हमारा जो प्रोग्राम है खत्म होने वाला है। इतने लोगों के फ़ोन हम नहीं ले पा रहे, आप कहेंगे क्षमा, हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि इतने कॉल्स आ रहे हैं। और बाकी जो कुछ मैसेजेस हैं हमने पढ़ा और कुछ मैसेजेस को हम नहीं पढ़ पाएंगे, बस इनमें इस अगले गाने में नाम जोड़ते हैं। यहाँ पर है बंडू फैमिली ऑफ ट्रियोले, फिनिक्स से रहाना जी, अनीता जॉफी कॉन्फ्लाक, और प्रणाम भाई महन, और हाँ जी हम आपका प्रणाम भी स्वीकार करते हैं। तो इस गाने में आपका नाम जोड़ते हैं। Thank you.

वैसे कहते हैं जिंदगी में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना सीखिए, क्योंकि बड़ी खुशियां भी इन्हीं छोटे पलों से मिलकर बनती हैं।

बस समय कितनी तेजी से गुजरता है देखते ही देखते हमारी जो महफिल है अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका। अब संगीत का सिलसिला जो है अब हम जारी रखेंगे। कल 12 बजे से 3 बजे तक हमारी और आपकी मुलाकात होगी सुहाना सफर प्रोग्राम के दौरान, और कल होगा स्पेशल अमिताभ बच्चन साहब पर पिक्चराइज कुछ गाने 12 बजे से 2 बजे तक, और इसके बाद काजोल और शाहरुख खान पर पिक्चराइज कुछ गाने हम आपके लिए लेकर आएंगी। हमारे बाद आएंगी हमारी जो प्यारी सी जो अलका जी हैं लेकर साहित्य दर्पण, उनका साथ दीजिएगा ज़रूर। सो उम्मीद मिलेंगे, और आप सभी जो हैं अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए हैप्पी वीकेंड, लव यू ऑल, बाय बाय। ये गाना आपके लिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की। साहित्य दर्पण, नमस्कार श्रोताओं, आप तैयार होंगे कार्यक्रम के लिए। खूब प्यारे प्यारे गीत आपने देवीना जी के साथ सुने, तो चलिए अब इन गीतों के बाद कुछ बातें हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए। और साहित्य में आजकल क्या लिखा जा रहा है, किस तरह की चर्चाएं लेखक कर रहे हैं और कैसी कहानियां निकल कर आ रही हैं। कभी कभी आप टेलीविज़न पर देखते होंगे ना कि वहां पर अलिफ लैला और अलादीन का चिराग, जादू का चिराग, हर युग की अपनी अपनी कहानियां होती हैं। कभी लोग जब पढ़ते थे तो इसी तरह की कहानियां पढ़कर बड़े खुश होते थे, जिसमें राक्षस हों, परियां हों और कोई किसी के प्राण तोते में हों। लेकिन जब प्रेमचंद लिखने लगे तो उन्होंने ये सब तोते में प्राण की कहानियां और जादुई दरी वो सब उड़ा डाला और लोगों के मनों को लेकर उन्होंने कहानियां लिखनी शुरू की। और हर युग में चीज़ें बदलती रहीं। फिर उसके बाद आधुनिक युग में महिलाएं भी लिखने लगी। जब महिलाएं लिखने लगीं तो महिलाओं के दर्द वे बहुत अच्छी तरह से लिख पाती थीं। उसके बाद मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी आईं, बाल हृदय की भी कहानियाँ आईं और आज कुछ और तरह की कहानियाँ आ रही हैं जो समाज में तकलीफ़ें हैं, जैसे कहीं पर नशा है तो कहीं पर जहाँ बाल मजदूरी होती है वहाँ, और युद्ध की समस्या तो पूछिए ही मत, और ठगी और धोखाधड़ी भी सब तरफ है, इसी तरह से परिवारों में जो दूरियाँ बढ़ रही हैं। तो आज इस तरह की कहानियाँ खूब लिखी जा रही हैं। तो आज हम आपके अनुभव भी सुनेंगे, कुछ कहानियाँ आपसे बांटेंगे। आप भी अगर सुनाना चाहें, कोई लघु कथा सुना सकते हैं। तो श्रोताओं, चलते हैं इस गीत के बाद आपके साथ सफ़र पूरा करने।

श्रोताओं, साहित्य दर्पण में हम साहित्य की बात करते हैं। अब जब साहित्य की बात करें तो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, जिस कहानी का शीर्षक है ठग्गू लाल का ठेला। और ये कहानी हमें मिली है राजस्थान से, भारत का स्थान है राजस्थान, वहाँ से मिली है। चलिए इस कहानी की चर्चा करते हैं और फिर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। गांव में 5 साल बाद फिर चुनावी मेला लगा। हम भी सपरिवार मेला देखने गए। मेले में तरह तरह की दुकानें सजी थीं, लेकिन निगाह एक ठेले पर आकर ठहर गई। ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मुफ्त की मिठाई, नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था खाइए और पैसों को भूल जाइए, वह आपके प्रपौत्र के प्रपौत्र से लिए जाएंगे, मतलब पोते के पोते से। हमने इस लपलपाते ऑफर को हाथ से नहीं जाने दिया और 10-12 मिठाइयों की प्लेटें चटकर डाली। पेट ने जवाब दिया तो जैसे तैसे कर उसे मना लिया और 13वीं-14वीं प्लेट पर धावा बोल दिया। हम जैसे ही ठेले से जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, रुकिए भाई साहब, कहाँ चले, पैसे तो चुकाइए। हमने एक लंबी डकार लेते हुए कहा, अरे भैया कैसे पैसे, साफ साफ तो तुमने लिखा है कि आपके पैसे आपके प्रपौत्र के प्रपौत्र से लिए जाएंगे, तो आप मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हैं, तो मैं क्यों दूं। ठेले वाला दुकानदार ठनकते हुए बोला, आपके खाने के पैसे भला कौन मांग रहा है भाई जी, मैं तो आपके दादा के दादा ने जो कभी इस ठेले पर आकर 50-60 प्लेटें परिवार के साथ उड़ाई थी उसके पैसे मांग रहा हूँ। वो जो मिठाइयाँ उन्होंने खाई थी उस समय भी हमारे इस ठेले पर यही स्कीम चालू थी, कायदे से उनके पैसे चुकाइए और चलते बनिए। दुकानदार को ना चाहते हुए भी पैसे देने पड़े। दुकान पर लगा नेताजी ठग्गू लाल का पोस्टर हमको देखकर मानो मुस्कुरा रहा था। तो श्रोताओं, ये है आजकल के जीवन का दिमाग। हमने सोचा कि प्रपौत्र

0: पेमेंट करेंगे, लेकिन दुकानदार ने बता दिया कि नहीं, ये आप ही करेंगे, क्योंकि आपसे पहले आपके दादा पितामह भी खूब मिठाई खा चुके हैं।
1: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
0: तो श्रोताओं, आपने इस कहानी को सुना? ये कहानी हमारे जीवन की आज की कहानी है। जहाँ पर भी ठगी, जैसे कोई बैंक नया खुल जाता है, हम सब दौड़े हुए वहाँ सोचते हैं कि वाह, यहाँ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा, और कभी कभी उस चक्कर में फंस जाते हैं। तो ठग्गू लाल का ठेला कहानी आज के जीवन की कहानी को हमें सुनाती है। चलिए इस गीत को सुनते हैं, फिर आपके साथ जुड़ते हैं।

0: चलिए श्रोताओं, हमारे साथ एक हमारे फोन पर जुड़ गए हैं श्रोता, मिलते हैं उनसे। हेलो
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: हाँ नमस्कार, कैसे हैं भाई जी?
1: मैं ठीक हूँ बहन जी।
0: बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई दी।
1: हाँ हाँ, तो सभी को मौका दे देती है
0: जी। बहुत धन्यवाद, कहिए।
1: तो मैं हूँ, जैसे कि मैं हूँ धनेश्वर
0: जी, बिल्कुल
1: मैं सुनाऊंगा क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में।
0: अरे वाह, जरूर सुनाइए, चलिए।
1: जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ घन श्याम तुम्हारी गीता में।
0: बहुत सुंदर।

श्रुति जुग की अनुभवकारी है, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से घिर जाते तब गीता वचन हृदय लाते, कल्याण खजाना भरा हुआ श्री कृष्ण।

0: हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में।
1: बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। और सचमुच श्रोताओं, गीता की कहानी या महाभारत का भाग गीता मानो जिंदगी के गीत सुनाता है। वर्षों वर्षों बीत जाने के बाद भी, जिसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि कब गीता सुनाई गई, उसके पुख्ता कुरुक्षेत्र है, लेकिन आज भी सब उस आवाज़ को विज्ञान पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मानते हैं कि अगर कुछ सुनाया गया, गाया गया, तो कॉस्मोस में होना चाहिए। तो पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन वो कहानी तो दुनिया के जीवन की कहानी है और आज भी हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो।
2: हाँ बेटी।
1: नमस्ते नानी जी।
2: नमस्ते हमर लड़का, कैसे हाल चाल?
1: मैं ठीक हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए।
2: हाँ बेटी, जैसे जीवन जाता उसे जाता है।
1: जी जी बिल्कुल, सुनाइए।
2: देखिए देखिए, वो छोटा जो छोटा गीत गा दे, वह
1: पूर्वज
2: के,
1: जरूर
2: पूर्वज के।
1: जी जी,
2: अति में है, भोजपुरी में है।
1: कोई बात नहीं नानी जी।
2: अच्छा, पूर्व बनजिया से अलन पूर्व जवा पूर्व

0: सार भैलन हो सहरवा के बीच, कातू हूँ पूर्वज सहरवे के बिचवे, कातू हूँ पूर्वज सहरवे के बिचवे, चलिया वाओ झोपड़िया के बीच, चलिया वाओ झोपड़िया के बीच, कैसे मैं आईब झपड़िया के बिचवे, कैसे मैं आईब झपड़िया के बिचवे, मोर साथे पूर्वजवा बहुत, मोरे साथे हो पूर्वजवा बहुत, तोरो पूर्वजवा के चाताई बिछाइबो, तोरो पूर्वजवा के चाताई बिछाइबो, तोहारो के पीढ़ैया बैठाइब, तो चलिया वहो झोपड़िया के बीच, तोहार चलिया वहो तोरो पूर्वजवा के पनिया पर सबो, तोरे ब पूर्वजवन के पनिया परोसलो, तोहार के सरबतवा परोसब, तोहार के पर्वतवा सहो सरबतवा परोसब, तोहार के
1: बहुत सुंदर नानी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत। और सचमुच देखिए भारतीय संस्कृति इस गीत में झलकती है।

0: और अभी के आज के बच्चों को चटाई, पीढ़ा, ये सारे शब्द सिखाने पड़ते हैं, लेकिन भोजपुरी के उन गीतों में, हमारी जीवन पद्धति में जो शब्द प्रयोग होते हैं, वे आज भी जिंदा हैं। तो श्रोताओं, ये जो लोकगीत होते हैं ना, ये बहुत कुछ जिंदा रखते हैं। तो चलिए हम एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: जी, प्रणाम दीदी। मैं हूँ राधा, मिजिन से। हाँ,
0: हाँ राधा जी, कुछ सुनाइए। राधा गाएगी तो बांसुरी बजेगी ना।
1: वो तो जरूर है, मैं सुनाऊंगी अभी थोड़ा सा जो लाइन। लेकिन
0: अच्छा,
1: आप कुछ ठग पर बोल रहे थे ना,
0: हाँ,
1: ठग।
0: ठग्गू लाल का ठेला।
1: हाँ देखिए, एक बात है, हम
0: जी
1: तो कलयुग में जी रही हैं,
0: हाँ,
1: त्रेता सतयुग द्वापर
0: द्वापर
1: ये सब
0: निकल
1: चला
0: गया
1: गया।
0: जी।
1: हाँ, लेकिन रामायण में ये भी लिखा है ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।
0: हाँ,
1: ये
0: मोहि
1: तो,
0: कपट चल छिद्र न भावा।
1: हाँ, ये रामचरितमानस में भगवान
0: जी
1: भी खुद
0: जी
1: का है कि ठग तो मुझे
0: हाँ,
1: बिल्कुल पसंद नहीं,
0: निर्मल
1: मतलब
0: मन जन
1: जो,
0: सो मोहि भावा,
1: हाँ
0: मोहि
1: हाँ
0: कपट
1: बिल्कुल,
0: छल
1: आपने
0: छिद्र
1: जोड़
0: न
1: दिया।
0: भावा।
1: हाँ, जो सरल हैं, जो सीधे हैं, ऐसे व्यक्ति हमें पसंद है। और कहते हैं ना, क्षुद्र नदी भरी चली भरे ही तालाबा। जो क्षुद्र जो नदी होती है, जो जल आती है कहीं से भी आ जाती है, वो चली जाती है,
0: हाँ
1: तो हाँ, फिर वो मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता है उस
0: हाँ
1: जल
0: हाँ
1: का,
0: सही बात
1: लेकिन जो
0: है।
1: पवित्र जल होता है उसका तो। लेकिन क्या करें, हम अभी कलयुग में हैं, हम भी उसी में हैं, हम भी उसी नदी में
0: तो
1: हैं।
0: भी बच बच के चलना चाहिए ना।
1: हाँ, बच बच के चलना चाहिए, लेकिन जहां तक हो सके हमें
0: हाँ
1: इन सब चीजों से मतलब कि बचना ही
0: जी
1: चाहिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, क्योंकि हम तो देखिए, हम इतने पंडिता तो है नहीं,
0: हाँ
1: जितना हम पढ़ते हैं, जितने हमारे में गुण है, उसको
0: हाँ
1: हम जहां तक हो सके अपना सकते हैं।
0: हाँ बस
1: और
0: वो
1: मैं,
0: कहानी ये बताती है कि मुफ्त का माल मत ढूंढने जाओ, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर मुफ्त की तरफ बढ़ोगे तो धोखा खाओगे।
1: हाँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आसानी से, उनको कुछ मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: हाँ, वो
0: जी
1: कुछ मेहनत करना नहीं चाहते।
0: जी जी
1: तो मैं दो लाइन में केवल दो, एक छोटी सी भोजपुरी में सुनाऊंगी, क्योंकि वो मेरी दादी गाती थी, अब वो
0: अच्छा,
1: नहीं रही।
0: सुनाइए सुनाइए।

0: शंकर अवरु श्री राम, अवरु श्री राम हो।
1: बहुत सुंदर राधा जी, बहुत
0: हाँ,
1: सुंदर
0: वो
1: आपका।
0: बहुत लंबी है लेकिन मैं छोटा
1: हाँ
0: सा सुना
1: बस
0: रही हूँ।
1: बस, बहुत
0: और
1: सुंदर आपकी आवाज हमने सुनी,
0: हाँ
1: इतनी मधुर, और दादी का गीत सुना, और क्या चाहिए।
0: हाँ वो बहुत बहुत बहुत गीत। अभी हमारे गांव में है एक दो जो बहुत बुजुर्ग है, लेकिन अब वो
1: हाँ
0: इतने इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि उनको
1: अरे
0: भी याद नहीं आता है ये सब गाने,
1: राधा
0: लेकिन ये
1: जी, सब
0: बहुत
1: लिख
0: पुराने
1: लीजिए,
0: गाने
1: गीत
0: हैं।
1: लिख कर रखिए सब कुछ।
0: हाँ जरूर दीदी,
1: बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद,
0: शुभ,
1: बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद आपको, बहुत आभार, और शुभ संध्या, शुभ रात्रि।
1: बहुत धन्यवाद। चलिए श्रोताओं, राधा जी के बाद हम एक और श्रोता को पकड़ते हैं और देखते हैं वे क्या कहते हैं। हेलो,
0: हेलो, नमस्ते जी। ठीक
1: नमस्कार जी, कैसे हैं?
0: हो, आप कैसे हैं? फर्स्ट
1: फर्स्ट क्लास, सुनाइए आप कुछ।
0: क्लास। मैं पहचान नहीं,
1: हाँ जी,
0: आपने पहचान नहीं, मुझे भूल गया।
1: आपको भूलेंगे कैसे, आपके बिना हमारा कार्यक्रम क्या है, बताइए।
0: ओह थैंक यू
1: आपके
0: वेरी
1: साथ
0: मच, आपको भी थैंक
1: नमस्कार, कहिए, सुनाइए।
0: यू थैंक यू। मैं आपको मेरे मुझे को याद करने के लिए
1: जी,
0: कर देती हूँ
1: हाँ,
0: इसका।
1: क्या सुनाएंगी?
0: सुनाने जा रहे हैं यही कि बड़े
1: बुजुर्गों की?
0: बुजुर्गों
1: जी।
0: की कहानी याद किस्सा करनी, कहानी सभी को निभाना पड़ता है
1: जी,
0: अपने अपने,
1: अपने अपने वक्त से सब
0: कभी
1: निभाना
0: कुछ
1: पड़ता है।
0: कभी कभी उससे भी हाथ धोना पड़ता है,
1: हाँ
0: समझ गए।

0: उससे भी
1: जी
0: कभी
1: जी
0: आदि
1: काल और वक्त
0: होता
1: ऐसी चीज है जो सब छीन सकती है हमसे।
0: है। कृष्ण के युद्ध में कहते हैं कि आपको उसे हाथ
1: हाँ
0: धोना पड़ता है, तो भगवान के पास से सभी कुछ मिल जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उसको भगवान के हाथ में सौंप देना, वहां से उसका
1: हाँ
0: रास्ता खुल जाएगा।
1: जी जी
0: यही है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: जी।
0: ये बिल्कुल यही है, उसका
1: ओके
0: रास्ता
1: जी,
0: खुल
1: बहुत
0: जाएगा।
1: बहुत
0: और
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: ओके, शुभ संध्या। तो चलिए श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर, जिसे आप सुनेंगे और उसका भी आनंद लेंगे और उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कहानी का शीर्षक है उम्मीद। शाम के समय जब भी मैं समुद्र के किनारे टहलने जाता हूँ, तब वहाँ एक 7-8 साल का बालक अकेला बैठा देखता हूँ और वह रेत पर कुछ लिखता रहता है। कभी घर बनाता है, कभी लिखता है, कभी नाचने लगता है, तो कभी गीत गाता है। एक बार मैंने उससे पूछा, बेटे तुम रोज शाम को यहाँ क्या करते हो? मैं तो सैर करने आता हूँ, तुम्हारा यहाँ घर है कि क्या है? वह कहता है, मैं खेल रहा हूँ। अच्छा, तुम खेल रहे हो? तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? मैंने उससे पूछा। नहीं है। तो फिर अकेले कैसे खेलते हो? अरे, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरा दोस्त, मेरा समुद्र मेरे साथ है, उसने भोलेपन से जवाब दिया। समुद्र तुम्हारा दोस्त? भला ये कैसे हो सकता है? मैंने समुद्र को अपना दोस्त बना लिया है और जब भी खेलने का मन करता है मैं इसके पास चला आता हूँ। लेकिन तुम समुद्र के साथ खेलते कैसे हो? मैंने पूछा उससे। उसने मेरी तरफ मुंह किया और जवाब दिया, मैं यहाँ रेत पर कभी अपना नाम तो कभी इसका नाम लिख देता हूँ, तो कभी घर बना देता हूँ। तब समुद्र उन्हें लहरों से मिटाकर जीत जाता है। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा लिखा और बनाया घर समुद्र नहीं मिटा पाएगा, तब मेरी जीत होगी। ये मेरा सपना है। इसी उम्मीद के साथ वह फिर रेत का घर बनाने में लग गया। तो श्रोताओं, ये कहानी भारत इंदौर से भेजी है। उम्मीद देखिए कितनी बड़ी चीज़ है उस बालक के भीतर, कि मैं हर रोज़ बनाता हूँ, मतलब एक सपना बुन रहा है वो भविष्य का। चाहे जीवन में कितनी लहरें आ जाएं, कितनी परेशानियाँ हो जाएं, लेकिन व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सपने लेकर आगे चलना और प्रयास करना, तो सचमुच जीत होती ही है। तो चलिए श्रोताओं, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, हम उनको सुनते हैं वे क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
0: बहन नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कैसी हैं बहन जी?
0: हाँ ठीक ही हूँ, ठीक ही हूँ। अच्छा
1: चलिए,
0: है कि आप भी एकदम
1: आज तो
0: ठीक
1: अच्छी
0: ठाक।
1: धूप भी निकल आई है।
0: हाँ, लेकिन नहीं बहन, दोपहर में थोड़ा बदली बदली सी है
1: हो
0: धूप,
1: गई।
0: तो सुबह में बहुत धूप थी, कड़ी धूप, लेकिन
1: अच्छा,
0: अभी
1: तो
0: निकल
1: अपने
0: गई। जी
1: स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ये
0: जरूर।
1: बदलता मौसम थोड़ा खतरनाक होता है।
0: हाँ, तो आप जो लघु कहानी, लघु कथा और
1: जी
0: जो प्रसंग उठाया है, मतलब
1: जी
0: प्रेरक प्रसंग पर बातें हो रही
1: हाँ
0: है, तो
1: हाँ
0: मैं भी, अभी आपने तूफान की बात की ना,
1: हाँ
0: तो तूफान ही से संबंधित मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाना चाहती
1: जरूर
0: हूँ।
1: जरूर
0: उनका शीर्षक है तूफान में आराम।
1: हाँ
0: समस्या का मुकाबला धैर्य और चतुराई से करना चाहिए। समस्याओं का यदि पूर्व अनुमान लगाकर कार्य का क्रियान्वयन पहले से ही कर लिया जाए, तो वास्तविक समस्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है।
1: बहुत अच्छा
0: हाँ, तो किसी ऊंची पहाड़ी पर एक किसान का खेत था, जहाँ आंधी तूफान तथा तेज हवाएं अपेक्षाकृत ज्यादा ही आती थी। उसे एक मजदूर की जरूरत थी जो उसके खेत पर कार्य कर सके, परंतु इतनी ऊंचाई पर कार्य करना आसान नहीं था। अतः जो भी कोई आता, थोड़े ही दिन मजदूरी करता और चला जाता। भाग्य से उसे एक दुबला पतला सा मजदूर मिला, जो उसके यहाँ काम करने के लिए राजी हो गया।
1: अच्छा
0: परंतु उस मजदूर ने एक शर्त रख दी। मजदूर ने किसान से कहा, मेरी शर्त यह है कि जब भी तेज आंधी तूफान आएंगे ना,
1: जी
0: तो मैं बिल्कुल कार्य नहीं करूंगा। अगर आपको यह शर्त मंजूर हो

0: हाँ
1: तो मैं आपके यहाँ कार्य करने को तैयार हूँ।
0: ठीक
1: किसान ने सोचा और कोई मिल नहीं रहा है, जो मिला है उसी से काम चला लेती हूँ। इस प्रकार किसान ने उस मजदूर को काम पर रख लिया। मजदूर खेत पर दिन रात अपनी मेहनत से काम करने लगा। किसान मजदूर के कार्य से प्रसन्न हो गया और मजदूर अच्छा और मेहनती मिला है। एक रात्रि को जब किसान सो रहा था तो उसे बहुत तेज आंधी तूफान की आवाज सुनी और वो जाग गया। उसने
0: अच्छा
1: देखा कि चारों तरफ सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। हाँ, उसे अचानक उसे अपने खेत खलिहान का ध्यान आया और वो दौड़ कर अपने खेत पर उस मजदूर के पास गया।
0: हाँ
1: मजदूर उस समय गहरी नींद में सो रहा था। किसान ने मजदूर को आवाज देकर उठाया, परंतु वो नहीं उठा। तब किसान उसे जोर से झकझोरा। इस पर मजदूर उठ गया। किसान ने मजदूर से कहा, इतना तेज तूफान आ रहा है और तुम आराम से सो रहे हो? जल्दी जाओ, अपने धान को अच्छे से बांध कर गोदाम में रख दो तथा मवेशियों को भी बाड़े में सुरक्षित बांध दो। किसान
0: जी
1: की बात सुनकर मजदूर ने अपनी शर्त दोहरा दी। मालिक, मैंने कहा था ना कि जब तेज आंधी तूफान आएंगे तब मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा। मैं अभी सो रहा हूँ, मुझे सोने दीजिए। मजदूर पुनः सो गया। किसान भागकर अपने खेत पर गया और वहां का दृश्य देखकर चौंक गया। अनाज पहले से ही बांध पर सुरक्षित ढंग से भंडार गृह में रखा जा चुका था।
0: अच्छा
1: मवेशी सुरक्षित बाड़े में बांधे जा चुके थे
0: वाह
1: तथा सारा सामान पहले से व्यवस्थित किया जा चुका था। यह देखकर किसान का मन खुशी से गदगद हो गया। दूसरे दिन किसान ने मजदूर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहा, मैं तो नाक ही परेशान हो रहा था, तुमने तो सारी व्यवस्थाएं पहले ही कर ली थी। तब मजदूर का उत्तर था, काल करे सो आज कर, आज
0: आज
1: करे
0: करे
1: सो
0: सो
1: अब,
0: अब पल
1: पल में
0: में
1: प्रलय
0: प्रलय
1: होएगी,
0: होएगी।
1: बहुरी करेगा कब।
0: बहुत सुंदर।
1: तो यही कहानी का सार था। सचमुच में हम
0: हाँ
1: पहले से तैयारी कर लेते नहीं करते हैं, और जब बाद में समस्याएं आती है तो हम दौड़ धूप करते हैं और नाहक में परेशानी में इधर
0: हाँ
1: उधर
0: जी जी
1: हम भागते रहते हैं। तो अगर पहले से हम सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे
0: हाँ
1: अपना सारा काम, तो हमें जब समस्या भी आएगी तो हमें कोई चिंता नहीं
0: इसे ही
1: होगी।
0: कहते हैं ना, जो नहीं समय पर करते पुअर मैनेजमेंट, लेकिन
1: जी
0: जहाँ मैनेजमेंट अच्छी होती है वो किचन हो, फ्रिज हो,
1: जी
0: घर हो, ऑफिस हो, मेज हो, सब कुछ जिसे वो भोजपुरी के ना लोड में रखो,
1: हाँ हाँ हाँ
0: बस
1: हाँ
0: वो वही
1: व्यवस्थित
0: व्यक्ति कर
1: ढंग से
0: पाता है।
1: रखेंगे
0: हाँ
1: सब कुछ, वो
0: नहीं तो
1: जानता है
0: सब
1: कि
0: तरफ
1: आंधी
0: बिखरा ही
1: तूफान का
0: बिखरा।
1: मौसम है, मतलब जैसे प्रिकॉशन के रूप में
0: बिल्कुल
1: बोलते हैं
0: बिल्कुल
1: कि
0: सही कह
1: वही
0: रही
1: तो
0: हैं।
1: तूफान का देश है बहन जी, तो हमें पहले से ही
0: हाँ
1: सब कुछ व्यवस्थित
0: ध्यान
1: करनी
0: रखना
1: पड़े कि
0: पड़ता
1: अब
0: है।
1: हम सोचेंगे जब तूफान आएगा तो देखा जाएगा, तब तो
0: हाँ
1: गड़बड़ी ही हो जाएगी
0: बिल्कुल ठीक।
1: ना,
0: बहुत सुंदर
1: तो क्या
0: कहानी आपने
1: करेंगे।
0: सुनाई,
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी
1: बहुत
0: के
1: धन्यवाद
0: लिए।
1: अलका बहन, बहुत
0: ओके
1: बहुत
0: जी ओके
1: धन्यवाद।
0: जी। श्रोताओं, बीना बहन ने बहुत सुंदर कहानी सुनाई। सचमुच जो लोग अपना पहले से प्रबंध करके नहीं रखते वहाँ पर दिक्कतें आती ही हैं। तो चलते हैं, एक गीत का आनंद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
2: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत।

0: तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सुनते हैं आपको, आप क्या हमें कहना चाहते हैं, देखते हैं। हेलो,
1: शुभ नमस्कार अलका बहन।
0: नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं?
1: इस छोटी सी दुनिया में बहन जी,
0: ईश्वर हम एक बिंदु की तरह हैं,
1: परवाह करते हैं
0: जी।
1: अच्छा बहन जी, सहयोगी को भी सादर सुप्रेम नमस्ते।
0: बहुत धन्यवाद आपका, सहयोगी को भी आप नमस्ते देते हैं, वे लोग भी आपको नमस्ते देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: बहन जी, बहुत खुशी से आया हूँ आपको, मैंने सुना कहानियों पे और आपने ऐसा शब्द लड़ाई जैसे तूफान का प्रयोग किया
0: जी।
1: तो मुझे स्वामी शिवानंद जी महाराज का एक हास्य पूर्ण कहानी याद आई।
0: जरूर सुनाइए, थोड़ा हम भी हंस लें।
1: हंसेंगे आप खूब, सहयोगी भी हंसेंगे।
0: क्या बात है, सुनाइए।
1: देखिए बहन जी, ये कुछ वानर जो है, लगभग 6 की संख्या में,
0: अच्छा,
1: एक आम के पेड़ पर बैठे कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे।
0: अच्छा, वानर भी चिंतनशील हो गए।
1: वानर तो क्या बोलू, आप सुनेंगे भी। एक वानर ने कहा, अब मुझे सुनो।
0: अच्छा,
1: लोग कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति बंदर से हुई है।
0: अच्छा,
1: किसी भी बंदर ने कभी अपनी पत्नी से तलाक नहीं दिया है। तलाक नहीं दिया है। किसी भी बंदर ने कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखा है। किसी भी बंदर ने अपने बच्चों को त्याग कर संन्यास नहीं लिया है। कोई बंदर धूम्रपात नहीं करता,
0: आज तक नहीं किया,
1: जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता,
0: क्या बात
1: है, क्लब में नाश्ता नहीं है। किसी भी बंदर को सीधा रोग नहीं होता है। कोई भी बंदर 80 साल की उम्र में चौथी पत्नी से शादी नहीं करता। कोई भी बंदर एक दूसरे की जान बंदूक से नहीं ली, ना ही चाकू और एटम बम से आक्रमण किया।
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने कहा, बिल्कुल आश्वस्त रहे कि मनुष्य हमसे नहीं आया। तो उन्होंने वैज्ञानिकों को चुनौती दी, ये वानर लोग, और यह अंत में कहते हैं कि डार्विन की बयान जो है गलत है।
0: विकासवाद का सिद्धांत।
1: तो मैं आशा करते हूँ कि ये सभी बच्चों या बुजुर्गों को यह कहानी पसंद।
0: बहुत सुंदर भाई साहब, सचमुच ये कहानी हमें अपने क्लास में बच्चों को भी जरूर सुनाऊंगी मैं। बहुत सुंदर कहानी।
1: धन्यवाद, मैंने कभी सुनाया था।
0: बहुत धन्यवाद, लेकिन बहुत सुंदर कहानी।
1: धन्यवाद, शुभ संध्या।
0: ओके जी, नमस्कार। तो श्रोताओं, नवीन भाई ने बहुत सुंदर कहानी हमको सुनाई, तो चलिए हमारे साथ एक श्रोता और जुड़े हैं, तो उनको भी सुनते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार जी, कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ।
0: क्या सुनाएंगी आज
2: आप? क्या सुनने चाहते हैं, पेड़ की इच्छा या कछुआ और हंस की कहानी?
0: क्या बात है, इतनी चॉइस दे रही हैं
2: जी। पेड़ और कछुआ और हंस की कहानी,
0: जो आपका मन हो वो सुनाइए।
2: जी जी जी, तो मैं यही सुनाऊंगी।
0: चलिए सुनाइए।
2: कछुआ और हंस,
0: चलिए सुनाइए।
2: कछुआ हमेशा बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए उसे कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद नहीं है। वैसे यह कहा जाता है कि एक बार बृहस्पति देव ने कछुए को श्राप दिया था कि उसे हमेशा अपने घर को साथ लेकर चलना पड़ेगा।

0: चलते ही वह ऐसा ही हो, धीरे धीरे चलते हुए जहाँ भी थकता है वहीं पर सो जाता है।
1: अपने घर की छत अपने ऊपर लेके चलता है
0: जी। ऐसे में एक कछुए ने अपने दो दोस्तों यानी एक हंसों के जोड़े से कहा, तुम लोग मेरी दुनिया घूमने में मदद करो। हंसों ने जोड़े ने कहा, इसमें हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तो इस पर कछुए ने उन्हें अपनी योजना बताई। कछुए ने कहा कि वह एक बड़ी लकड़ी को बीच से अपने दांतों में फंसा लेगा, जिसके दोनों सिरों को एक एक हंस पकड़ लेगा, और फिर जब हंस उड़ेंगे तो कछुआ भी उनके साथ उड़ने लगेगा,
1: वो बीच में से पकड़ लेगा। जी
0: जी। तो इस पर हंसों ने कछुए को सावधान किया, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो आसमान से गिरकर मर जाओगे।
1: सही बात
0: तो कछुए
1: है।
0: कछुए ने इस बात को अच्छी तरह समझा या और तीनों ने योजना के अनुसार ही काम किया। फिर थोड़ी ही देर में ये तीनों आसमान की ऊंचाइयों में बादलों के बीच बड़े ही मजे से उड़ने लगे। बीच आसमान में उन्हें एक कौवा मिला। कौवे ने कछुए से कहा, तुम तो एक राजा की तरह लग रहे हो। उस पर कछुए ने यह कहना चाहा, हाँ वो तो मैं हूँ ही। परंतु जैसे ही उसने यह कहने के लिए अपना मुंह खोला, लकड़ी एक छूट गई और वह सीधा जमीन पर आ,
1: राजा जी नीचे ही गिर गए।
0: जी जी। उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए और वह मर गया।
1: क्या बात है,
0: मिलता है। और खतार हमेशा दुर्घटना को बुलावा देती है।
1: हाँ, और जो प्रण किया आपने कि बोलूंगा नहीं, मतलब जो लोग रुक नहीं सकते
0: जी,
1: बस जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं
0: जी।
1: बहुत सुंदर कहानी बहन जी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता को पकड़ते हैं। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, नमस्ते। कैसे हैं भाई साहब?
2: मैं ठीक हूँ।
1: आपके यहाँ तो खूब ठंड होगी।
2: उतना नहीं, आदत हो गई है।
1: हाँ, ये बात
2: तो है ही।
1: हाँ, लेकिन मजा है, उसका भी मजा है
2: जी। हमारा ठंड का मौसम है।
1: हाँ, सही बात है,
2: हमें आदत हो गई है।
1: सुनाइए।
2: मैं क्या कहूँ, आप बहुत खुशी हुई, आप कुछ दिनों के बाद आई है। तो मैंने सोचा कि दो बात मैं भी बोल दूँ।
1: अरे स्वागत है आपका।
2: कहानी की बात कहें तो हमें, मैं कहानी नहीं जानता,
1: जिंदगी कहानी है भाई साहब।
2: उम्मीद और भरोसा, ये मुझे याद है मधुसूदन भैया, आपने कहा उम्मीद पर।
1: जी,
2: दो बात कहूँगा। उम्मीद के साथ मैं सोचता हूँ
1: जी,
2: तो हिम्मत भी होनी चाहिए।
1: हाँ, कर्म की इच्छा होनी चाहिए और कर्म भी खुशी से करना चाहिए
2: जी। जब भरोसा करते हैं
1: तो
2: हिम्मत भी होनी चाहिए।
1: सही बात है।
2: और एक, जब श्रोता लोग कहानी बोल रहे हैं तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई, क्योंकि
1: तो सुनाइए सुनाइए।
2: तो यही सुनाऊंगा नहीं, भी याद है कि मधुसूदन भैया, मधुसूदन भैया की कहानी। जो मधुसूदन भैया एक लड़का था अकेला, हमेशा अकेला रास्ते में जा रहा था। तो कहता था कि अपनी माँ से कि माँ मुझे डर लगता है रास्ते में। तो उन्होंने, माँ ने कहा कि भरोसा रखो कि एक भाई है तुम्हारा मधुसूदन भैया, उसे पुकारना वो आएगा।
1: अच्छा, हाँ, कृष्ण का नाम है मधुसूदन
2: जी। तो यही, यहाँ तक मैं बोल देता हूँ आज के लिए।
1: लेकिन बहुत सुंदर है। अरे हमें बचपन में माँ कहती थी, अगर कोई भूत वूत लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाना। तो आज तक कोई भूत नहीं मिला। तो ये
2: बहुत अच्छा लगा। आज आप आई, आपकी इंतजार था।
1: बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ और इतनी मधुसूदन की कहानी सुनाई, हम भी उनको याद कर लेंगे।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए एक और श्रोता को पकड़ते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते कवियत्री जी, कैसी हैं?
3: मैं अच्छी हूँ, बस थोड़ी सी मौसम का असर।
1: बहुत गाना गाया, या इमली अचार खाया?
3: थोड़ा गाना भी गाया और इमली अचार।
1: आजकल जरा पीमा कॉफी और ये वो खट्टी चीजें लोग खूब मजे में खा रहे हैं। मिर्च लगा कर, इमली की चटनी डलवा कर। जी
3: तो समस्त श्रोताओं को भी सादर सम्मान करती हूँ। और बहन जी, जो आपने कार्यक्रम के शुरुआत में जो पहली लघु कथा सुनाई
1: जी,
3: वो बहुत बहुत अच्छी थी। तो उसी कथा को सुनकर मुझे अपने गुरुजी के सुनाए हुए एक छोटी सी लघु
1: मैंने सुनाई थी, ठग्गू लाल का ठेला।
3: तो मेरे गुरुजी ने सुनाया था एक लघु कथा,
1: उसका
3: शीर्षक है ईश्वर की रचना में कभी शंका मत कर।
1: अच्छा सुनाइए।
3: बात बहुत पहले की है, पहले के समय में तो अधिकतर लोग पैदल ही यात्रा करते थे
1: जी। अरे हम तो कहते हैं अब भी पैदल ही हो जाना चाहिए। जितनी सुविधा और टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, सब तीर्थ जगह पर लोग बहुत गंद मचाते हैं।
3: तो अब एक मुसाफिर था,
1: हाँ,
3: उसे कहीं जाना था
1: जी
3: और दूर जाना था।
1: हाँ,
3: तो वो चला जा रहा था, चला जा रहा था, चलते चलते उसे थकान महसूस हुई क्योंकि कड़ी धूप थी। तो उसने दूर एक अंगूर का पेड़ देखा।
1: अच्छा,
3: उसने सोचा चलो भाई पल भर के लिए थोड़ा बैठ जाते हैं। अब वो जाकर बैठ गया
1: जी।
3: अब शीतलपुर भैया बह रही थी, उसे नींद आ गई।
1: ठीक,
3: अब नींद आ गई तो एकाएक एक छोटा सा अंगूर आके उस पर गिर गया
1: जी।
3: वो गुस्सा हो गया।
1: अच्छा,
3: हे भगवान, तूने ये अंगूर का पेड़ क्यों बनाया?
1: अंगूर की लता होती है, पेड़ नहीं होता।
3: उसने कहा कि हाँ, अंगूर का फल क्यों बनाया, मेरी नींद टूट गई
1: जी।
3: तो उसे खैर जाने दो, वो फिर सो गया। थोड़ा थोड़ी ही उसे फिर से आई थी कि अचानक फिर से एक अंगूर इस बार सीधा उसके नाक पर आकर गिर गया।
1: अच्छा,
3: अब तो वो चिल्ला उठा। उसने कहा हे भगवान, ये अंगूर जो है ना, ये पेड़ पर क्यों, यानी कि पेड़ के ऊपर से क्यों आते हैं? काश इस पेड़ के ऊपर एक कुम्हारा होता, जैसे कुम्हारा नीचे धरती पर से होता है। अगर कुम्हारा होता तो कितना अच्छा होता, कम से कम अगर मैं यहाँ सोता तो ये अंगूर आकर मेरे नाक पर तो ना गिरता। अचानक एक आवाज आई, अरे मूर्ख जरा सोच, अगर कुम्हारा तेरे नाक पर आके गिरता तो तेरी क्या हसर होती।
1: बिल्कुल,
3: ये तो अंगूर था ना, छोटा सा।
1: तो तू बच गया, समझ ले, बच गया।
3: छोटा सा अंगूर है, अगर गिर गया नाक पर तो क्या हो गया?
1: हाँ,
3: अगर कुम्हारा होता तब तो तेरी नाक ही नहीं बचती।
1: बिल्कुल सही बात।
3: तब वो पछताया, उसने भगवान से क्षमा मांगी। हे भगवान, तेरी लीला न्यारी है,
1: सचमुच
3: करता है मानव जीवन के कल्याण एवं जीव जंतु की।
1: बिल्कुल,
3: ये ही करता है।
1: बहुत सुंदर आशा जी, बहुत सुंदर।
3: ईश्वर की रचना में कभी शंका मत करो।
1: बहुत सुंदर और बहुत धन्यवाद। चलिए चलते चलते एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो।
4: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्कार जी, कहिए कैसे हैं?
4: मैं विष्णुदेव
1: जी। विष्णुदेव जी बोलिए।
4: आवाज को भी एक बार पकड़ लो।
1: पकड़ लिया, मुझे लगता है आपके यहाँ रेडियो सेट ऑन है।
4: चीन और भारत की लड़ाई चल रही थी।
1: अच्छा,
4: तो वहाँ पर चलते चलते बरसात होने लगी और बादल गरजने लगा।
1: अच्छा,
4: बिजली चमकने लगी। तो सभी लोग जाकर एक कुटिया में घुस कर रहने लगे वहाँ पर कांग्रेस।
1: अच्छा,
4: तो जो कैप्टन है चीफ कहा कि देखो एक व्यक्ति किसी को जाना है।
1: हाँ,
4: उतना भी रो रहा है।
1: हाँ,
4: तो सोचा कि देखिए एक एक करके हम एक वृक्ष में बांधेंगे तुम लोगों को।
1: अच्छा,
4: तो एक एक करके पेड़ में थोड़ा दूरी पर एक एक को बांध कर फिर आया। नहीं, ऐसे करते करते अंतिम एक व्यक्ति रह गया।
1: अच्छा,
4: तो उसको वो तो नहीं जाना चाहते, क्योंकि मरना है उनको।
1: हाँ हाँ।
4: एक को तो मरना होगा।
1: जी जी।
4: रोने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन सभी लोगों ने उसे पकड़ कर खींच खांच कर जाकर उसे पेड़ में बांध दिया।
1: ओके।
4: तो वो जो बहुत चिल्लाने लगा था, अंत में क्या हुआ, जब बादल गरजा और बिजली चमकी, एक बम आकर उसी घर पर गिर गया।
1: अच्छा।
4: सभी लोग चले गए, वो अकेला बेचारा बच गया। एक छोटी सी कहानी है।
1: बहुत धन्यवाद। किस्मत के रेले मेले हैं ये, कौन बचेगा कौन जाएगा ये तो ईश्वर ही निर्णय करता है। सो बहुत
4: सोचते हैं, हाँ
1: कुछ और हो जाता है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और हम चाहेंगे आगे भी सुंदर सुंदर चीजें हमें आप सुनाते रहिएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ विष्णु जी जुड़े। और श्रोताओं, आपने बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियां हमें सुनाई। जिंदगी एक कहानी ही तो है ना श्रोताओं। मैं और आप अगर अभी बैठ जाएं एक घंटा, हम अगर अपनी ही बातें करने लग जाएं तो कहानी में कहानी, कहानी में कहानी निकलती ही चली जाएगी। इसीलिए कहानी को कथा, गल्प यही कहते हैं कि बस गाल से बोलते जाओ। अभी मैं सुना सकती हूँ सुबह से कैसे हुआ क्या हुआ। आपके पास भी कितनी कहानियाँ होंगी, कभी दुख की होती है तो कभी सुख की होती है, और हम सब मिलकर अपने उस सुख दुख को बांटते हैं, उसी से ही कहानियाँ जन्म लेती हैं। दादी नानी की कहानियाँ जो इतनी प्रसिद्ध हैं, उन्हीं कहानियों में लोकोक्तियाँ, मुहावरे भी बनते जाते हैं। अब कोई व्यक्ति बहुत उछलता है लेकिन अंदर कोई गुण नहीं, तो एकदम से नानी ने कहा, अधजल गगरी छलकत जाए। भाई जिस गगर में, गागर में पानी आधा होता है वो छलकती है, अगर गागर पूरी होती है तो औरत चलती है कुएं से पानी लेके, एक बूंद पानी नहीं टपकता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए। अब किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ की वैल्यू नहीं पता, तो नानी ने, दादी ने कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि बंदर अदरक खाता ही नहीं है, लेकिन अदरक इतनी वैल्यूएबल चीज़ है कि अभी खांसी हो, बुखार हो, थोड़ा गला खराब हो, अदरक को कितने रूपों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक लोकोक्ति बन गई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब ये बच्चे वो जानेंगे जो ये समझेंगे कि बंदर अदरक नहीं खाता है। तो जीवन में कहानियाँ में से ही जीवन आगे बढ़ता है, और इन कहानियों में से ही कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ मिल जाती हैं जो जीवन पर्यंत हमारे साथ चलती हैं। भाई दो नाव में पाँव रखोगे तो कब पार करोगे नदी, कितना स्पष्ट है कि दो दो लक्ष्य लेकर एक लक्ष्य साधो, उसे पूरा करो और आगे बढ़ो। तो श्रोताओं, सचमुच ये जो जिंदगी हमें कहानियाँ सुनाती है, उन कहानियों में से तथ्य निकल जाते हैं और जीवन भर वे हमारे काम आते हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ आपसे विदा लूँगी। रोशन जी पहुँच चुके हैं, तो चलिए इस गीत को सुनते हुए हमें अलविदा कहिए। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: एबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 5:03।
2: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी
1: जी हाँ, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम, और ये है रेडियो मॉरिशस AM2 की लहरों पर। रोशन आप लोगों का स्वागत कर रहा है। आज एक स्पेशल कार्यक्रम है, और क्या होने वाला है ये तो आप सभी को पता है।
2: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
1: और आज है शनिवार की शाम, मन भावन शाम है आप लोगों के लिए। खेल खिलाड़ी प्रोग्राम, बस करना है आप ही लोगों के नाम। और आज है स्पेशल वर्ल्ड कप क्विज कंपटीशन। जी हाँ, 48 टीम्स, 48 टीम्स, 104 मैचेस, कितने गोल स्कोर किए गए, कितने येलो एंड रेड कार्ड्स निकाले गए, कितने निर्णय वीडियो असिस्टेंट रेफरी पर हुआ, कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजंस तो कोई बहुत ही न्यायपूर्वक, कितने टीम्स एलिमिनेट हो गए, कितने क्वालिफाई हो गए नेक्स्ट राउंड के लिए, और बचा है केवल 2 टीम्स, और ये है वर्ल्ड कप 2026। परिश्रम और पराक्रम का मिक्स, फुटबॉल का अनोखा गेम, वर्ल्ड कप का नेम और फेम। और हमारे मध्य में आज ऐसे 2 महारथी हैं जो इस क्विज कंपटीशन में भाग लेने आए हैं लाइव एंड डायरेक्ट। वैसे तो 4 पार्टिसिपेंट्स आने वाले थे, लेकिन अंत में ऐन वक्त पर 2 पार्टिसिपेंट्स को एक अर्जेंट कमिटमेंट्स प्राप्त हो गए और वो यहाँ पर नहीं आ पाए, तो उन लोगों की ओर से हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए, ये जो 2 बच्चे हैं ये हमारे पास हैं यहाँ पर, और आप लोग उन लोगों से भली भांति परिचित हैं, तो हम परिचय करेंगे आप लोगों का उनसे। जो पहला कंटेस्टेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे। चलो, नमस्कार भाई साहब, आदाब।
3: जी आदाब रोशन भाई, मैं रेजा सैपिया से हैं।
1: रेजा जी फ्रॉम सैपिया, कैसे हैं भाई जी?
4: ठीक है, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ जी। और आप सैपिया से हैं, और आप कहाँ काम करते हैं बताइए तो?
4: हमेशा की तरफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स में काम करता हूँ।
1: मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स में? हाँ
4: जी हाँ।
1: ओके, और चलिए आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं कंपटीशन वर्ल्ड कप क्विज कंपटीशन 2026 में। और हम बढ़ते हैं अगले दोस्त की ओर, और आप हैं भाई
5: ऋषि वाशेगी से।
1: ऋषि भाई फ्रॉम वाशेगी, कैसे हैं भाई ऋषि जी?
5: ठीक है रोशन जी।
1: हाँ जी, यहाँ पर केवल अ ही अ है, रेजा जी, ऋषि जी और मैं रोशन। क्या कहने, हम कहते हैं अ क्यूब, हम जो 3 है ना, हम टेरिफिक ट्रियो हैं। तो चलिए, आज आप लोगों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं वर्ल्ड कप क्विज कंपटीशन में। आप तो इस कंपटीशन के आदि हो चुके हैं, चैंपियंस लीग के जो फाइनल था उन्होंने आपने भाग लिया था
4: जी,
1: और अन्य जो प्रीमियर लीग के जो कंपटीशन था उसमें भी आपने भाग लिया, तो अब है वर्ल्ड कप 2026। तो चलिए हम रेजा जी से पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि कौन सा फेवरेट टीम है आपका?
4: आपको जानती है
1: आपका टीम जो एलिमिनेट हो गया लेकिन आज खेल रहा है
4: जी,
1: ओनली फॉर थर्ड प्लेस, लेकिन कोई बात नहीं
4: जी।
1: अभी तो है, और एम्बापे गोल्डन बूट पा सकता है, क्यों नहीं, है ना? हाँ ये बात तो है, इस मैच के बदौलत वो और गोल स्कोर कर सकता है ना? तो चलिए, फ्रांस इज प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड फॉर द ब्रॉन्ज फाइनल टुनाइट। और हम बढ़ेंगे ऋषि भाई की ओर, और ऋषि भाई आप बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है?
6: शुरू से वो अर्जेंटीना
1: अर्जेंटीना आपकी टीम है, बिल्कुल, और आपकी टीम तो कल फाइनल खेल रही है,
6: महामुकाबला कल,
1: महामुकाबला अगेंस्ट स्पेन,
6: स्पेन।
1: बाद में आप दोनों से हम पूछेंगे कि क्या आपका प्रोग्नोस्टिक होगा।
6: ठीक है,
1: तो चलिए हम खेल की ओर बढ़ते हैं, और इस खेल में है 4 राउंड्स। हम वक्त रहते आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा राउंड है अभी। तो चलिए आपके लिए हम शुरू करते हैं इस धुन से, और क्योंकि आप लोग मॉरिशसीय हैं, आप लोग यू आर मॉरिशन और यू आर देसी बॉयज, हमेशा की तरह हम इसी गाने से शुरू करते हैं। Make some noise for the Desi Boys!

0: जी हाँ, देसी बॉयज यहाँ पर आ गए हैं, रेजा वर्सेस ऋषि, ऋषि वर्सेस रेजा। तो अब मुकाबला जम के होने वाला है, आज फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड और कल स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। और अभी के अभी वर्ल्ड कप का समा तो छा गया है, रेजा वर्सेस ऋषि। और हम शुरुआत करेंगे रेजा जी के साथ, आप दोनों तैयार हैं?
1: जी
0: ओके, तो चलिए हम रेजा जी से शुरू करेंगे। और आज का जो पहला राउंड है वो है प्लेयर्स राउंड, यानी जो वर्ल्ड कप में जो खिलाड़ी हैं उन पर हम प्रश्न पूछेंगे, द प्रोलिफिक प्लेयर्स। ओके, तो चलिए इसमें 6 प्रश्न हैं, हर एक को दो दो प्रश्न प्राप्त होंगे और किसी को अधिकार नहीं है कि अपने जो दोस्त का प्रश्न है उनको उनका जवाब देने के लिए। अगर ये प्रश्न रेजा जी के लिए हैं तो केवल रेजा जी के लिए, ऋषि भाई अगर आप जानेंगे भी तो आपको अधिकार नहीं है जवाब देने के
1: जी।
0: ओके, तो रेजा भाई आप हमें बताइए, मैं एक बार ये प्रश्न इंग्लिश में पढ़ूंगा और दूसरी बार मैं हिंदी में पढ़ूंगा, तब आप जवाब दीजिए। ओके, और आपके पास समय 10 सेकंड, और हर सही जवाब के लिए आप लोगों को प्राप्त होगा 10 अंक। ओके, तो चलिए रेजा भाई, इन विच ईयर करिस्मेटिक कैप्टन लुका मॉड्रिच लेड हिज टीम टू द फाइनल प्लेइंग अगेंस्ट फ्रांस। किस साल में जो करिस्मेटिक कैप्टन है लुका मॉड्रिच, उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया, और ये जो टीम थी वो फाइनल में फ्रांस के खिलाफ ये टीम खेली थी। बताइए हमें कौन सा साल है वो?
1: 2018।
0: Are you sure?
1: जी
0: You are sure, तो हम कहेंगे आपको रेजा भाई आपका जवाब जो है वो एकदम सही है और आपके लिए तालियों की गूंज। और ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था रेजा जी के लिए, दो 10 अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो अब हम बढ़ेंगे ऋषि भाई की ओर, और ऋषि भाई आप तैयार है?
1: जी
0: ओके, वेरी गुड। Lionel Messi is one of the only 2 players who have appeared in a World Cup final 3 times. Who is the other player? Lionel Messi जो है वो केवल दो खिलाड़ियों में से एक हैं जो तीन बार एक World Cup final में वो जा रहा है। Lionel Messi के अतिरिक्त और कौन सा वो खिलाड़ी है जो तीन final में World

0: कप में उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी है, बताइए हमें।
1: वो ब्राजीलियन प्लेयर काफू।
0: ब्राजीलियन प्लेयर काफू इज द राइट आंसर। क्या बात है ऋषि भाई और रेजा जी, आपने तो बहुत तैयारी के साथ आए हैं यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग जब ऐसे जवाब देते हैं तो मन गदगद हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग फुटबॉल बहुत ही पसंद करते हैं और फुटबॉल जो है यहाँ किंग ऑफ द स्पोर्ट्स है। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे और रेजा जी आपकी बारी है। ये प्रोग्राम है खेल खिलाड़ी और आप ही हैं रेजा जी की बारी। तो चलिए, विच फ्रेंच प्लेयर इज द ओनली वन टू बी सेंट ऑफ ड्यूरिंग ए फाइनल इन द वर्ल्ड कप एंड स्टिल हिज टीम फ्रांस वॉन द वर्ल्ड कप। कौन सा वो फ्रांसीसी खिलाड़ी है जो एकमात्र खिलाड़ी है जो रेड कार्ड प्राप्त करता है फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में, और फिर भी उसकी टीम जीतती है वो फाइनल और वो वर्ल्ड कप, कौन सा वो खिलाड़ी है?
2: मेरे देखने में देसाई है, मार्सेल देसाई।
0: मार्सेल देसाई, बहुत ही अच्छा रेजा भाई, मार्सेल देसाई। जिदान को भी प्राप्त हुआ था 2006 में
2: जी,
0: हाँ, वो हेडबट जैसे कहते हैं मातिराजी के खिलाफ, लेकिन फाइनल में था। जिदान भी एक फ्रांसीसी खिलाड़ी है, लेकिन क्या करें, वो फ्रांस की जीत नहीं हुई थी, लेकिन जब देसाई सेंट ऑफ हुआ था तो उनकी जीत हुई थी फ्रांस की। वेल कैलकुलेटेड एंड वेल प्लेड रेजा भाई। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न रहेगा ऋषि भाई के लिए। द लास्ट प्लेयर टू विन वर्ल्ड कप एज प्लेयर एंड आफ्टरवर्ड्स एज मैनेजर। ऐसे चार चार खिलाड़ी हैं जो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं उस टीम के, उस देश के वर्ल्ड कप में, और बाद में चलकर वो मैनेजर बने हैं और मैनेजर के रूप में उन्हें वर्ल्ड कप भी प्राप्त हुआ है। तो वो ऐसा कौन सा आखिरी खिलाड़ी है जो टीम में खेलता था और बाद में चलकर कोच बना और कोच के रूप में वो वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, कौन सा है वो खिलाड़ी, जरा हमें बताइए आप।
1: आखिरी खिलाड़ी,
0: आखिरी खिलाड़ी जो आखिरी, यानी आखिरी खिलाड़ी और मैनेजर, चार चार ऐसे हैं आपको।
1: जी, आखिरी खिलाड़ी शायद फ्रेंच वाला जीजे देशों।
0: जीजे देशों इज द राइट आंसर, सही जवाब। क्या बात है ऋषि भाई, आपने भी तो क्या कम नहीं खेला है। हाँ जी, 10 अंक रेजा भाई के लिए भी और ऋषि भाई के लिए भी। हम बढ़ते हैं रेजा जी का आखिरी प्रश्न इस राउंड में और आपका प्रश्न इस प्रकार है कि रोजे मिला इज द ओल्डेस्ट प्लेयर टू हैव स्कोर्ड इन ए वर्ल्ड कप। ही स्कोर्ड अगेंस्ट विच कंट्री। रोजे मिला जो है आज तक वो सबसे वयस्क, जैसे कहते हैं ओल्डेस्ट खिलाड़ी है जो एक वर्ल्ड कप में उन्होंने स्कोर किया है, उससे ज़्यादा बूढ़ा और कोई नहीं है जिसके उम्र इससे ज़्यादा हो। तो रोजे मिला जो है वो किस देश के खिलाफ उन्होंने स्कोर किया था और वो लगभग 43 साल के थे, 43 years old, बताइए हमें।
2: Quite a difficult question, Roshan bhai.
0: नहीं, लेकिन ये फाइनल है ना और आप लोग तो माहिर हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं। हाँ जी,
2: I'll go for Russia.
0: Russia in 1994. अरे वाह, क्या आप तो मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। आप कह रहे हैं कि ये कठिन है।
2: It was not easy.
0: Not so easy.
2: I know he played in 1990 and I think it was the last time in 1994.
0: और रोजे मिला वही एकमात्र सबसे वयस्क खिलाड़ी हैं जो सबसे उम्र सबसे ज्यादा जिन्होंने स्कोर किया था रशिया के खिलाफ, लेकिन रशिया ने कैमरून को पीटा था, पछाड़ा था उस मैच में 6-1 से। बिल्कुल सही जवाब दिया रेजा भाई ने और 10 अंक आपके खाते में। फिर अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस राउंड का और अंतिम प्रश्न ऋषि भाई के नाम। हु हैज स्कोर्ड द सेकंड फास्टेस्ट गोल इन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के दौरान जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट गोल था वो तो हाकान सुकूर ने स्कोर किया था टर्की का, लेकिन द सेकंड फास्टेस्ट गोल वो किसने स्कोर किया था, बताइए हमें आप भाई ऋषि।
1: वो रिकॉर्ड उसने एक साउथ अमेरिकन प्लेयर का था शायद, वो नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा।
0: कहिए।
1: वो वकला मासिक,
0: वकला मासिक, वो अमेरिकी

0: खिलाड़ी नहीं था, वो चेकोस्लोवाकिया का खिलाड़ी था,
1: ओके।
0: लेकिन आपका जवाब सही है। जी हाँ, वो बहुत ही बढ़िया, वो उनका रिकॉर्ड सालों तक कायम रहा, लेकिन जब हकानसुकूर 2002 में आया तो उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया मैच ऑफ द थर्ड प्लेस में। आज हम केवल दो मैचेस बचे हैं, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड और अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। कल हो सकता है कि द फास्टेस्ट गोल कल या आज हो, पता नहीं, हु नोज। तो चलिए, ऋषि भाई के लिए भी 10 अंक आपके खाते में आ गया है, और इसी के साथ समाप्त होता है आज का पहला राउंड। और पहले राउंड के उपरांत स्कोर हम देखेंगे, रेशा भाई को प्राप्त हुए हैं 30 पॉइंट्स, और ऋषि भाई को प्राप्त हुए हैं 30 पॉइंट्स इक्वली। क्या बात है, व्हाट एन इनक्रेडिबल मैच, क्या बात है, बहुत ही मजा होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है ये मैच। आगे आगे देखिए होता है क्या। और इसके बाद ये जो दो हीरो हैं यहाँ पर, बहुत ही क्या कहें, बहुत ही इत्मीनान से बैठे हैं जीत को ताकते हुए। तो चलिए, उनके लिए ये छोटा सा नजराना हो जाए, ये म्यूजिकल ब्रेक। इसके बाद हम दूसरे राउंड को शुरू करेंगे।

तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। दो दो हीरो है यहाँ पर, ऋषि भाई और रेजा भाई, और दोनों के पास फर्स्ट राउंड के उपरांत है 30-30 अंक। तो चलिए हम तुरंत शुरुआत करेंगे दूसरे राउंड से, और दूसरे राउंड में है टेरिफिक टीम्स, यानी देश या टीम कहें, जो वर्ल्ड कप में बड़े ही प्रचलित, बहुत ही तहलका मचाए उन्होंने। उनका नाम वर्ल्ड कप के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो चलिए दूसरा राउंड है टीम राउंड, और हमारे जो दो कलाकार हैं यहाँ पर वो तो

0: नखरे नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे की तरह हर प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो चलिए अब हम ये जो दूसरा राउंड है हम शुरुआत करेंगे ऋषि भाई के साथ अब। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो। कोई ऑब्जेक्शन है भाई जी? कोई ऑब्जेक्शन है
1: जी? नहीं।
0: ओके भाई रिजा जी।
2: इट्स ओके,
0: इट्स ओके, वेरी गुड, लेट्स प्लीज पोच इफ जैसे कहते हैं हम। ओके, तो चलिए अब ऋषि भाई आपके लिए ये प्रश्न है, विच टू टीम्स वर इन्वॉल्व्ड इन द हीट बैटल ऑफ लुसान वेयर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। वर्ल्ड कप के इतिहास में, विश्व कप के इतिहास में कौन से ये दो टीम्स हैं जो एक बैटल था, एक लड़ाई थी, द हीट बैटल ऑफ लुसान, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्स आज तक उस मैच में स्कोर किए गए, यानी 12 गोल उस मैच में। कौन सी दो टीम्स थी जो ये हीट बैटल ऑफ लुसान में भाग लिया था, बताइए हमें भाई ऋषि। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ये बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद हो सकता है स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रिया वर्सेस ऑस्ट्रिया।
0: स्विट्जरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रिया, ओ इट इज नॉट द रॉन्ग आंसर, इट्स द राइट आंसर। आप तो डर गए
1: जी।
0: बिल्कुल, और ऋषि भाई के पास है अभी 30 अंक और उस पर आप जोड़ दीजिए 10 अंक, क्योंकि आपका जवाब एकदम एकदम सही है। यही वो एकमात्र मैच है रेजा भाई ऋषि भाई जहां पर 12-12 गोल्स दागे गए और स्कोर क्या था, 7-5। और किसकी जीत हुई थी?
1: ऑस्ट्रिया
0: की जीत हुई थी। स्विट्जरलैंड मेजबान देश था 1954 में, लेकिन स्विट्जरलैंड हार गई थी इस मैच में ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं भाई रेजा जी की ओर, और आपका प्रश्न इस प्रकार है, विच सेंसेशनल टीम क्रिएटेड सरप्राइज एंड गॉट द ब्रॉन्ज मेडल इन 1998 वर्ल्ड कप। जो विश्व कप 1998 है उसमें कौन सी टीम ने क्या प्रदर्शन किया सरप्राइज के रूप में, सब लोग अचंभे में पड़ गए और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हो गया, हमें बताइए कौन सी वो टीम थी?
2: क्रोएशिया।
0: अरे बाप रे बाप, क्रोएशिया, बाप रे बाप, और आपका जवाब एकदम सही। बता सकते हैं कि क्रोएशिया किस टीम के खिलाफ हार गई थी ब्रॉन्ज मेडल के लिए? आप ही की टीम। हाँ जी, 1998 में फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा दिया था
2: टू गो टू द फाइनल,
0: टू द फाइनल, बिल्कुल। और सही जवाब रेजा भाई ने दिया, 10 अंक। तो हम बढ़ते हैं अब टीम राउंड में तीसरे प्रश्न की ओर, और ये रहेगा भाई ऋषि के लिए और आपके लिए, ये जो है, नेम द थ्री होस्ट कंट्रीज Who won the World Cup on their home soil? ऐसे तीन मेजबान देशों का नाम हमें बताइए जिनकी जीत हुई वर्ल्ड कप में अपने ही देश में, अपने ही मैदान पर। बताइए हमें कौन से वो तीन देश थे?
1: जो पहला है वो उरुग्वे,
0: उरुग्वे या
1: और शायद इंग्लैंड है, इंग्लैंड,
0: इंग्लैंड भी,
1: और फ्रांस।
0: यस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी और यूरुग्वे,
1: इटाली भी,
0: इटाली, हाँ इटाली 1934 में। बहुत ही बढ़िया, और आपने तो भी सही सही जवाब दिया और आपको मिले हैं 10 अंक। यहाँ पर मैं केवल तालियां बजा रहा हूँ, थक गया हूँ। ये मैं कभी नहीं कर पा रहा हूँ। केवल तालियां ही तालियां, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जो श्रोता, हमारे दोस्त यहाँ पर हैं बहुत ही तैयारी के साथ आए हैं, और यहाँ पर मैं टाइम में भी नहीं चला पा रहा हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं रेजा भाई की ओर, चौथा प्रश्न इस टीम में, इस राउंड में आपके लिए, विच टीम डिनाइड ब्राजील टू विन 4 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स, विच न्यू टीम येट has yet done in the World Cup history. यानी इसका प्रश्न ये, इस का मतलब ये है कि कौन सी टीम की जीत हो गई, ब्राज़ील लगातार जीतता जा रहा था, तो अगर वो जीत जाता

0: वो है इंग्लैंड है,
1: इंग्लैंड में बिल्कुल
0: 1966
1: बिल्कुल yeah, अगर yeah. इंग्लैंड की जीत नहीं होती तो ब्राजील की जीत हो जाती, तो उन्हें प्राप्त हो जाता चार कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जो आज तक किसी ने नहीं हासिल की, और फ्री कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप भी किसी ने हासिल नहीं किया आज तक। और रेजा जी को भी मिले हैं 10 अंक। तो चलिए बढ़ते हैं अब ऋषि भाई की ओर। टीम राउंड में आपका प्रश्न इस प्रकार है, विच टीम इज यूजुअली नोन एज द ब्लू शार्क्स। कौन सी टीम को हम निक नेम देते हैं द ब्लू शार्क्स? अगर हम अटलस लायंस कहेंगे तो वो मोरक्को की टीम है ना, तो ब्लू शार्क्स किस टीम के खिलाड़ी को हम कहते हैं, बताइए हमें।
2: ये आसान सा सवाल है, वो आपने शायद हफ्ते पूछा था।
1: हाँ,
2: वो इस सरप्राइज टीम है, वो है
1: काबो वेडी। बिल्कुल, एक पोर्चुगीज टेरिटोरी था पहले, इसीलिए ये जो नाम पोर्चुगीज रखा है काबो वेडे, नहीं तो काबवेद भी कहते हैं उसे। और आपका जवाब एकदम सही है भाई ऋषि जी, 100% सक्सेस इन दिस राउंड फॉर ऋषि भाई। अब देखते हैं रेसा भाई भी 100% ले पाता है या नहीं। तो चलिए अगला और अंतिम प्रश्न इस टीम राउंड में रेसा भाई के लिए और आपके लिए। कार्लोस वाल्डेरामा वॉज अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री, किस देश का खिलाड़ी था ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी जिसका नाम है कार्लोस वाल्डेरामा।
0: यस, आई रिमेम्बर हिम विथ हिज हेयर।
1: क्या बात है, और
0: कोलंबिया।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, झबरे बाल और वो ब्लॉन्ड। हाँ, और कार्लोस वाल्डेरामा बहुत ही बढ़िया प्लेयर था, लेकिन 1990 में उसका एक गोलकीपर था इग्विता। हाँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, कभी कॉर्नर निकालता था, कभी पेनाल्टी भी शूट करता था, कभी आकर गोल डालने की कोशिश करता था, लेकिन रोजे मिला से उसकी दाल नहीं गली। रोजे मिला ने उन्हें ड्रिबल करके गोल डाला तो कोलंबिया आउट, कैमरून इन फॉर द क्वार्टर फाइनल। और रेजा भाई को मिला 10 अंक। और इस बहुत ही रोचक दूसरे राउंड के बाद दोनों के पास 100% सफलता प्राप्त हुई दोनों को। और बढ़ते हैं स्कोर की ओर, तो ऋषि भाई को प्राप्त हुए हैं 60 points, 60 अंक, और 60 अंक पर विराजमान है एक बार फिर रेजा भाई, यानी दोनों को एग्जेको जैसे कहते हैं 60 points इन ऑल। तो क्या मैच है यार। अब हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और आपको इस गाने के साथ अभी इस गाने को आप से आप लाभ उठाइए। हम तुरंत बढ़ेंगे तीसरे राउंड की ओर, और ये जो गाना है आप ढूंढिए अपना काला चश्मा और डाल के इस गाने को सुनकर आपको नाचना पड़ेगा।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी
3: जी हाँ दोस्तों, भाई और बहनों, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आप लोगों का हम यहाँ पर एकदम शानदार स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में आज रेजा भाई और ऋषि भाई, दोनों के पास हैं 60-60 अंक। किसकी होगी जीत ये तो देखना अभी बाकी है। लगे हाथ आप लोगों को बता दें कि जीतने वाले को और रन अप को आज क्या प्राप्त होने वाला है। तो चलिए, जीतने वाले को प्राप्त होगा क्वालिटी डेको की तरफ से 1500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर, और उन्हें प्राप्त होगा एक वाउचर जैन लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट से भी, और एक वाउचर ग्रांड बाजार ऑफ इंडिया से भी उन्हें प्राप्त होगा, और एक गोल्ड टिकट फॉर अभिजीत कंसर्ट जो होने वाला है अगले सप्ताह यानी 25 जुलाई को। तो बहुत ही आकर्षक इनाम रखे गए हैं मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की ओर से, और जो रन अप होगा इन दोनों के बीच में उन्हें प्राप्त होगा 1000 गिफ्ट वाउचर फ्रॉम क्वालिटी देखो, और उन्हें भी प्राप्त होगा एक वाउचर जैन लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट से, और ग्रांड बाजार ऑफ इंडिया से एक और गिफ्ट वाउचर उन्हें प्राप्त होगा। तो ये जो पुरस्कार हैं ये एमबीसी की ओर से आप दोनों को प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप क्विज कंपटीशन है और कल है ग्रांड फिनाले बिटवीन स्पेन एंड अर्जेंटीना। तो अब हम बढ़ेंगे तीसरे राउंड की ओर।

और इस तीसरे राउंड का टाइटल का शीर्षक है मैचेस एंड रिकॉर्ड्स, मेमोरेबल मैचेस ऑफ द वर्ल्ड कप। और जो रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स हैं जो वर्ल्ड कप का, किसने रिकॉर्ड तोड़ा है, किसका रिकॉर्ड अभी तक कायम है, इन सब पर हम बातें करेंगे और प्रश्न भी पूछेंगे भाई रेजा जी से और भाई ऋषि जी से। तो चलिए अब हम मुड़ते हैं भाई रेजा जी की ओर, क्योंकि जो दूसरा राउंड था हमने शुरुआत की थी ऋषि भाई से, तो अब हम बढ़ेंगे भाई रेजा जी से और वो इस राउंड को शुरू करेंगे। ओके रेजा भाई, तो चलिए पहला प्रश्न आपके लिए इस प्रकार है, द ओनली प्लेयर हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट हैट्रिक इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप एंड मोर सो ही वॉज द ओनली सब्स्टिट्यूट टू स्कोर ए हैट्रिक, कौन सा वो एकमात्र खिलाड़ी है जो सबसे फास्टेस्ट हैट्रिक वर्ल्ड कप के इतिहास में उन्होंने स्कोर किया था, हैट्रिक यानी 3 गोल और केवल 7 मिनटों के अंदर, और तो और वो सब्स्टिट्यूट के रूप में इस मैच में आया था और आज तक सब्स्टिट्यूट के

रूप में किसी ने वर्ल्ड कप में हैट्रिक का स्कोर नहीं किया है, केवल वही खिलाड़ी कर पाया है और वही खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हैट्रिक स्कोर किया है, बताइए हमें। क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन क्या करें, ये तो लेकिन आप तो बाजीगर है, हार को जीत के जीतने वाले भी हमको बाजीगर कहते हैं।

0: So of course, Hungarian player. और आप इस प्रश्न को आपने सही सुना, सही पढ़ा और सही जवाब भी दिया. और यही मैच के दौरान 7-5 ऑस्ट्रिया वर्सेस स्विट्जरलैंड, इसी मैच के दौरान है या नहीं? इस मैच के दौरान नहीं, हंगरी वाला मैच के दौरान, लेकिन 1982 में था ये. बिल्कुल सही जवाब भाई रेजा जी ने दिया और उन्हें प्राप्त हो गया 10 अंक. वेरी गुड भाई रेजा जी, क्या जवाब दिया आपने.
1: ओके, इट वाज अगेंस्ट एल साल्वाडोर.
0: एल साल्वाडोर 10-1, 10-1 के खिला, हाँ स्कोर से. बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जो मार्जिन है 9 गोल्स. अभी तक किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, किसी मैच में भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा गया है. 11 गोल उस मैच में जो ऑस्ट्रिया वर्सेस स्विट्जरलैंड में, वहां पर 12 गोल था, लेकिन जो मार्जिन था वो केवल 2-7-5. लेकिन इस मार्जिन को अभी तक किसी ने नहीं तोड़ पाया है, 10-1 यानी 9 गोलों का मार्जिन. तो चलिए अब दूसरा प्रश्न हम बढ़ेंगे भाई ऋषि जी की ओर, और आपको ये प्रश्न सुनना पड़ेगा. इन विच वर्ल्ड कप जिस्ट फोंटेन हैड सेट अप ए रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग 13 गोल्स इन ए सिंगल टूर्नामेंट, ए रिकॉर्ड विच हैज नॉट येट बीन इक्वल्ड टिल नाउ. कौन सा जो वर्ल्ड कप है, किस साल में जिस्ट फोंटेन जो एक फ्रेंच खिलाड़ी था, उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है एक ही टूर्नामेंट में, एक ही वर्ल्ड कप में 13-13 गोल स्कोर करके, और आज तक ये रिकॉर्ड किसी ने बराबरी नहीं की है. मैं तो सोच रहा था कि मेसी या एम्बापे या हालैंड कर पाएगा, ये उन अभी तो केवल 8 ही गोल पर वो टिके हैं. पता नहीं एक ही मैच बचा है, 5-5 गोल कहाँ वो स्कोर कर पाएंगे. तो चलिए भाई ऋषि जी, अब आपकी बारी है, बताइए हमें.
2: जी सवाल जवाब दें, स्वीडन में 1958
0: में स्वीडन में ये वर्ल्ड कप लगा था, और सही जवाब आपने दिया है. बहुत ही अच्छा सही जवाब, और आपको भी मिले हैं 10 अंक. आपको बता दें कि यही 1958 में ब्राज़ील की पहली वर्ल्ड कप थी जो उन्होंने जीती थी, है ना, ब्राज़ील विद पेले, और पेले का फर्स्ट वर्ल्ड कप, और 17 साल के वो थे, और 17 साल में फाइनल भी में वो चले गए थे. और क्या करें, अब तक ये यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन ए फाइनल अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है ये. अब यमाल भी नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि वो 19 साल के हो गए हैं. तो चलिए आज आपका जवाब भी एकदम सही है भाई ऋषि जी. रेजा 10 पॉइंट्स एंड ऋषि जी 10 पॉइंट्स. रेजा भाई, आपका प्रश्न इस प्रकार है. हु स्कोर्ड द ओनली गोल फॉर ब्राज़ील अगेंस्ट जर्मनी इन द 2014 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वेयर ब्राज़ील हैड ए हिस्टोरिक लॉस इन द स्कोर ऑफ 1-7. ब्राज़ील 5 टाइम्स वर्ल्ड कप विनर की हार हो गई थी 7-1 के स्कोर से अपने ही मैदान में जर्मनी के खिलाफ, लेकिन जो एकमात्र गोल था ब्राज़ील के लिए 2014 के वर्ल्ड कप में, उस गोल को किसने स्कोर किया था भाई रेजा जी, बताइए हमें.
1: Question are becoming difficult and difficult.
0: क्यों नहीं होना चाहिए ना.
1: I don't think it's Nemo. I don't think it's Nemo. It must be someone else. I think it's Oscar.
0: Oscar. अगर नेमो नहीं तो उसका सही. बिल्कुल, क्योंकि नेमो की वो इंजूर्ड हो गया था, घायल हो गया था कोलंबिया के खिलाफ, क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल पाया था, और वो कह रहे थे कि अगर नेमो नहीं खेला तो ब्राज़ील की हार निश्चित है, तो वही हुआ. और रेजा जी की जीत हो गई, वहां जर्मनी की जीत, यहाँ रेजा जी की 10 पॉइंट से जीत हुई है अब तक. तो चलिए अब हम बढ़ेंगे भाई ऋषि जी की ओर, और आप हमें बताइए कि द ओल्डेस्ट प्लेयर टू अपीयर इन ए वर्ल्ड कप मैच, जो सबसे उम्र वाला जो खिलाड़ी है जो अब तक एक वर्ल्ड कप मैच में वो अपीयर कर चुका है, स्कोर नहीं बल्कि अपीयर, वो कौन है.
2: स्कोरर नहीं
0: जो अपीयर कर चुका है अब तक. स्कोरर तो मैंने बता दिया, रोजे मिला.
2: जी वो 2018 नाम थोड़ा कठिन है.
0: कठिन
2: इसाम, हाँ, एल हदारी शायद.
0: हाँ जी बिल्कुल. एसम एल हदारी जो इजिप्शियन खिलाड़ी था, है ना?
2: इजिप्शियन

0: कौन सा खिलाड़ी था
1: वो?
0: ना
1: इजिप्शियन,
0: बिल्कुल गोलकीपर था ना,
1: गोलकीपर ऑफ इजिप्ट,
0: बिल्कुल। और आपका जवाब भी एकदम एकदम सही है भाई ऋषि जी, और आप भी जीते हैं 10 अंक। तो चलिए अब हम रेजा भाई की ओर बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न इस मैचेस एंड रिकॉर्ड्स राउंड में, और आपके लिए प्रश्न इस प्रकार है भाई रेजा जी। द फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस इटली हैज बीन एब्सेंट फॉर 3 consecutive times, ये तो एक रिकॉर्ड हो गया, सभी लोग इटाली की का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तीसरी बार लगातार इटाली इस वर्ल्ड कप में नहीं शामिल हो पाया। किस टीम ने इटाली को एलिमिनेट किया मार्च 2026 में? प्लेऑफ मैच के दौरान वो टीम क्वालिफाई हो गई इस वर्ल्ड कप के लिए और इटाली हार गई, बताइए। हाँ जी, क्या बात है, बोस्निया हर्जेगोविना इज द राइट आंसर भाई रेजा जी, और आपके पास और 10 अंक है, और हम बढ़ेंगे इस राउंड का अंतिम प्रश्न, मैचेस एंड रिकॉर्ड्स राउंड का अंतिम प्रश्न ऋषि भाई के नाम। द फर्स्ट पेनाल्टी शूटआउट इन ए फाइनल इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री बिटवीन विच टू कंट्रीज, कौन से दो देशों के बीच में जो वर्ल्ड कप इतिहास के जो फाइनल है उसमें पेनाल्टी शूटआउट पर निर्णय हो पाया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन सी दो टीम्स थी वो?
2: वो दो टीम है ब्राजील एंड इटाली इन यूएसए 1994।
0: यस ऑफ कोर्स, हाँ जी, अभी यूएसए मेक्सिको और कनाडा को होस्ट 2026, लेकिन पहली बार के लिए यूएसए ने आयोजित किया था वर्ल्ड कप इन 1994, जिसमें ब्राजील की जीत हुई थी इटली के खिलाफ, और उसमें बाजो ने क्या मिस किया था, हाँ, गेंद को ऊपर फेंका, यानी वो चिड़िया को मारना चाहता था और हार हो गए ब्राजील की, रोमारियो जीत गया और बाजो हार गया था। और इस प्रश्न पर भाई ऋषि को प्राप्त हुए हैं 10 अंक, यानी थर्ड राउंड के बाद स्कोर इस प्रकार है 90 points फॉर रेजा और 90 अंक लिए भाई ऋषि। अरे बाप रे बाप, आप लोग तो मुझे क्या करें, मेरा तो मुश्किल हो गया है जीना, क्योंकि किसको मैं वो पहला इनाम दूँ, किसको दूसरा इनाम, अब दोनों बहुत बड़े ही तगड़े खिलाड़ी हैं और थर्ड राउंड के बाद भी स्कोर बराबरी पर है, 90 points दोनों के पास, 90 अंक एक अंतिम निर्णायक राउंड रह गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी के लिए एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: जी हाँ, प्यारे प्यारे श्रोताओं, स्पेशल खेल खिलाड़ी प्रोग्राम क्विज कंपटीशन वर्ल्ड कप 2026 बिटवीन रेजा एंड ऋषि। दोनों के पास है 90 अंक और एक निर्णायक फाइनल राउंड, और इसमें 6 प्रश्न, दोनों को मिलेंगे 3-3 प्रश्न। देखेंगे किसकी होगी जीत। और जल्दी जल्दी हम बढ़ते हैं भाई ऋषि जी की ओर। रोनाल्डो इज द ओनली प्लेयर टू स्कोर इन ईच ऑफ द 6 वर्ल्ड कप्स।

0: he has played. Against which two teams has he scored in this World Cup? आप लोगों को बता दें कि ये जो अंतिम राउंड है ये आधारित है इस वर्ल्ड कप पर, यानी वर्ल्ड कप 2026 पर. शुरुआत से लेकर अब तक सब प्रश्न इस पर आधारित रहेंगे. तो चलिए बताइए हमें ऋषि भाई, रोनाल्डो वो एकमात्र खिलाड़ी हैं जो सभी छः वर्ल्ड कप में जिसमें उन्होंने खेला है उसमें स्कोर किया है, और इस वर्ल्ड कप में किन दो टीमों के बीच के विरुद्ध उन्होंने स्कोर किया था, बताइए हमें.
1: वो पहला टीम है उज़्बेकिस्तान.
0: हाँ,
1: और वो नॉकआउट स्टेजेस में शायद क्रोएशिया.
0: क्रोएशिया, और आपका जवाब एकदम सही है, और भाई ऋषि को मिले हैं 10 अंक. बढ़ते हम जल्दी जल्दी रेजा जी की ओर. Which team has managed to score a goal against Spain? Spain के विरुद्ध कौन सी टीम ने एक गोल स्कोर किया है, क्योंकि पूरे विश्व कप में जो 2026 में स्पेन ने केवल एक ही गोल उनके विरुद्ध स्कोर किया गया, और वो कौन सी टीम है, बताइए.
2: बेल्जियम
0: ही वो सही टीम, वो सही जवाब है. बहुत ही बढ़िया, हरीजा जी को भी मिले हैं 10 अंक. ऋषि भाई आपके लिए ये प्रश्न, Who is the second top scorer of this World Cup? World Cup 2026 का जो दूसरा टॉप स्कोरर है वो कौन है, बताइए हमें.
1: इस वर्ल्ड कप तो वो
0: हाँ,
1: एक मेसी है.
0: हाँ,
1: और दूसरा किलियान एम्बापे,
0: दोनों के पास बराबर
1: बराबर,
0: तो वो पहला है तब, तो दूसरा कौन है? तो उसके बाद आने वाला है
1: जूड बेलिंगहम.
0: जूड बेलिंगहम, अच्छा क्या करें, जूड बेलिंगहम और है, और एक
1: एर्लिंग हालैंड.
0: हाँ बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, और आपको मिले हैं 10 अंक. तो चलिए बढ़ते हैं अब रेजा भाई की ओर, और रेजा भाई के लिए ये प्रश्न है, द फर्स्ट रेड कार्ड वॉज गिवन टू विच प्लेयर इन दिस वर्ल्ड कप? भाई रेजा
2: Almirón, Miguel Almirón.
0: अरे वाह क्या बात है यार, यू आर द बेस्ट है. और सितोले को भी मिला था ना, सितोले को, अफ्रीकन खिलाड़ी है वो, साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी, मेक्सिको का. और आपको भी मिले हैं 10 अंक. तो चलिए बढ़ते हैं अब हम पांचवें प्रश्न की ओर, जो ऋषि भाई के लिए है. लियोनेल मेसी मिस्ड 2 पेनाल्टीज अगेंस्ट विच 2 टीम्स, बताइए हमें.
1: ये ऑस्ट्रिया पहला है.
0: ऑस्ट्रिया, ओके.
1: नॉकआउट में वो इजिप्ट.
0: अरे वाह क्या बात है, आपने सभी मैच बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा होगा
1: जी.
0: आप तो तीनों के तीनों जो प्रश्न हैं उनका सही जवाब आपने दिया है. तो चलिए हम बढ़ते हैं अब अंतिम प्रश्न इस कंपटीशन का, अगर रेजा भाई जानेगा तो एग्जेको हो जाएगा. हाउ मेनी मैचेस हैव बीन प्लेड इन ऑल ड्यूरिंग द ग्रुप स्टेज? ग्रुप स्टेज के दौरान जब 12 ग्रुप थे तो कुल मिलाकर कितने मैचेस खेले गए नॉकआउट राउंड से पहले, बताइए हमें. मैथमेटिकल क्वेश्चन.
2: 72,
0: 12 times 6, बिल्कुल. हर एक ग्रुप में 6-6 मैच हैं और 12 ग्रुप हैं तो 12 टाइम्स 6 हो जाता है 72. तो चलिए दोनों के पास है 120 points, पहली बार ये हुआ है. क्या बात है, एग्जेको है दोनों के बीच में 120 points. अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अन्य सवाल करेंगे दोनों के साथ, और दोनों को बताना पड़ेगा कि सही जवाब क्या हो सकता है. तो चलिए हम रेजा भाई से शुरू करते हैं ये. अब अगर ये प्रश्न आपको पता है तो हम ऋषि भाई से भी पूछेंगे. ओके भाई ऋषि जी, तो भाई रेजा जी हमें बताइए, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इस वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर कितने गोल्स अब तक स्कोर किए गए हैं? अब तक कितने गोल स्कोर किए गए हैं कुल मिलाकर? 295, 297, 299, 301.
2: Can you repeat the question?
0: अब तक यानी 102 matches अब तक खेले जा चुके हैं, है ना?
2: जी.
0: तो कुल मिलाकर कितने गोल्स स्कोर किए गए हैं टोटल पेनाल्टी शूटआउट को छोड़कर, अगर एक्स्ट्रा टाइम में भी, पहले मैच से लेकर अब तक कितने गोल स्कोर किए गए हैं? 297, 299, 301. 297? 297. Okay. हम बताएंगे अब भाई ऋषि जी, आप क्या कहते हैं इन चारों में से?
1: वो शायद ठीक होगा.
0: आप भी बताएं 297.
1: ओके.
0: अच्छा, तो आप दोनों के पास सही जवाब है. चलिए अब हम एक एक प्रश्न करेंगे दोनों के साथ. ओके, आप हमें बताइए बार रेजा जी, आपके पास 10 अंक, तो 5-5 अंक दोनों को प्राप्त हो गए हैं. 5 अंक के लिए भाई रेजा जी के लिए ये प्रश्न है, मोस्ट फाइनल्स, कौन सा जो टीम है जो मोस्ट फाइनल में गया है, यानी फाइनल में कौन सा एकमात्र देश है जो सबसे ज़्यादा वो फाइनल में प्रवेश किया है, चाहे उनकी जीत नहीं हुई है लेकिन वो फाइनल में गया है, कौन सी वो टीम है?
2: जर्मनी.
0: जर्मनी इज द राइट आंसर. 5 अंक आपको प्राप्त हो गए हैं. चलिए हम बढ़ते हैं अब भाई ऋषि जी की ओर. उस्मान देम्बेले इज द बालों दो, है ना
1: जी?
0: तो आप हमें बताइए कि उन्होंने एक हैट्रिक स्कोर किया था इस वर्ल्ड कप के दौरान किस देश के खिलाफ? हैट्रिक अगेंस्ट विच कंट्री?
1: वो हालैंड का टीम था.
0: नॉर्वे. नॉर्वे, बिल्कुल सही जवाब. नॉर्वे इज द राइट आंसर. क्या बात है, ये तो. तो चलिए यहाँ पर हो गया है 5:56 और मेरे पास और समय नहीं है. क्या करें, यानी आज किसी की जीत नहीं और आज किसी की हार नहीं. और दोनों की जीत हो गई. ऋषि भाई और रेजा भाई दोनों को प्राप्त हो रहे हैं 1500 रुपीज गिफ्ट वाउचर फ्रॉम होम क्वालिटी डेको, 1 गिफ्ट वाउचर फ्रॉम जेनिटल इंडिया, 1 गिफ्ट वाउचर फ्रॉम ग्रैंड बाजार ऑफ इंडिया और 1 कंसर्ट, 1 गोल्ड टिकट फॉर अभिजीत कंसर्ट जो होने वाला है 25 जुलाई को, यानी अगले शनिवार को. तो चलिए जल्दी जल्दी हम आपसे कहेंगे बहुत धन्यवाद भाई रेजा जी, बहुत धन्यवाद भाई ऋषि जी. एक अंतिम, बहुत कम समय रह गया है, एक 15 सेकंड तक आप कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और आपका फेवरेट कल के लिए.
2: Yeah, thank you very much, Rosan Bhai. It was very interesting. I will thank Rishi Bhai also. It was very, very interesting today. And I think the final will be 2-2 against Spain against Argentina. And I will go for Spain for the final.
0: Spain for the final. Okay, it's mine. चलिए हम बढ़ते हैं ऋषि भाई की ओर. 15 सेकंड आपके पास हैं.
1: I would like to thank the MBC team and you and Reza. And for the first semi third place, I will go 90 minutes draw and England winning on penalties. And the final will be 1-1 just like in 1994. And it will be decided on penalties.
0: Okay, किसकी जीत?
1: शायद वो
0: मेसी की.
1: अर्जेंटीना.
0: तो चलिए भाई रेजा और भाई ऋषि, आपको जितना मैं धन्यवाद करूंगा उतना ही कम होगा. जब जब आप आते हैं तो तहलका मचा के चले जाते हैं. बहुत अच्छा, आपने अपनी कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए. इस वर्ल्ड कप का समा को और आपने मेमोरेबल कर दिया, यादगार कर दिया. ऐसे हम आपसे कहेंगे धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि.

0: खेल खिलाड़ी वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 6 बजे हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आज की सुर्खियां। कैदियों का एक वायरल वीडियो हुआ है जिसमें वे सिगरेट जैसी वस्तुएं बनाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कथित तौर पर बोबासा जेल के भीतर मोबाइल फोन से निकाला गया, जबकि जेल में फोन और सिगरेट दोनों प्रतिबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अनिश्चितताओं के बीच व्यापार मंत्रालय ने प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के प्रभाव की समीक्षा की। कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, जबकि उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। मॉरिशस में स्तन कैंसर के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए फ्लक में चट्ठे ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन। शेख अलजीन तुसैन के नाम पर इस केंद्र में रोगियों को जांच, मार्गदर्शन और सहायता मिलेगी। विदेश में कनाडा और अमेरिका के मिनेसोटा जंगलों की आग का धुआं पूर्व और दक्षिण की ओर फैला, इससे शिकागो, मिडवेस्ट, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क प्रभावित। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। कुछ कैदियों को फिल्माया गया जब वे सिगरेट जैसी दिखने वाला कुछ बना रहे थे। एक मोबाइल फोन के जरिए बोबासा की जेल के दीवारों के पीछे ये दृश्य कैद किए गए। ऐसी वीडियो जो जल्द ही वायरल हो गई, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। सिगरेट का छोड़िए, मोबाइल फोन ही कैसे अंदर गया जबकि इनकी अनुमति ही नहीं है। जानिए इस रिपोर्ट में।
3: सोशल नेटवर्क पर ये दृश्य वायरल हो गए हैं। बोबासा कैदखाने के कई कैदियों को सिगरेट घुमाते देखा गया, तैयार करते देखा गया। इनमें से एक था रोडोल्फ जांजाक उर्फ गोदेरेक, जिसे मादक द्रव्य तस्करी के लिए 30 साल जेल की सजा हुई है। इसके सामने था प्रवेश कानू उर्फ पाचे, जिसे पहली बार के लिए 2023 में गिरफ्तार किया गया था, फिर दूसरी बार 2026 के फरवरी महीने में मादक द्रव्य के मामले को लेकर ही। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक वीडियो को पिछले 12 अप्रैल 2026 को फिल्माया गया था इसी तरह की एक सैमसंग A16 की मदद से। शुक्रवार को फोन बरामद हुआ। प्रिजन कमिश्नर राशिद अली बिकन ने कहा, शुक्रवार को ही फोन जब्त कर लिया गया, किसी ने इसे एक कूड़ेदान में फेंक दिया था। इस मोबाइल की जांच की गई, क्लिप दिखा। जहां तक दृश्य में पदार्थ पाए जाने का सवाल है, तो तंबाकू और एंटीबायोटिक्स का मिश्रण है, जिन्हें छोटे छोटे पेपर में मोड़ कर रखा गया था। कैदखाने अधिकारियों के अनुसार इस वीडियो का प्रसारण कैदियों के बीच इस तस्करी पर नियंत्रण के प्रभाव से संबंधित है।
4: La personne ou bien les personnes qui sont derrière cette place, je pourrais na, comment dire, le champ libre.
3: इस क्लिप में जो लोग हैं वो शायद दिखाना चाहते हैं कि वे मनमर्जी कर सकते हैं, आंगन में, कैदखाने में जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, यही दिखाना चाहते हैं। सिगरेट का व्यापार होता है, जानते हैं, एक सिगरेट का दाम 1000 रुपये में बेच रहे हैं। एक सवाल बना हुआ है, किस तरह ऐसी स्थिति

0: पेश आई बिना किसी तत्काल हस्तक्षेप के। सभी कैदखानों में सीसीटीवी कैमरा है, 24 घंटे सातों दिन, कुल 1,500 कैमरे हैं। इस क्लिप में देखेंगे तो पाएंगे कि वे अलग स्थान में गए जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है, टॉयलेट के पास। तलाशी और कंट्रोल के बावजूद तंबाकू का गैरकानूनी व्यापार जारी है कैदखानों में, जिनमें बुबासें भी शामिल है। इससे एक सप्ताह पहले ही एक गार्ड के साथ पूछताछ की गई थी। जब पुलिस कर्मी का मोबाइल देखा गया तो पाया गया कि जूस के जरिए उसे 40,000 रुपए मिले हैं, एक ही के लिए, और कई बार ऐसा हुआ है कई सिगरेट्स के लिए। बुबासन जेल में अभी कोई 953 कैदी हैं, 40 से अधिक कैदखाने एजेंट अलग अलग सेवाओं में संलग्न, अर्थात 25 कैदियों के लिए एक गार्ड। बहुत जल्द भर्ती किए गए 58 कर्मचारी सभी कैदखानों में कार्यरत होंगे ताकि कैदियों पर ज्यादा नियंत्रण हो।
1: मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव के बावजूद पेट्रोलियम निर्यातक देश में संगठन ओपेप ने वैश्विक तेल बाजार की संभावनाओं को लेकर अधिक सतर्क रुख अपनाया है। संगठन ने लगातार तीसरे महीने 2026 के लिए वैश्विक तेल मांग वृद्धि के अपने अनुमान को घटा दिया है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ने एक बार फिर से 2026 के लिए पेट्रोल की वैश्विक मांग की वृद्धि को कम ही आंका है। अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में ओपेक ने दैनिक तौर पर 7,80,000 पीपे की वृद्धि का अनुमान लगाया, जबकि इससे पहले 9,70,000 का अनुमान था। लगातार तीसरी बार कमी नोट की जा रही है। कारण यही मध्य पूर्व में निरंतर तनाव के परिणाम, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जल मार्ग के आसपास और साथ में दुनिया के कई देशों में भी आर्थिक वृद्धि में धीमापन नोट किया जा रहा है। इसके अलावा ओपेक ने वैश्विक मांग के दो प्रमुख इंजन यानी चीन और भारत की उपभोक्ता के लिए भी कमी का पूर्वानुमान किया है। इस परिप्रेक्ष्य के बावजूद संगठन ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने साल के पहले 3 महीनों के लिए मजबूती का सबूत दिया है, और कि अगर जियोपॉलिटिकल तनाव कम होता है और ऊर्जा मंडियां स्थिर होती है तो सुधार की संभावना है। पेट्रोल की वैश्विक मांग में बढ़ोतरी के पूर्वानुमान को लेकर 2027 के लिए अधिक आशावादी है। मंडियों में नजदीकी से इस पर नजर है, क्योंकि कई देशों के तेल के दाम और बाद में ईंधन के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र में मॉरिशस ने वैश्विक आवास संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। मंत्री शकील मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया, जहां न्यू अर्बन एजेंडा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का आंकलन किया गया। शकील मोहम्मद ने आवास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: अपने संबोधन में मॉरिशस ने कहा है कि क्वीटो में न्यू अर्बन एजेंडा को अपनाए जाने के 10 वर्ष बाद भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग झुग्गी बस्तियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहने को मजबूर हैं, जबकि लगभग 3 बिलियन लोगों के पास अब भी पर्याप्त और सुरक्षित आवास उपलब्ध नहीं है। मॉरिशस ने यह भी दोहराया है कि सम्मानजनक आवास का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिनमें संघर्ष और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित आबादी भी शामिल हैं। छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए न्यू अर्बन एजेंडा केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं, बल्कि अस्तित्व से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकल्प है। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है, साथ ही विस्थापित प्रत्येक परिवार के उस अधिकार का भी समर्थन करता है जिसके तहत वे अपने घर लौट सकें, अपना आशियाना फिर से बसा सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। इसी सोच के साथ मॉरिशस ने इंतजार नहीं किया, हमने अपनी राष्ट्रीय विकास रणनीति को लागू किया जो एक बाध्यकारी क्षेत्रीय दृष्टि पर आधारित है। ये हमारी तटीय सीमाओं की रक्षा करती है और आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच झूठे विकल्प को स्वीकार नहीं करती। हमने आवास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, क्योंकि जिस परिवार के सिर पर छत नहीं होती उसका सम्मान भी छीन जाता है, और जिस राष्ट्र का सम्मान नहीं बचता उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। एक छोटे द्वीपीय राष्ट्र के लिए लचीलापन केवल किसी नीतिगत दस्तावेज का एक अध्याय नहीं है, बल्कि वही तय करता है कि कोई गांव जीवित रहेगा या हमेशा के लिए मिट जाएगा।

0: पॉटरी से पेरिस तक, नैरोबी से न्यूयॉर्क तक, संघर्ष से तबाह शहरों से लेकर समुद्र के बढ़ते जलस्तर से खतरे में पड़े तटीय इलाकों तक, लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहाँ रह सकता हूँ और अपना जीवन फिर से कहाँ बसा सकता हूँ। हम सब की ओर से उन्हें केवल एक ही जवाब मिलना चाहिए, एक सुरक्षित घर। मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तीन प्रमुख अपीलें की हैं। पहली, स्पष्ट समय सीमा के साथ ठोस और प्रभावी प्रतिबद्धताएं अपनाई जाएं। दूसरी, छोटी द्वीपीय विकासशील देशों के लिए जलवायु और शहरी विकास से जुड़े वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जाए। और तीसरी, ये स्वीकार किया जाए कि आवास का संकट अब केवल कुछ देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़ी एक साझा चुनौती बन चुका है।
1: मॉरिशस में कई लोग भोजपुरी भाषा बोलते और समझते हैं। नई पीढ़ी हमारे पूर्वजों द्वारा लाई गई इस भाषा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज भोजपुरी भाषा में आयोजित कविता पठन प्रतियोगिता और कहानी सुनाने की प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में इस अवसर पर एक विशेष समारोह लगा।
0: ये बच्चे भोजपुरी भाषा के राजदूत हैं। अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इन्होंने ये साबित किया है कि मॉरिशस में इस भाषा का महत्व आज भी बरकरार है। उनके लिए भोजपुरी में कविता पाठ करना केवल एक स्कूली गतिविधि नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से सीधा जुड़ाव है। भोजपुरी को भाषा की तरह बोलना चाहिए ताकि हम इसे बोल सकेंगे। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी जहां मुझे समझ आया कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, मातृभाषा बोलना चाहिए। भोजपुरी मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पूर्वज ये भाषा बोलते थे और अब हम लोग बोल रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं अन्य भाषाओं के साथ साथ भोजपुरी भी बोल सकती हूँ। जहाँ अन्यों की तुलना में बच्चे नहीं बोल पाते, मैं हिंदी और भोजपुरी दोनों में बात और कार्य कर सकती हूँ। ऐसे समय में जब भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये प्रतियोगिता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। बच्चों के लिए आयोजित इस पहले संस्करण में कई वयस्कों ने भी इसमें भाग लेने की इच्छा जताई है, जो इस पहल के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है।
2: कोनो भाषा के जब लेख उकरा प्राचिक मैंने दलब ओकर में बोल चाल नहीं हुई तो कले कले वो भाषा समाप्त हो ले चल जाला। तो वो भाषा के बचाए खातिन भोजपुरी के मॉरिशस में बोले के प्रोत्साहित करे खातिन हमनी है प्रतियोगितावा के आयोजन कर ले रही जा। एक में दू गो श्रेणी रहल, एगो कविता पाठन और ये एगो खिस्सा कहानी सुनाए के। तो हमनी एकर में हयो चाहली सा कि भोजपुरी बड़ा आदमी लोग तो बोलबे करेला लेकिन एकर में लैका लोग भोजपुरी बताए वही खातिन है ये प्रतियोगिता। हमने खास करके बैठका के लैका लोग खातिन रख ले रही जा और ये बहुत खुशी की बात बा कि 5 बरिस से लेके 10-15 बरिस ले एकर में नौजवान लोग बड़ा आदमी लोग भी 26-27 बरिस के लोग भी एकर में भाग ले लन सा।
0: इस प्रतियोगिता के माध्यम से मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे भोजपुरी भाषा के संरक्षण और उसके महत्व को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है।
1: और कल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले रविवार की सुबह 1 बजे तीसरे स्थान के लिए मैच होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। मायामी के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। इसके बाद कल रात 11 बजे वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनल होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। इसका प्रसारण MBC 11 और MBC Play पर किया जाएगा। और विदेश की खबरों में, कनाडा और अमेरिका के मिनेसोटा जंगलों की आग का धुआं पूर्व और दक्षिण की ओर फैल रहा है। इससे शिकागो, मिडवेस्ट, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क तक हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ऐसी जगहों पर जहां पर वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टेडियम पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
3: कनाडा और अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के जंगलों में लगी आग का धुआं पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ रहा है।

0: जिससे शिकागो और मिडवेस्ट से लेकर फिलाडेल्फिया और पूर्व में न्यूयॉर्क शहर तक खतरनाक स्थितियां पैदा हुई।
1: देश के उत्तर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। कल सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी। बाद में देश के पश्चिम में रह रहकर बरसात हो सकती है। दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। हवा उत्तर की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम साहली इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:47 पर, सूर्योदय कल सवेरे 7:45 बजे।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग टेक्निकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। मुसलमान दिलिस विलनुआ मेबर्ग में 75 साल के 75 years old के जनाब अब्दुल मुनाफ शेख अली जो बाई मुनाफ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा कल दिन के 11:30 उनके मकान मुसलमान दिलिस विलनुआ मेबर्ग से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए विलनुआ की रहमान मस्जिद और फिर दफनाने के लिए पॉइंट भोक उसकी व्यादिखे और का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 11:30 AM काशीनाथ रोड पर स्टूड फ्लैक में 51 साल के 51 years old के श्री किशन बलरूप जो किशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 उनकी पत्नी बलरूप किरण काजल के मकान काशीनाथ रोड पोस्ट फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 12:30 PM। रेलवे रोड का चिमलितिया में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री विक्रम सिंह रामदिकुल जो रोशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:00 उनके मकान रेलवे रोड का चिमलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेदिन कौंदमास का किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: NBC Radio, 24 hours a day.

सीबी की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। सीबी की तरफ से एक विज्ञप्ति। एर्मिताज, मों सेलमेंट डोमा, मों सेलमेंट फारिदन, बेलरिव रोड, अनवरे कुबा रोड, तेरूज रोड, एर्मिताज और सेंट कॉम्पन रोड के आसपास के रहने वालों को भी सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 से लेकर शाम के 5:00 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। प्लेनवेयत, रुई कनाल बाथर्स्ट, कारिकल, टर्टल, आई डोरे और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 से लेकर दोपहर के 2:00 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। हाईलैंड्स, मोसलमा उमनिकेन और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 से लेकर दोपहर के 2:00 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। एक और विज्ञप्ति सुन लीजिए। काट्रोबोन और आसपास के रहने वालों को रॉयल रोड, बेल रोज, ड्यूकेन और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई को ही सुबह के 9:00 से लेकर दोपहर के 3:00 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। एवेन्यू विल्सन, बोसेजो, कुलविल, दुलाफाई, पुआव, लापेरूस और आसपास के रहने वालों को भी सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह के 8:00 और के बीच और दोपहर के 3:00 के बीच में मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सैपिया के रहने वालों को भी सूचित किया जाता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। पिची वेजे, बॉशेरी रोड, हिविया बापचिस, लेपुस रोड, स्कूल लेन, सैपियर विलाज, एग्ली सैपियर और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी सुबह के 8:30 से लेकर दोपहर के 3:00 के बीच। बोबासा के रहने वालों को और आसपास के रहने वालों को एवेन्यू डॉक्टर लेजियर, एवेन्यू कोदाबाकस, एवेन्यू राहुल फिलिप, एवेन्यू मोदाव, रेजिडेंस विल्मे, एनएचडीसी विल्मे, डॉक्टर रीड, एवेन्यू महादेव बिल्टू, एवेन्यू जुपेयर, एवेन्यू शातुनेफ और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह के 5:15 से लेकर रात्रि के 8:00 से लेकर दोपहर के 2:00 या फिर दोपहर के 2:45 से लेकर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। ड्रीम प्राइस बुबासें और आसपास के रहने वालों को भी सूचित किया जाता है कि 8:15 से लेकर दोपहर के 3:00 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। इस असुविधा के लिए सीबी क्षमा प्रार्थी हैं।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: नाडेस रोड हाइलैंड्स फिनिक्स के हाइलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर द्वारा रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 बजे यज्ञ का आयोजन किया गया है। लाफलोहा के श्री

0: सूर्य मंदिर पुरुषोत्तमा क्षेत्र द्वारा रात यात्रा निकाली जाएगी। स्थान है रविवार 19 जुलाई सुबह 9 बजे से रात के 7:30 बजे तक। श्री गयनाथ मंदिर बोनाकई, श्री शिव मंदिर लालमाची, श्री गजाधर मंदिर कैथ।
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

0: Assalamualaikum.
1: Kim to Mauritius?
2: Namaskar.
3: Shodharandariki hrudayapurvaka namaskaram.
4: Ungal anaivarukkum vanakkam.
5: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
6: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी श्रोतागण को अनीता का विनम्रता पूर्वक नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों से और आप आध्यात्मिक कार्यक्रम बजले प्रभु का नाम कार्यक्रम का आनंद ले पा रहे हैं। आइए श्रोताओं, एक भजन के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तगण, जो आपके मन को अशांत करे उसे विदा करना ही बुद्धिमानी है, चाहे कोई विचार हो अथवा कोई मोह भरा व्यक्ति, क्योंकि अशांत मन कभी सत्य के दर्शन नहीं कर पाता। असली सामर्थ्य वही है जहां मन व्यर्थ के बोझ से मुक्त हो। जो त्याग करना सीख गया उसने जीवन का मर्म समझ लिया। शांति बाहर नहीं, आपके भीतर के ठहराव में बसती है।

प्रियजन, अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की नियति और उसका समय अलग होता है। व्यक्ति की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ हो, तो वह फिर भी विनम्र बना रहे। जिस दिन आप स्वयं पर विश्वास करना सीख जाएंगे, उस दिन से आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, किंतु बीता हुआ समय तथा टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता।

भक्तजन, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कर्म कर रहे हैं किंतु उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। प्रयास तो आप बहुत उत्तम रूप से कर रहे हैं किंतु आभास होता है कि जैसे नियति साथ नहीं दे रही है। कभी कभी मार्ग लंबा होता है किंतु रुकना मत, क्योंकि बीज बोने के तुरंत बाद फूल नहीं खिलते हैं। समय लगेगा परंतु आपकी एक बूंद मेहनत का निश्चय होगा। बस आज की हार को अपनी कल की जीत का मार्ग बनाए।

श्रोताओं, बहुत ही सही कहा गया है कि बुराई का शोर चाहे कितना भी हो, किंतु अंत में जीत हमेशा शांत खरी सच्चाई की ही होती है। अतः अपनी सच्चाई पर हमेशा डटे रहना चाहिए। तो इन्हीं विचारों के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। श्रोताओं, आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार और शुभ

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो इश्क़ नमाज सिखा मुझको या रब, वो इश्क़ नमाज सिखा मुझको या रब, जिस नमाज में सिर्फ तू मिले मुझको, जिस नमाज में सिर्फ तू मिले मुझको। मौजूद सामईन, उम्मीद है आप बफजल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समाप्त फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आइए इस नशरियात का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत

फरमाइए, एक हदीस हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर रात को जब आराम फरमाने के लिए अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपने दोनों हाथों को मिला लेते, जिस तरह दुआ के वक्त दोनों हाथ मिलाए जाते हैं। फिर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ बिरब्बिन नास पढ़ते, फिर हाथों पर फूंकते और फिर जहाँ तक हो सकता अपने जिस्म मुबारक पर अपने दोनों हाथ फेरते। सर मुबारक और चेहरा मुबारक और जस्त अधर के सामने के हिस्से से शुरू फरमाते, उसके बाद बाकी जिस्म पर जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ जा सकते वहाँ तक फेरते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा करते। बहवाला सही बुखारी।

मोहतरम सामीन, रात के वक्त खामोशी तन्हाई में ख़ास तौर पर तहज्जुद के वक्त मांगी हुई कोई दुआ भी रद्द नहीं की जाती। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी और हमारे तमाम सुनने वालों की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
4: भोजपुरी तड़का।
5: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
4: भोजपुरी तड़का।
6: रात के 9:03 होगल बा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आप सब कोई के स्वागत बा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। आप सब कोई के साथ देवे खातिर रत्ना साथ जुड़गल हवन, तब बस साथ देते रहिए जा और लाजवाब मजेदार भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जो जे रोज रात के चले रहा 9 बजे से लेके 11 बजे ले 2 घंटा के हई लाजवाब मजेदार कार्यक्रम में आप सब कोई के स्वागत कर रहे हैं। और 402-8085 पर तोहर फोन कॉल्स और मिसाज विदा करे खातिन 5251-7005 पर तो हमने के कॉन्टैक्ट करे सकबा, मिसाज विदा करे सकबा और अपन पसंदीदा गीत के तुम मांग करे सकबा। और जे तोहर हियाँ बा कोनो जन्मदिन, कोनो शादी के अवसर और कोई खातिर तू बहुत प्यार से एगो गीत डेडिकेट करे खोजत हवा तो जरूर हमनी के जनैया। और लाजवाब आज के कार्यक्रम में रत्ना संगे रात के 11 बजे ले बहुत बेहतरीन गीत के संगे साथ ही साथ बेहतरीन चुटकुला तोहर खातिर खोज के आनल है। तो चला आज के कार्यक्रम शुरू करब जाएगो बहुत ही मजेदार धमाकेदार गीत के साथ किशोर खिमिया के आवाज में रखल आज के है पहला गीत।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: त चले के काहे के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो शुरू हो गल बा और 9:10 बहुते लाजवाब बहुते मजेदार कार्यक्रम जहाँ पर तू हमनी के साथ देवेला और तोहर पसंदीदा गीत चलावे के हम हईजा से पूरा पूरा कोशिश करीला। तो चला हईजा पर पंडित राज वर्मा जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन पे।

काफले से और उनकर सब बड़ुआ परिवार खातिन चलाओ अब जा है बहुत बेहतरीन गीत जे वो बहुत खुशी रहे लन सुने के। अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल अमर बीस के पास बा बंतार करेला तो चला चचा के बंतार कराबो अब जा और संगे संगे हैजा पर घोंघोप से चार गो बहिन सुनीता जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनकर बहिन कोंगोमा से विमला जी हमनी के हमेशा बहुत प्यार से साथ देवेलन। साथ ही साथ अमृता जी हवन घोंघोप से और वीना जी गुडलैंड बगल से हमनी के हमेशा सुनते रहेलन। तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिन मजेदार चचा के जालोगवा का बोलब। चचा कौन दिन चाची के का जनी कहा से दिमाग में कहा से चलावे बोले आज के बाद झगड़ा नहीं करी। तो चाची के बोले जाने ल हम तोहर से आज अब के बाद कबो तोहरा झगड़ा करे के लेता नहीं देव। तो चाची खीस में आके फेरों से गाल बजा के बोले हाँ हम तोहर लेता के आतान करब हमनी के नहीं चाहिला तोहर लेता वे तो हमनी के जब मन करी तोहर से झगड़ा करे के हम तो झगड़ा करते रह तोहर से आइए खातिर तोहर से शादी कर ले हाँ। अब का बोला बेचारा चाचा जब खोजे लंस झगड़ा नहीं करेगे तो चाची तो कहाँ जाने कहाँ से इतना वजह ढूंढे लंस हाई झगड़ा करे के।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चौचक कार्यक्रम और मजेदार गीत संगे है जब ढेर कोई हमनी के टेलीफोने करत हवन। बस अपन तार अपन तनी ले तो अतान करिए काहे के ढेर कोई हमनी के संगे खुशी रहे लन सब बतियाई के। तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जाओ और मजेदार गीत के संगे हाइजा पर अनीता लाल जी हमनी के साथ देवत हवन। और ये व्हाट्सएप पे हाई मेसाज विदा कर ले बा इतु परिवार गोगा परिवार नागेश्वर परिवार और लाल जी परिवार जी मोह डाल बैसे हमनी के हमेशा साथ देते रहे ला बहुत बहुत धन्यवाद। और रोशन सदा सिंह के आवाज में रखल वंदना हमार सोना आई गीत के ऊ मांग कले हवन तो जरूर चलाओ अब जा। और जैसे तू प्यार से सबको के बोले ना ता हमार सोना हमार बाबू चचा तो का जनी कैसे कैसे बतवा बोल देवेला का जनी कब सुधरी हो कौन दिन से जाना था वह चाची से झगड़ा करके दो तीन दिन से बतियात बतियात नहीं बा चाची संगे तो चाची की तो अब रंज लगे लगल काहे के चचा तो तनको नहीं बतियाता था चचा के जाके बोले हाँ हम दो दिन से तोहर से नहीं बतियात हैं। तो चचा बोले हाँ जानी ला तो बोला कुछ नहीं बोल बा। तो चचा इतना भावुक हो गल चचा बोले हमने के थैंक यू बोला का बोला चाची के थैंक यू बोला था

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का में और देखा रोशन सदा सिंह कैसे वंदना के सुगा सोना सब बोले लन सा। और हमार चचा एगो कबो प्यार से नहीं बतियाला और कबो कबो चाची भी उतना प्यार से बतियाई के कबो लेता नहीं देवेला चचा के हमेशा झगड़ा करते रहे। चला आगे कार्यक्रम के बढ़ावा जा रहा है जा पर अनीता जी फ्लिकॉन फ्लैग से जुड़ गल हवन और अगला गीत जन है साजन के देवल साड़ी है जन सुनीता ननको गईले हवन है गीत के वो मांग करत हवन उनकर सब परिवार खातिन उनकर दोस्त खातिन और MBC के टीम खातिन और जितना कोई रात के काम करत हवन जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन और है जा पर 9:25 हुआ था। चला है गीत गीतवा चलाओ अब जा और चचा कौन दिन जैसे जैसे बैठ के गांव के सब आदमी संगे अपन गांव के हाई हाई जब देखा तब ज्ञान बांटते रहेला। चचा कौन दिन बोले हाई दुनिया में कौनो बुड़बक प्रजाति है तो जाने ल कौन प्रजाति है तो मनोहर भैया बोले न भैया हम तो न जानी ला। बोले हाँ सबसे बुड़बक प्रजाति है मनुष्य इंसान लोग। बोले वो कैसे भैया। बोले हाँ तो देखा मनुष्य आदमी लोग बिजली बनैलक सच्चे बात है कि नहीं। बोले हाँ है तो सच्चे बात है मनुष्य बनैलक। बोले हाँ बिजली बना के अब बिल ही खुदे ही भरता बोलता तो बुड़बक नहीं बोलब तो कौन ची बोलब बो?

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:30 हो गल बा और बहुत मजेदार है जहाँ पर हमनी के श्रोता लोगन हमनी के साथ देवा थवान त बस इस पर करिया तनी तनी आगे बढ़ाओ अब जा बढ़िया बढ़िया गीत जन चली रात के 11 बजे ले तो हमनी के साथ देते रहिए जा और हैजा पर शांति जी ते अगूर से हमनी के साथ देवा थवान बहुत है प्यार से और दागोजिया के सब मराठी परिवार खातिन ओम खातिन ओम उनकर भगीना हवन अप्प दागोचा में हमेशा हमनी के साथ देवेलम अप्प दागोचा से और आज शांति जी बोले गिरीश रूपचंद के आवाज़ में रखल है अगला गीत तनी हमर खातिन बजा द है जिंदगी चार दिन के तनी झूमा नाचा गावा काहे के त्राक।

करब त कौन चीज लेके जइब हो। आउरी जैसन हमर चचा ह का बोलब, चचा हमनी के हमर चचा के जोन पड़ोसी है न मनोहर, कौन दिन ऐसन तेरा आस पे बैठल रहल, मुंह सड़ा के ऐसे मुंह लटका के बैठल रहल, त चचा हौजा से गुजरल। चचा बोले, का हाल बा मनोहर भैया, कैसे बोला था जब देखा तब तेरा आका में का होल, ऐसन मुंह लटका के कैसे बैठल हो, कौन ची होल। तब मनोहर भैया बोले, हाँ भैया बड़ी तरह आका में चल आल हाँ, एगो 5,000 रुपया के हमनी के जरूरत लगता। चचा तब फेरो से घूम के जाते जाते बोले, हाँ रहे दा तराका में रहिए, अच्छा बात, तनी तनी तराका करे के चाहिला जीवन में।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का आउरी ऐसन अंधार के रात में ला बुझी जला के बैठो हो नहीं पड़ी तो हरा उतना इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरे के पर अभी तक जितना ठंडा करे था का बोला गर्मा गर्म चाय या काफी पिया आउरी मजेदार कार्यक्रम सुनते सुनते चले आगे बढ़ब सा आउरी बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम संगे हैजा पर हमनी के साथ देवत हवन स्विट्जरलैंड से रंभा आउरी स्विट्जरलैंड के रंभा के बेटी जोन है मनीषा आज उनका जन्मदिन है। सुदेश बोईजू के आवाज में रखल है अगला गीत के ऊ मांग कर ले बा आउरी खुशी हवन है गीत सुने के पीती पीती छोकरी जनाना तुरे जाला तो चला तरह खुश करब जा है बढ़िया गीत संगे औरी मनीषा के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हमार टीम देने से और आशा करब जा कि आज के दिन आने वाला हर पल तोहर खातिन बहुत बहुत प्यार से नीमन से बीती तोहर माता पिता के आशीर्वाद तोहर पर नीमन से बनल रही और तू जीवन में हमेशा आगे प्रगति कर पा। तो चला हमार टीम देने से हाइये आशीर्वाद देव जा तोहरा और इस संगे मिल के सुनब जा है अगला गीत तोहर खातिन और है सुदेश बोईजू के आवाज़ में।

भोजपुरी दड़का कार्यक्रम लाजवाब मरेज मजेदार कार्यक्रम है जहाँ पर रोज बेल से संजय जी हमनी के संगीत जुड़ गल हवन और अगला गीत जो है विक्रम कोलाचन के आवाज में रखल धोती पोथी पगड़ी है गीत खासकर वीना जी खातिन श्वेता कृष्णा राधा और उनकर मामा हवन सुखविन और सब नेमचंद परिवार खातिन चलावब जा चला है ये गीत के साथ मजेदार कार्यक्रम और चचा जी हमर जितना भोला हवन का बोलब कबो कबो नये समझेला जब ले नई बतैब जब ले नई समझेब नये समझेला कौन चीज हो हम कौन दिन ओकर हियाँ एगो बिचारा दो दिन से भूखाल आदमी चल गल और लगल अपन दरवाजा खटखटावे तो चचा दरवाजा उघाड़ के देखा था कि एगो ऐसन फाटल लुगा में मारू लुगा में एगो भिखारी खड़ा हुआन तब लुग दरवाजा खोल के भिखारी के ताके के शुरू कर दिला तब बोला कौन ची होल तब भिखारी लगल रोवे जोर जोर से फूट फूट के रोवे शुरू कर दिलक तब जर रो के तनी तनी शांत पड़ल तो चाचा बोले हाँ अब बोल कौन ची होल बोले का बोले बाबूजी आज दो दिन से हम खाना नहीं खैले हई तो बोले अच्छा कोई बात नहीं जा दो दिन के बाद खा के फेरो से आइए अरे चचा दो दिन से खाए के नहीं मिलल भाव करा हवे से तो तोहर दरवाजा खटखटा हुआ था ना अब तू अकरा बोला था जा के खा के आओ

0: नाचे भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आगे जारी रखत है और हैजा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन चाची ललिता कुशल त्रियोले से बहुते प्यार से साथ देवत हवन और इस संगे हवन उनकर प्यारी बहिन सुदेवी। सुदेवी जी के भी प्यार से बहुत मिसाज विदा हैजा पर हो गल बातें और

सास विदा कर ले हवन अभी उनकरा भी मैसेज पड़ब जा और हई जा पर चाची ललिता बहिन सुदेवी देवीना ज्ञानी छोटी दादी प्रभावती भाई आत्माराम भाई हरीश सुखलाल मौसी उषा लोकाना और माला राम जावन खाती नगला गीत के मांग करत हवन लागी ना ही छूटे राम और हई जे हई जा पर उनकर प्यारी बहिन सुदेवी वाकवा से हमनी के संगे जुड़ गल हवन बोले बहुत एंजॉय करत हवन हई कार्यक्रम और ही बोले अगला गीत उनकर बहिन ललिता खातिन जे कुशल परिवार से हवन त्रियोले से मालेगा के राम रतन परिवार और खासकर वैभव वंश वीर वर्षा विमल और निया खातिन तो चला चलाओ अब जहा ये गीत उनकर सब परिवार खातिन और ये हंसते मुस्कुराते बस ऐसने साथ देते रहिए जा और चाचा हमनी के बोले जाने ल आई जोन आदमी लोग बोले लंस हमर बुढ़िया हमनी से बहुत प्यार करे लंस है सबसे बड़ा गलत फहमी है बोले का है चाचा ऐसे बोलत हो वो तो बोला था ना सच्चे के दिल से उनकर बुढ़िया ओकर बहुत प्यार करे लंस बोले हाँ है मनोहर जाने ला मनोहर हमनी के बोले हाँ ओकर बुढ़िया ओकर से बहुत प्यार करे लन तो हम बोली तो छोड़ दो अच्छा नहीं हो एगो खुशियाल परिवार संगे रही बोले हाँ झूठे है सब झूठे है सब दिखावा है जो आदमी तोहर से आके बोली ओकर बुढ़िया ओकर से बहुत प्यार करता तो एक के गो बात बोल दे बोल दे के चाहिला ओकरा बोली कौन बात बोले हाँ बुढ़िया प्यार करेला तोहरा एक दिन खा के हाथ धो के उही हाथ एक दिन तोहर गिदोवा से पोछिया तनी मुँह पोछिया तू जान जाइब तोहर बुढ़िया तोहर से कितना प्यार करता का हो चाचा का सिखावत हवा है दुनिया के है सब जो राजो सुनत हवन है सब नौजवान के का सिखावत हवा

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी
2: तड़का।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: भोजपुरी तड़का।
3: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का।
4: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और लाजवाब मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर ढेर कोई हमनी के बहुत प्यार से जुड़ गल हवन। तब बस हमनी के साथ देते रहिए जा और 4028085 पर तोहर टेलीफोन और साथ ही साथ में साज विदा करे खातिन 5251-7005। चला है जा पर 10:04 हो गल बा और कार्यक्रम के मजेदार गीत के संगे आगे बढ़ाओ। अब जा अगला गीत जोन है पाद्या परिवार और दमिया परिवार खातिन है गीत के मांग करत हवन मीरा बाई। रोज बेल से वो भी साथ देवत हवन हमने के। तो चला इसने साथ देते रहिए जा और साथ देते देते हैजा पर हमने के वो गीत मांगे बिजमावती संपत के आवाज में रखल गीत गवाई में। और है गीत बहुत मजेदार गीत है और है गीत उनकर दमाद खातिन दबा दबी सुइया के लोपिताल में काम करत हवन। तो बेटी और दमाद खातिन है ये गीत चलाओ अब जा। चला मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा और साथ देते देते हंसते मुस्कुराते हम अपन जितना भी श्रोता लोगन हवन संगे संगे बस जुड़ल रहिए चुटकुला भी थोड़ा देर में तोरा सुनाओ अब जा। बहुत लाजवाब कार्यक्रम संगे

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला अगला गीत जो हाइजा पर हमनी के साथ संगे जुड़ गल हवन जयंती जी पेची जूली से साथ देवत हवन और हमनी के साथ देवत हवन वाकवा बगल से भाई अबू संगे हवन आफेज असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और उनकर भगिनी हवन रकीबा रकीबा तनी बलाद हवन और भाई अबू उनकर खातिन बहुत बहुत दुआ करत हवन चला रकीबा तू अच्छा हो जाइबा और बस ऊपर वाला तोहरा बहुत बहुत शक्ति दे तो ये प्रार्थना करब जा हाइये आशा करब जा और हाइये दुआ करब जा तोहर खातिर ना और चला अगला गीत जो ना मरमिट में चढ़ल बा गरम पानी में संतोष महादेव के आवाज में रखल हाइये अगला गीत और कौन दिन चाचा बैठल बैठल बोले जाने ल 1974 में फिल्म आल रहल रोटी हम बोली हाँ तो कौन सी होल बोले देखा 1974 में आल रोटी फिर 1982 में आल नमकीन फिर 1987 में फिल्म आल मिर्च मसाला और फिर 2005 में गरम मसाला 2006 में सैंडविच 2007 में चीनी कम 2008 में फिल्म चलाल भेजा फ्राई 2009 में आलू चाट 2010 में फिल्म चलाल खिचड़ी और ओकर बाद 2012 में कॉकटेल 2012 बरिस में वही 2012 में बर्फी और 2014 में पिज्जा और इतना बरिस के बाद 2017 में फिल्म आल टॉयलेट इतना बरिस के बाद पेट साफ होल तब जाके बनल टॉयलेट समझ गई ल

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: 10:20 डाउरी चला कल सोहेला और सुहेल के निकाह रही शाम के 4 बजे। उनकर पापा फारूक और मामा हवन फरीदा और उनकर कजिन की ओर से उनकरा बहुत बहुत दुआ, बहुत बहुत प्यार। और चला सुहेला और सोहेल खातिर एगो बढ़िया गीत खोज के आनले हैं। सुग्रीम किस्तु के आवाज में रखल है गीत। जब दुल्हा राजा चलावेला त दुल्हन के दिल धक धक डूब डूब करेलन सा। तो चला हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब सा। औरी चिंटू औरी पप्पू के बात त सुनते चला। कौन दिन पप्पू के जोन मास्टर जी रहल अध्यापक रहल पप्पू के बोले, पप्पू तू काहे काल पाठशाला नहीं आल? तो पप्पू बोले, हाँ गुरुजी जाने ल हमनी के नींद लगल और नींद में हम जानत हवा हमनी के सपना पड़ल कि हम ता अमेरिका चल गल हई। तो मास्टर जी बोले, हाँ तब पप्पू तू नहीं आल, तब चिंटू तू काहे नहीं आल? बोले मास्टर जी वो अमेरिका गल ना, तो हम ओकरा एयरपोर्ट छोड़े गल रही, हाइये से हमनी के नहीं हम बहुत देरी हो गई ला हमनी के आई के।

भोजपुरी धड़का कार्यक्रम और मजेदार कार्यक्रम संगे चला हाई जा पर अगला गीत जो है कुणाल बाबूलाल के आवाज में रखल है गीत चलाओ अब जा रतन खातिन और उनकर पत्नी हवन करुणा गाँव गोप से साथ देवत हवन और नया सिरे के है गीत बहुत एक खुशी हवन सुने के त लाजवाब गीत के संगे संगे चला आगे बढ़ब सा और हैजा पर 10:27 हो गल बा और 11 बजे चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और जरूर जे तोहर मन में कोनो गीत बजता कोनो गीत सुने के तोरा मन कराता तो 11 बजे हैजे हाँ और 11 बजे तोहर गीत चलावे के हम पूरा कोशिश करब दाज तो चला आगे बढ़ब सा नया सिरे के है गीत और नया सिरे है बहुत लाजवाब गीत एगो समय रहल जब है गीत बहुत प्रचलित होल रहल तो चला है गीत सुनब जा और का बोलब चचा के नहीं पर पप्पू के किस्सा पप्पू कौन दिन जब पाठशाला गल तब मास्टर जी बोले पप्पू के अच्छा बच्चा लोग हमने के हाई बताओ भैंस काहे पूंछ हिलावेला तो पप्पू फट से हाथ अपन ठड़ा कर देलक तो मास्टर जी बहुत खुश हो गल कि पप्पू आजकल बहुत प्रश्न के उत्तर देवत हवन बोले अरे वाह पप्पू ठड़ा हो जा ठड़ा होके जवाब द तो पप्पू ठड़ा होके बोले हाँ मास्टर जी फेरों से बोला था सवाल बोले हाँ बेटा बोला हाई जोन भैंस है वो काहे पूंछ हिलावेला तो पप्पू अपन कपार खजवाइते खजवाइते बोले मास्टर जी वो काहे पूंछ हिलावेला जाने ला काहे के पूंछ है ना वो भैंस के ना हिलावे सके उही से वो भैंस पूंछ हिलावेला वो डंटा उठा के मलक मास्टर जी

0: देखा जिंदगी में कबो कोनो प्रॉब्लम चला आई तो नया सिरे से फेरो से शुरुआत करियो। और जना कुछ नहीं बुझाए तो रोज रात के 9 बजे से 11 बजे ले चले ला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, सुनते रहिए और मजेदार गीत संगे अपन जो दिल है तनी हल्लुक हो जाए। और खुशहाली के साथ आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावत है, 10:32 हो गल बा। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम संगे जुड़ल रहिए।
1: भोजपुरी तड़का
0: और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला है जहाँ पर 10:33 हो गल बा। श्याम रघुनंदन हमनी के संगे जुड़ गल हवन, गाँव गो बगल से उनकर भैया जयप्रकाश, भौजी अवन नम्रता, केशव और युधीश संगे उनकर दूगो सखी वीना, रामफल और विश्वानी दुकी जे हमनी के हमेशा साथ देवेलन, और साथ ही साथ है जहाँ पर नीता खेदनी जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन, सैन जुलिया विलास से सब खेदनी परिवार संगे, और खास दोस्त हवन स्वाधिका जी। तो चला अगला गीत जन है लागिना ही छूटे राम के है गीत करब जाओ उनकर खातिन बहुते मजेदार गीत।

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम हंसते मुस्कुराते चला आगे बढ़ब सा। और अगला गीत जो है खास कर चलाओ अब जा राजन लक्ष्मण जी खातिर। उनकर पत्नी के जन्मदिन रहल 10 तारीख के। माला जी जन्मदिन के बहुत बहुत तरह बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलब जा। और माला जी खातिर अगला गीत चलाओ अब जा। चल दिन तो चले गल जैसे बोलब तारदे हो है गल बाते। पर हमर ओर से तोहर खातिन एक बार फिर उसे जन्मदिन के बहुत बहुत प्यार से बधाई देवब जा। उनकर दू गो बेटी प्रार्थना और प्रगति और ननन हवन मानती और भगिनी हवन उर्मिला तुलसी और सब लक्ष्मण परिवार की ओर से तोहर खातिन माला जी जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। और का बोलब जा हमर जोन चचा हवन चचा गजोधर उ तो जाने ल कबो कबो ऐसन ऐसन बात बोल देवे लन सा कि का बोलब जाने ल। चचा कौन दिन बोले जे वाइफ के हिंदी में ग्रहणी ग्रहणी बोलल जाला।

तो हिंदी में हस्बैंड के कौन सी बोलल जाला? तो चाची चमेली फट से बोले। हाँ, जे वाइफ के बोलल जाला ग्रहणी, तो हस्बैंड के बोलल जाला ग्रहण। का बोलबा, का बोला था वन, समझ गई ला।

अब कहाँ से मूड चलावेला का जानी ऐसे ऐसे शायरी करेलन स हमनी के बोले जाने ल अरज करत हई दोस्ती रही कि प्यार दोस्ती रही कि प्यार गहरा होना चाहिए। हम बोले वाह वाह चाचा वाह का बोलत हवा दोस्ती है रही कि प्यार वो गहरा होना चाहिए। आउरी तहर बुढ़िया जे रही लड़ाकिन तब बुढ़वा बहरा होना चाहिए का चाचा ऐसन छह ऐसन शायरी करल जा रहा हो।

भोजपुरी तड़का 11 बजे ले चलता भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस और ही रेडियो मनोरंजन पर और ही चला अगला गीत जो संभावती दुमन के आवाज में रखल है गीत चलाओ अब जा जितना सुने होला श्रोता लोगन हवन उन सब कोई खातीन और ही चचा कबो कब

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला है जहाँ पर युधिष हमने के संगीत जुड़ गल हवन और युधिष भी बहुत खुशहाली के साथ हमने के साथ

चला अगला गीत करब जाऊ हुनकर खातिर और यहाँ पर 10:52 हो गल बा। उमेश दाऊ के आवाज में रखल अगला गीत चलाव जा और हमर चचा के जब कांड करे लंस त का बोलब हो जाने ल। टिकटॉक पे हर कलिते के जाफे हर कलिते के चीज देखते रहे लंस और फेसबुक पे और का जन यूट्यूब पे देखते रहे लंस और हाउ जाने ल गोरा होए खातिर एगो टिप ओकरा मिल गल। आदमी बोले कि है जोन चार है ओकरा उबाल के ओकर लापात बना के तोहर चेहरा पे जे लगेबा त तनी गोरा हो जाइबा। और चचा उसने कलक हाउ चार जोन रहल चावल के दाल के पका के उबाल के गरम गरम चार के है लगा देलक अपन चेहरा पे। अरे फोक्का फोक्का बड़ा हो गल ऐसे मुआ सूज गल तो हम बोली चाचा कैसे हो गल है। बोले हाँ हम चार गरम गरम लगा के उबाल के है बोले लापात बना के अपन चेहरा पे लगाई तो गोरा हो जाएबा। हम बोलनी चाचा ओकरा ठंडा होए दे के बाद में लगावे के का हो चाचा सब कुछ देख के अपन चेहरा के सत्या नाश कर देलक है देख फोक्का फोक्का सब चलाल तोहर चेहरा पे। समझे के चाहिला हो चाचा सब सब जोन चीज लौकेला उ नहीं करे के बीमार हो जाए बापू नारिय के। हाई देखा हाई वा गीत वा मजेदार सुना उमेश दाऊ के आवाज में। चला इसी गीत संगे आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करे के समय हो गल बा। आशा करब जा कि आज के दिन आज के है गीतवा है आज के है कार्यक्रम तो अच्छा बुझाल और ऐसने आवत सामदी के फेरों से भेटा आपसे एगो बढ़िया और एगो मजेदार कार्यक्रम संगे। तब बस अपन ख्याल रखिए पूरा पूरा ध्यान रखिए और आवत समय तो हर खातिन बहुत बहुत ऊर्जा के संगे शुरू रही और बस काल त दिमास के दिन है त दिमास तो हर परिवार संगे एगो बढ़िया दिन बीतै। जिंदगी बहुत हसीन है जबरदस्त है तो बस अपन ख्याल रखिए और इसी संग एकर संगे हमनी के अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि नमस्कार।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: श्रोताओं, नीतूषा आपके समक्ष रेडियो मॉरिशस की लहरों पर एक बार फिर आप सबका अभिवादन, स्वागत सुनहरे पल कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसी कलाकारा के बारे में बात करेंगे जो खूबसूरती, मासूमियत और मोहब्बत की एक अमर दास्तान कही जाती है। आप है सायरा बानू, साथ निभाते रहिएगा सुनहरे पल कार्यक्रम में।

जब भी हिंदी सिनेमा की सबसे हसीन और नाजुक अदाओं वाली अभिनेत्रियों का जिक्र होता है, तब सायरा बानू का नाम बड़े ही अदब और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। उनकी मुस्कान में एक बचपना था, उनकी आंखों में मासूमियत थी और उनकी अदाओं में एक ऐसी शराफत जिसे देखकर हर कोई उनका दीवाना बन जाता था। सायरा बानू ने

0: सिर्फ अपनी खूबसूरती से ही नहीं बल्कि अपनी नेचुरल एक्टिंग और दिल से निभाए हुए किरदारों के जरिए भी बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई।
1: दीवा!

रानू का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ। उनकी माँ अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री थी, इसलिए बचपन से ही पढ़ाई के लिए वो लंदन भी गई, जहाँ उन्होंने दुनिया को एक नई नजरिए से देखा। वापस भारत लौटने के बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और देखते ही देखते दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गई। उनकी पहली फिल्म जंगली थी, जिसमें उनके साथ नजर आए, जिसमें शम्मी कपूर उनके साथ नजर आए। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात एक बड़ी स्टार बना दिया। एहसान तेरा होगा मुझ पर या फिर जा जा जा मेरे बचपन जैसे गीत आज भी उनकी मासूमियत और अदाओं की याद दिला देते हैं। इसके बाद सायरा बानू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

1960s और 1970s के दशक में उन्होंने उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया और सबसे बढ़कर के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। पड़ोसन, पूरब और पश्चिम, विक्टोरिया नंबर 203, शागिर्द, आई मिलन की बेला और गोपी जैसे कई फिल्मों में उन्होंने अपनी रेंज और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

साइना बानू की एक्टिंग की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर किरदार को बहुत ही स्वाभाविक अंदाज में निभाती थी, चाहे एक शरारती लड़की का रोल हो, एक भोला भाला रोमांटिक किरदार हो या एक संवेदनशील पत्नी का। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी नेचुरल होती थी कि दर्शक तुरंत उनसे जुड़ जाते थे। उनके स्क्रीन प्रेजेंस में एक अलग ही रोशनी थी जो हर सीन को यादगार बना देती थी।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: मीरा बानो की जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय था उनका और दिलीप कुमार साहब का रिश्ता। बचपन से ही सायरा बानो दिलीप कुमार की बहुत बड़ी प्रशंसक रही। उन्होंने एक सपना देखा था कि अगर कभी शादी करेंगे तो सिर्फ दिलीप कुमार से। किस्मत ने भी उनका साथ दिया और 1966 में दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। दोनों की उम्र में काफी अंतर था, लेकिन उनके प्यार, सम्मान और भरोसे ने इस बात को कभी मायने नहीं रखने दिया।
1: प्यार मोहब्बत के

0: मदहोश हूँ मैं और होश नहीं, अब क्या होगा
1: क्या होगा,
0: कुछ तू ही बता दे जोहरा जबी, अब क्या होगा
1: क्या होगा,
0: पहलू में रहे तुम सा हंसी, अब क्या होगा
1: क्या होगा,
0: हो जाऊँ न मैं दीवाना कहीं, अब क्या होगा।

शादी के बाद सारा बानू एक सरल अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि दिलीप कुमार की सबसे बड़ी ताकत, दोस्त और जीवन

सायरा बानू ने दिन रात उनकी देखभाल की और अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा और खुशी के नाम कर दी। उनकी ये वफादारी और समर्पण हर किसी के लिए एक मिसाल बनी।

दिलीप कुमार के निधन के बाद सायरा बानू ने उनकी दुनिया, उनकी यादों को बड़े प्यार और सम्मान के साथ संभाल कर रखा है। वो अक्सर उनके बारे में प्यारी यादें साझा करती हैं और उनकी विरासत को जिंदा रखती हैं। ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, बल्कि दो ऐसे इंसानों का था जिन्होंने मोहब्बत, इज्जत और समर्पण का असली मतलब दुनिया को दिखाया। आज भी जब सायरा बानू का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक खूबसूरत हीरोइन की याद नहीं आती, बल्कि एक ऐसी शख्सियत याद आती है जिन्होंने ग्लैमर के साथ संस्कार, सादगी, वफादारी और इंसानियत को भी उतनी ही अहमियत दी। उनका फिल्मी सफर और उनकी व्यक्तिगत जिंदगी दोनों ही नए कलाकारों और हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सायरा बानू हिंदी सिनेमा की उस सुनहरी पीढ़ी की निशानी है जहां कला के साथ तहजीब

भी हुआ करती थी, जहां स्टारडम के साथ विनम्रता भी होती थी और जहां मोहब्बत सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी पूरी ईमानदारी से निभाई जाती थी। इसलिए सायरा बानो का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा बड़ी सम्मान और प्यार के साथ अमर रहेगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
1: Radio Mauritius.
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस.
1: रेडियो मॉरिशस.
2: रेडियो मॉरिशस.

0: This is Radio Marxist.
1: Ninghao.
2: Assalamu alaikum.
3: Kimchi Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shotarandariki Hrudayapurvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum Vanakkam.
7: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: ए कुत्ते, इडियट, हाँ तेरी तो एक चाटा मार के ना तेरा मुंह सुझा दूंगी मैं।

मन का।

0: You're listening RM Free Radio. Radio. Cello
1: Roy America. Do you have time for a pleasant experience? Cello Roy
2: America. ओ ताऊ राम राम, ओए बंद कर, ए बोला ना बंद कर। गुड इवनिंग फोक्स, माई सेल्फ भाई साहब त्यागी फ्रॉम मेरठ। नाउ आई विल रॉक विथ माई देसी लठ। हमारा बैंड का इंट्रोडक्शन भी सुन ले। जय आनंद प्रकाश, जय बजाया करे ढोल, और जय किशन लाल बिच्छू, जय बड़ी चीज बजाया करे भाई। और बाकी है गा चोरस, जय रबड़ी इमरती, नाम ना बता, ये पप्पू की अम्मा है। और चलो रे शुरू हो जाओ, इब मैं सुनाता हूँ अमेरिका का हिप हॉप। जय माता दी,
3: लेट्स रॉक।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: हेलो हेलो हेलो साहिबा कदरदार,
2: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
3: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो